0: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: जय गोपाल।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: शोभित जी,
2: राधे राधे।
1: महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, अध्यात्म की तरफ चलते चलते अचानक मन विचलित सा हो जाता है, उल्टे से ख्याल आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न सी होती हैं महाराज।
3: हाँ, वो चूंकि संसार का मनोरंजन उसको प्रिय लगता है, मन को मनमानी आचरण करना उसको प्रिय लगता है। उसकी गलती नहीं है, हम जहां उसको लगाते हैं वहीं वो राजी होने लगता है। अब जैसे अध्यात्म मार्ग में लगा रहे हैं तो इसमें जहां जहां वो लगा रहा है उसके विरुद्ध बात है। उसको भोग चाहिए, उसको हर इंद्रिय के मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरने का स्वभाव बना लिया है। भगवान कह रहे हैं, आप भगवान के अंश, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसा कर ये सदैव अधीन रखा है। अब अध्यात्म सुनना शुरू किया, अध्यात्म चल तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है। और अभी तक आप मन के वश में रहे तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट करने लगेगा। इसकी चाल समझना, क्योंकि आपके बिना उसकी कोई सत्ता नहीं, वो आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आपके दस्तखत से ही करेगा। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। ये खेल चल रहा है। प्रायः सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बनाने वही सच्चा गुरु। दूसरों को तो चेला बनाना सहज है, मन को जो चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन ने सबको चेला बना रखा है, नहीं बना रखा, जैसा जैसा कहता है वैसे ही करना पड़ता है। और बड़ा बात यह है कि मन को हम जैसा कहें शास्त्र आज्ञा से वैसा चला ले तो महात्मा, वही गुरु, वही भक्त। नहीं तो भाई भेष चाहे जो हो, पर मन के अधीनता से मुक्त होना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला मन को अधीन करके भगवान की प्राप्ति करता है। तो आप लोग उसी बिरले में हैं, क्योंकि अगर सत्संग मिल रहा है, साधु संग मिल रहा है, और अध्यात्म की बातें सुन रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। कृपा है, पर हमें विचलित नहीं होना। कम से कम ये बात आप स्वीकार करते हैं कि कभी कभी वो हमको गिराने की कोशिश करता है, अर्थात आपका बहुत सहयोग देने लगा है। तो एक समय था कि हम पूरे उसके अधीन थे, आज है कि आधा आधा हो गया है। आधा वो हमारे अधीन हो रहा है, आधा पले अधीन करना चाहता है, तो चढ़ाई और चढ़ते जाओ।

0: उसके पॉइंट कम करते जाओ, अपने पॉइंट बढ़ाते जाओ कि अब 60%, अब 65%, अब 70%, फिर जिस दिन 100% तुम्हारे अधीन हो गया उसी दिन भगवान के आनंद का जो स्वरूप है वो प्रकाशित कर देगा। अब ये लड़ाई बहुत जोर की है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, वो छोटा मोटा शक्तिशाली नहीं, बहुत शक्तिशाली है। क्या आपको सपोर्ट देगा? राधा राधा राधा, फिर धीरे से आपके सामने रखेगा, देखो इतने दिन जब करते हुए कोई सुख तो नहीं मिल रहा, इसको भोगो, अभी आनंद आ जाएगा। और देखो ये भोग आपके पास व्यवस्थित है, देखो ना अभी आनंद आ जाएगा। अच्छा अब रुका राधा नाम, अब वो उस भोग में ले गया, अब राधा नाम जपना चाहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अरुचि वो अपने अधीन करता चला जाएगा। कोई विवेकवान गुरु कृपा पात्र इसकी चाल समझ जाता है, अरे अरे मुझे तो पुनः फंसा रहा है, गिरा रहा है, नहीं नहीं नहीं, राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा, तब बचा जा सकता है। ले ये बहुत प्रवीण है, मन बहुत फुसला के फंसाता है, ऐसे ही फंसाता है कि देखो देख लेंगे, छुएंगे थोड़ी, नजदीक पहुंचा जिस विषय का छू लेंगे, कुछ होगा थोड़ी, और धीरे धीरे धीरे वो तुम्हें लगेगा कि यार गलती हो गई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा यूं हो गया कि उसकी चाल को नहीं समझ पाए हम, उसकी चाल को नहीं समझ पाए। हर एक इंद्री के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये सुन लेंगे, ये देख लेंगे, ये छू लेंगे, ये भोग लेंगे, इन्हीं इंद्रियों के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही, यही इंद्रियां भोगों में फंसाए हुए हैं, और उसका मुखिया ये मन है, और ये बहुत चतुर मंत्री है आपका मंत्री, पर ऐसा समझ लो कि भोला राजा और चतुर मंत्री, तो उसकी दुर्दशा कैसी होती राजा की, जो सलाह देता है वैसे ही कर देता है और फंसता चला जाता है, और मंत्री अपने को बलवान बनाकर केवल नाम मात्र का राजा उसको बनाए हुए सारा काम वही कर रहा है। देख लो आप, नाम मात्र के आप जीव आत्मा भगवान के अंश हो, सारा काम वही मन कर रहा है। हमारा मन कर रहा है आज ये खाएं तो हम खाएं, नहीं ये मन की मांग है, तेरी मांग नहीं है, लेकिन ऐसा कौन भेद पैदा कर पाता है। मेरा मन कह रहा है आज ये देखा जाए तो अब भाई देखा जाए, मेरा मन कह रहा है तो कभी कभी मन अच्छा सपोर्ट करता है, जैसे आपको मन ने ही कहा चलो चलते हैं सत्संग में, बाबा के पास बैठते हैं वृंदावन में, तो अच्छा सपोर्ट दिया ना, वो सपोर्ट ना देता तो आप नहीं आ पाते। बस इसको अच्छे सपोर्ट के पॉइंट में लगाते रहो, और जब बुरा सपोर्ट करे उस समय सहना बहुत कठिन होता है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा, और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम सो मृतत्वाय कल्पते, उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना, बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। इसका बहुत विचित्र बल होता है, और इससे बचने का केवल एक उपाय है, नाम जप न छूटे, और ये स्वीकार मत करो कि मुझे चाहिए। जैसे मन कह रहा है आज उस होटल में चलते हैं, अब रसेंद्री और मन एक हो गया है, अब आपको लगता है मेरी मांग है, तो बोले भाई आज मेरा मन कह रहा यही, आज मेरा मन कह रहा है कि आज उस होटल का भोजन होना चाहिए। अरे तेरा मन कह रहा, तू खुद कह रहा है, अब उसमें निर्णय करो सही है कि गलत। अगर गलत लग रहा है इसकी चाल तो आप मत जाओ, घर में रोटी दाल बना, इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये 100 बार कहेगा नहीं नहीं, तो आपको नहीं भाई आज तो यही खाना पड़ेगा, कल भले विचार करेंगे, कल विचार करेंगे आपकी बात पर आज नहीं, आज तो ऐसे बस में करना होता है। एक साधु के मन में आई कि खीर मिले बहुत दिन से नहीं मिली, मन है कभी कुछ भी सोच सकता है, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहां गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी, और उनका कि आपकी श्रद्धा है संतों पर, उनका महाराज आदेश कीजिए। तो बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20, घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए, उनका और संत, बोले और संत यही है सर, अकेले कमरे में बैठे 20 संतों की खीर, और कहा आप लोग बाहर हो जाइए, हम एकांत में पाना चाहते हैं। वो पाए तो भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए तो पाए, फिर एकदम यहां तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसी को, फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए, बोले नहीं खाओ खाओ खीर खाओ, रोमांच हो गया नहीं खाएंगे एकदम, बोले जिंदगी में खीर का नाम मत लेना जिंदगी। तो या तो ऐसे उतरो या तो ऐसे उतरो, इसको वश में करना बहुत अच्छा, एकदम विरोध भी नहीं कर सकते आप, इसका चल ही नहीं पाओगे, इसका विरोध भी एकदम नहीं कर सकते, सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अच्छी बात में इसका सपोर्ट करो। अब कह रहा है जैसे हमें आज मीठा खाना है, ठीक है तुम्हारी मांग बुरी नहीं है, गए किसी अच्छी दुकान से लिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, पाली तो उसका सपोर्ट हो गया। अब वो बुरी बात कह रहा है, अब नहीं मानना है, उस समय जो जलन उसे सह जाओ, बस यही साधना का है। मन को अगर अधीन कर लिया तो बात बन गई। एक हम बार बार सुनाया करते कि मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई संत कहो चाहे राम। वो गृहस्थी में भी है, आप एक पत्नी व्रत लिए हुए धर्म से आप चलते हैं, दूसरी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, धर्म से धन कमाते, परिवार का पोषण करते, नाम जब आप महात्मा है, आप सतमार्ग के पथिक हैं, क्योंकि आप अपने प्रवृत्ति धर्म से चल रहे हैं, और एक निवृत्ति में अपने धर्म से चल रहा है तो वो महात्मा है। ऐसा महात्मा का मतलब केवल वेश से नहीं होता, महात्मा का मतलब उस लक्षण से होता है। अगर आप भागवतिक लक्षण से हैं तो आप भक्त हैं, आप वैष्णव हैं, आप महात्मा हैं। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मन को अधीन करके परमात्मा प्राप्ति करना। अगर मन अधीन नहीं हुआ तो परमात्मा प्राप्ति में बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। नाम जप करते रहो, धीरे धीरे वो बल आता रहेगा नाम जप से कि आप मन को अधीन कर लोगे। नहीं तो पीछे वाले बैच में यही कह रहे थे कि जितनी जेल भरी है ये सब मन से ही भरी है। नहीं बोले ऐसा क्यों किया, बोले मन ने कह दिया, आप क्या करें, हम तो कहते थे नहीं करना पर इस मन ने फंसा दिया, तो बोले 20 साल की सजा, अब भोगो जेल। मन की एक हरकत ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मन की एक हरकत ने फांसी पे चढ़वा दिया, वही मन की तो हरकत है। तो हमें लगता है वो तो होश में रह जाए, ये जो मंत्री है सलाहकार मन, इस पर नजर रखी जाए कि इसकी गलत सलाह पे दस्तखत ना करो, और अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, पक्का समझ ना। आपकी स्वीकृति से ही होता है जो कुछ होता है, आप जहां कह देते हैं कि चलो अच्छा ठीक है बस, फिर आपकी कोई गम नहीं है, वो आपसे करवा के माले गई तरफ, बलवान मन है, बड़े बड़ों से करवा लेता है। ए आप तो मान लो गृहस्थी में हो, जिसने आजीवन भगवान का मार्ग चयन किया है उसको भूल में डाल देता है, गलत मार्ग में ले जाता है। आप तो गृहस्थी में मान लो, आपसे चूक होना स्वाभाविक है क्योंकि प्रपंच माया प्रपंच में, जिसने जीवन भर के लिए नियम लिया है उससे भी चूक करवा देता है, बड़ा विचित्र मन है। हां अगर मन कहीं अधीन हुआ है तो भगवान का आश्रय लेकर और विवेक के द्वारा इसे अधीन किया जाता है, और विवेक ये बाजार में मिलता नहीं है, ये सत्संग से मिलता है, जैसे आप सुन रहे हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग होता है भगवान की कृपा से, और सत्संग से मिलता है विवेक, और विवेक से मन का शासन निर्णय किया जाता है, तू गलत सलाह दे रहा है, और मेरी मांग नहीं तेरी मांग है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, नहीं पास करता हूं, बस वो कुछ नहीं कर पाए। पर इतना ज्ञान नहीं रहता भैया, जहां वो मन से आज गरम गरम कचौड़ी दाल की हो और फिर चटनी हो, फिर अब आप खोज करोगे कहां बन रही है, हम खरीद के खाए, मन ऐसे फंसा रहा है। आप देखो ना, अपने घर में सब भोग सामग्री है, लेकिन जिनका मन, जो भजन नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते, उनका मन गंदे आचरणों में फंसा है। घर में वो सब भोग सामग्री है, धर्म पूर्वक भोग करके वो भगवान को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो अधर्माचरण कले अशांति घर में है, और उनका मन कहां ले जाता है, गंदे गंदे जगह उनको फंसाए। ये मन की चाल है। आपके घर में है धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, लेकिन आपसे अधर्म करवाता है, पापाचरण करवाता है। आप विचार करो क्या है, इन शरीरों में क्या है या उन भोगों में क्या है, कितना भोगोगे, चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली नहीं, और धर्म से चलोगे तो एक दिन इनसे निवृत्ति हो जाएगी, तृप्ति तो नहीं निवृत्ति हो जाएगी, और आप प्रभु को प्यारे, प्रभु के प्रियजन बन जाएंगे। यही मनुष्य जीवन का लाभ है कि हम कमाई करने आए धर्म की, पुण्य की, नाम की, भगवान का नाम जप करके मंगल करने की, पर ये दिमाग में नहीं रहता और यही लगता है जितना धन हो जाए, जितनी भोग सामग्री हो जाए, खूब भोगे, मौज से जिए, पर अधर्म आचरण करने वाला कभी मौज से नहीं रह सकता। ये शब्द याद रखो, चिंता, भय, शोक, घबराहट और दुख, ये उसको कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। अचानक बेमतलब की कल्पना भय की सवार रहेगी और धीरे धीरे वो मन डिप्रेशन में पहुंचने लगता है, क्यों, क्योंकि पापाचरण हो जाता है, और घर के किसी व्यक्ति से ठीक से बात नहीं करेगा, क्यों, अंदर से डिस्टर्ब हो चुका है। ये क्यों हुआ, बोले पापाचरण से हुआ। आज बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग, इसका कारण जानते हो क्या है, यही मनमानी आचरण, मनमानी आचरण, बचपन से शुरू हो जाता है गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और वो दिमाग काम नहीं करता। एक प्रियता हमारे अंदर होती है कि कोई हमें प्यार करे, आप समझना, एक हमारे अंदर प्रेम की मांग होती है कि कोई हमें प्यार करे, नौ किशोर अवस्था में, जब यौवन अवस्था का, अगर उस समय हमें गलत संग मिल गया तो विक्षिप्त हो जाता है चित्त। अच्छा, प्यार कोई समझ पावे तो मुश्किल की बात है, प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं, या भगवान प्रदत्त ऐसा कोई दे दे जो प्रेम का निर्वाह करे, नहीं अपने हृदय से जिसको हम प्रेम करते हैं और वो कहीं दूसरी जगह देख रहा है, अब विक्षिप्त हो जाएगा वो व्यक्ति, नहीं हो जाएगा। और ये प्रायः बहुतायत में हो रहा है, क्यों, क्योंकि पूर्व संस्कार बन गए। अच्छा, जैसे देखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर गर्लफ्रेंड, समझ रहे हैं? क्या संस्कार पड़ रहा बच्चों के अंदर। अब वो जब वरण करेंगे एक पति का तो उनके अंदर निष्ठा आ पाएगी, वो संयम से चल पाएंगे, वो एक गृहस्थी को संभाल पाएंगे, वो अपने पति या पत्नी पर पूर्ण प्रेम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आदत खराब हो चुकी, संस्कार खराब हो चुके। अब ये हमारे समाज में ज्यादा फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। अब जहां मन को संयम में लाने की बात आती है, वहां मन को तो हमने पहले ही रद्दी कागज बना दिया, पहले ही हमने उसको गंदा कर दिया, अब कैसे हो सकता है। गृहस्थी बहुत पावन मार्ग है, कोई ऐसा नहीं है, मान लो पवित्र शरीर दोनों के हैं और फिर धर्म से ग्रहण किया गया तो वो फिर एक अच्छी गृहस्थी बनती है। अब पहले इसलिए भाई बहुत संभालने की जरूरत, आप तो बड़े भाग्यशाली जो अध्यात्म में इस बात को समझ रहे, नहीं तो आज हमारा समाज थोड़ा गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, गलत मार्ग है जिसको कोई समझ नहीं रहा। हमारे नवीन नवीन बच्चे, नवीन नवीन बच्चियां, नवीन नवीन भाई इस भूल में फंस गए कि ये सुख है और ये भोगना मतलब जीवन का लाभ है। नहीं नहीं नहीं, इसको धर्म के अंतर्गत रखा गया। देखो हमारे शास्त्र में चार पुरुषार्थ रखे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम कहां है, तीसरे नंबर पे है, पहले में क्या है धर्म और आखिरी में क्या है मोक्ष। जो धर्म से चलता है, धन धर्म से कमाता है, धर्म से काम भोग करता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज दो बातें हट गई, पहली और आखिरी, धर्म और मोक्ष हट गया और अर्थ और काम रह गया, नहीं रह गया, बस यही पशुता बढ़ती चली जा रही है। अब ये संतों की बातें कड़वी लगेंगी समाज को, लेकिन भैया बहुत गलत रास्ते में अपने लोग जा रहे हैं, इससे लौटना अभी संभव है, अभी लौटना संभव है। अगर कदम आगे बढ़ते चले गए तो आप लौट नहीं पाएंगे। आप देखो हमारे नवीन बच्चों में बहुत डिप्रेशन की ये बात आती चली जाए, क्यों, विक्षेप पे विक्षेप पड़ रहा है। अब वो उससे आसक्त है, वो ब्रेकअप हो गया, अब उसका दिमाग पे जो भार पड़ा वो पूरे जीवन की जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। मतलब कई ऐसी समस्याएं प्रकट हो रही हैं जो अपनी बात कह नहीं सकते हैं, और अंदर ही अंदर वो अपने को खोखला कर लेते हैं। हमें लगता है कि माता पिता को, परिवार को इन समस्याओं से बच्चों से जुड़कर उनको हटाना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको ऐसा मित्रवत बल देना चाहिए जिससे उनकी मानसिकता उभरे। अगर ये छूट बनी रही, इसे कहा जाता है दोस्ती, लेकिन भारी दुश्मनी फैल रही है, भारी हमारे जीवन का नाश करने वाली वृत्तियां फैल रही, तो इसलिए इससे बचा जाए और नाम जप किया जाए। अगर मन को छूट मिल जाए तो नरक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर देगा, मन को छूट मिल जाए तो भारी से भारी अपराध करा देगा और जलाता रहेगा। इसलिए मन को छूट ना दी जाए, और मन को छूट ना दी जाए इसके लिए जो चाहिए विवेक वो सत्संग सुना जाए, और जो बल चाहिए वो नाम जप किया जाए। नाम का बल और सत्संग का विवेक, ये दो ही बचा सकते। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुप्रभात, कैसन बानी रहो सब, कैसन बा रहो स्वास्थ्य, काहे कि ई भागत दौड़त जिंदगी में स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहल बा। तो इसी में तो हमरा हमेशा इहे चाहत रहेला कि रहुआ स्वस्थ रही, मस्त रही। वैसे तो हम लेके आए नहीं रेडियो रिमझिम की ओर से वो प्रोग्राम जोन हा आपन दे आपन देखभाल। में रवा जाने के मिलेला बहुत सारा घरेलू नुस्खा जोना के अपना के रवा एकदम स्वस्थ रहे। तो चलिए हम अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ाई। दोस्तों, आज हम बताएं सबसे पहले सफर में स्वस्थ रहे के कुछ आसान टिप्स। ई दिन यात्रा के मौसम चल रहा बा, काहे कि ई उ वक्त होला जब बच्चा के परीक्षा खत्म हो जाला और ई मूड बदले खातिर सफर के प्रोग्राम बनावल जाला। कुछ लोग के खासकर बच्चा और ई बुजुर्ग के गर्मी में सफर के दौरान तबीयत बिगड़े के खतरा रहेला। इस तरह के दिक्कत में सफर के जायका बिगड़ जाला। अक्सर पानी के बदलाव शरीर पर दुष्प्रभाव छोड़ेला। इसे बचे खातिर अपना साथ उबलल होकल पानी ले जाई या सादा पानी में एक हल्दी के गांठ डाल ली। अपना साथ नींबू, शक्कर, नमक व खाए वाला सोडा भी रखी। जब अधिक गर्मी सताए या जी मिचलाए तो एक कप पानी में एक चम्मच शक्कर, नींबू के रस व एक चुटकी सोडा मिला के पी ली। नींबू चूसल भी फायदेमंद रहेला। सादा नमक के पानी बार बार पिए से भी गर्मी अधिक परेशान ना करेला। यदि रवा पित्त गिरे के शिकायत रहत हो के तो अपना साथ सेंधा नमक और अंजवाइन मिला के रखी। घूमे के बीच में दो तीन बार एक एक खाली लू से बचे खातिर एगो प्याज अपना पॉकेट या पर्स में लपेट के रखी, एके बार बार सूंघे से लू ना लगी। कच्चा आम के उबाल के ओके ठंडा कर ली और ठंडा पानी में पल्प के मैश करके छान ली। थोड़ा सा हींग, सौंफ और जीरा भून के पीस ली। सूखल पुदीना, शक्कर, काला और सेंधा नमक इस शरबत में मिलाई। आ इस शरबत के बाहर जाए से पहले पी लेवे से लू ना लगी। इस सावधानी से रवा यात्रा अवश्य मंगलमय हुई। दोस्तों चली अब हम बतावे जात पानी खट्टा मीठा छाछ के फायदा। छाछ यानी मट्ठा धरती के अमृत मानल गई बा। ई शरीर के बीमारी के दूर भगावेला। बाजार में बिके वाला महंगा शीतल पेय से छाछ लाख गुना अच्छा है। एक एक कई फायदा है। मट्ठा के प्रयोग कई तरह से कईल जा सकेला। हिचकी चले पर मट्ठा में एक चम्मच सौंठ डाल के सेवन करी। उल्टी होके पर मट्ठा के साथ जायफल घिस के चाटी। गर्मी में रोजाना दो समय पतला मट्ठा लेके उसमें भुनल जीरा मिला के पिए से गर्मी से राहत मिली। मट्ठा में आटा मिला के लेप करे से झुर्री कम पड़ेला। कहल जाला कि मुहासा होके पर गुलाब जल के जड़ मट्ठा में पीस के मुंह पर लगावे के चाहिए। के एड़ी फाटे पर मट्ठा की ताजा मक्खन लगावे से आराम मिलेला। सिर के बाल झड़े पर बासी छाछ से सप्ताह में 2-3 दिन बाल के धोए के चाहिए। मोटापा अधिक होके पर छाछ के छौंक के सेंधा नमक डाल के पिए के चाहिए। ऐसे मोटापा कम होला। सुबह शाम मट्ठा या दही के पतला लस्सी पिए से स्मरण शक्ति तेज होला। उच्च रक्तचाप होके पर गिलोय के चूर्ण मट्ठा के साथ लेवे के चाहिए। ऐसे उच्च रक्तचाप सामान्य होला। अधिक मानसिक तनाव होके पर छाछ के सेवन लाभकारी होला। जलल होकल स्थान पर तुरंत छाछ या मट्ठा मले के चाहिए। विषैला जीव जंतु के काटे पर मट्ठा में तंबाकू मिला के लगावे के चाहिए। कि अगर केहू जहर खा ले होके तो ओके बार बार फीका मट्ठा पिलावे के चाहिए, परंतु डॉक्टर की सलाह अवश्य ली। अमलतास के पत्ता छाछ में पीस ली और शरीर पर मली। कुछ देर बाद स्नान कर ली। इसे शरीर के खुजली नष्ट हो जाई। दोस्तों अब हम बतावे जात बानी मोटापा कम करे के चार सावधानी। ईसा छा की मोटापा कम कई ऐसन कौनो जादुई फॉर्मूला अभी तक नहीं के बनल। लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सावधानी बरतल जाए तो एके जरूर कम कई जा सकेला। मसाले युक्त खाना से बची। कोशिश करें कि राउर भोजन सादा होके। केतना कैलोरी इस्तेमाल हो रहल बा ओके मात्रा के भी पूरा पूरा ध्यान रखी। हफ्ता में अगर कभी ज्यादा कैलोरी युक्त खाना खा ले ले होकी ता ओके कम करे खातिर थोड़ा व्यायाम करी। तलल होकल चीज के जगह कोशिश करी उबालल या सिकल होकल खाई। जैसे आलू के तल के खाए से परहेज करे के चाहिए। अगर वह 6 महीना तक ऐसा कर लेता नहीं तराउर शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी कम हो जाए। कम कैलोरी युक्त ज्यादा खाना खाई जिसमें सलाद पत्तेदार सब्जी शामिल होके। ऐसा खाना खाई जौन ज्यादा देर तक चबा के खाई जात होके। शरीर के अतिरिक्त चर्बी के हटावे खातिर रोजाना व्यायाम करी। रवा एरोबिक्स योग या फिर सुबह के सैर करके एक एक कम कर सकता नहीं। ध्यान रखें कि इस दौरान रवा शरीर से भरपूर मात्रा में पसीना निकले तभी शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलोरी कम हुई और आलस से बची। तो दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही। तो आज के ई नुस्खा रोज जरूर अपनाए और अपना स्वास्थ्य के तंदुरुस्त बनाए। हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के दी एगो प्यारा सा मुस्कान के साथ जाए के इजाजत। आरोग्य सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
5: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा बहू घर आने वाली है सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स BIS अप्रूव्ड शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने सिल्वर गोल्ड या डायमंड हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ विश्वास की परंपरा नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्रगोखो लोड गोपालगंज मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्यामवर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का था लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्री राम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्री राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

अत्रि ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्यलोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाए।

0: आता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह को मिली अदालत से स्थायी जमानत। सदर SDO का हुआ तबादला। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। अलग अलग हादसों में दो लोगों की हो गई मौत। बरौली थाना अध्यक्ष को एसपी ने किया लाइन हाजिर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी लोक गायक गुंजन सिंह को आज गोपालगंज में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सरेंडर करने के बाद अस्थाई जमानत दे दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्थाई जमानत को मंजूर किया। बताया जा रहा है कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वन सह एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में दोनों ने सरेंडर किया था और दोनों की ओर से दायर स्थाई जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने राहत देते हुए जमानत को मंजूर किया। पेशी को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी, अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। सुनवाई के दौरान विधायक अनंत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला तथ्यों के विपरीत है और उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए दर्ज किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ मंजय मधुप ने कोर्ट को बताया कि पुलिस की चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की स्थायी जमानत को मंजूर कर लिया। इसके बाद अदालत से बाहर निकलने पर अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है और वे अदालत का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा उम्मीद था कि उन्हें कोर्ट से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, यह न्याय की जीत है, उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया था। गोपालगंज के सदर एसडीओ अनिल कुमार का तबादला हो गया। उनके जगह अब सदर एसडीओ के रूप में डॉक्टर प्रेरणा सिंह को गोपालगंज का नया सदर एसडीओ यानी सदर अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। अब जल्द ही प्रेरणा सिंह अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालेंगी। प्रेरणा सिंह उद्योग विभाग में उप सचिव के पद पर अपनी सेवा दे रही थी। अब वहां से सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद उन्हें गोपालगंज सदर का अनुमंडल पदाधिकारी बना दिया गया है, जिसके बाद वे अब जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगी और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अपनी सेवा शुरू करेंगी। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का भी आयोजन किया। विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके समक्ष मामलों को निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागों को दूरभाष पर भी डीएम ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक बैठक की। इसमें जिले में संचालित विभिन्न राज्य संपोषित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्यों के निष्पादन में आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ठोस कार्य योजना भी तैयार की गई। बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भवन प्रमंडल, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम तथा बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित विभिन्न विभागों के योजनाओं की विभागीय वार समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों से निर्माणाधीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और सरकार को उपलब्ध कराया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आज कई हादसे हुए जिसमें दो लोगों की जान भी गई है। एक मामला नगर थाना क्षेत्र के सांसद आवास के सामने का बताया जा रहा है, जहां NH 531 पर एक बाइक सवार युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बस रॉन्ग साइड से आकर बाइक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां युवती की मौत हो गई और घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। यह मृत युवती नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर मोहल्ले की रहने वाली फिरोज आलम की 23 वर्षीय पुत्री सना परवीन बताई जा रही है। यह बीए की छात्रा थी और घायल युवक मीरगंज थाना क्षेत्र के ही एक डंगा गांव के लडन खान का 32 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कैश है। बताया जा रहा है कि कैश विदेश में पोलंबर का काम करता था और हाल ही में घर लौटा था। घटना के बाद से मृत युवती के परिजनों में कोहराम मच गया है और घायल युवक के परिजन भी परेशान है, युवक का इलाज करा रहे हैं और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के करमशिला गांव में भी खेत में काम करने के दौरान एक युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह खेतों में काम कर रहा था, इसी बीच वहां से गुजर रहे बिजली के करंट के चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृत युवक सूरज कुमार के परिजनों में कोहराम मचा है। यह करमशिला गांव के जोगेश्वर प्रसाद का पुत्र बताया जा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर में भी नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर एक तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इसमें एक युवक के मौत की भी खबर आई है। बताया जा रहा है कि मामला बंजारी में सुमन हॉस्पिटल के पास का है, जहां गलत दिशा से आकर एक मोटरसाइकिल बस से टकरा गई और इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। इधर माफियाओं की संपत्ति अधिग्रहण कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बरौली के थाना अध्यक्ष अलका सिंह को आज लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि कार्य में लापरवाही के आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिस को हर हाल में जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाना होगा, साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने में कोई भी कोताही बरतने पर पुलिस अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अभिमन्यु कुमार उर्फ मन्नू कुमार है, जो गोपालपुर के चौहान पट्टी गांव के विनोद शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने एक टेम्पो गाड़ी से 58 लीटर से अधिक देशी शराब को भी जब्त किया है, साथ ही 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनही के पास छापेमारी की, जहां टेम्पो से 58 लीटर से अधिक शराब पकड़ा गया। इस मामले में आरोपी मनोज कुमार पटेल पिता स्वर्गीय शिव नारायण पटेल, रवि कुमार पिता योगेंद्र फरवाड़ और पिंटू कुमार पिता प्रसिद्ध राय, ये सभी ढेबवा थाना गोपालपुर के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया। टेम्पो और शराब को जब्त कर इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी 55 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अजय कुमार पिता मुरली महतो और दूसरा महेश राम पिता स्वर्गीय सरफी राम, ये दोनों बैकुंठपुर के राजा पट्टी के निवासी हैं। पुलिस ने राजा पट्टी फैक्ट्री के पास ही गुप्त सूचना के आधार पर इनको दबोच लिया। इनकी मोटरसाइकिल से देसी चुलाई शराब 50 लीटर से अधिक पकड़ी गई और विदेशी शराब भी पकड़ी गई है। आज इन दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सरकार के निर्देश पर गोपालगंज के एडीएम का भी तबादला हुआ है। बताया जा रहा है कि सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक का तबादला कर दिया गया। इनको पश्चिमी चंपारण के बगहा का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं हथुआ अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा को भी यहां से स्थानांतरित कर मुजफ्फरपुर में जिला परिवहन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इधर तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में गंभीर युवक को डायल 112 की पुलिस ने तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। मामला नगर थाना क्षेत्र के NH 27 स्थित कोनवा रिलायंस पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार पुलिस कुर्की अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में सिधवलिया थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त पवन कुमार पिता धर्मनाथ प्रसाद साकिन बुचिया इनामी टोला थाना सिधवलिया के घर जाकर विधिवत कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए आरोपियों के घर के खिड़की दरवाजे तोड़े गए और सभी सामान को जब्त किया गया। बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास और SC/ST के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी शैलेश कुमार पिता जय किशोर रावत साकिन प्यारेपुर थाना बरौली का निवासी है। पुलिस ने आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आगे इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह को मिली अदालत से स्थायी जमानत। सदर एसडीओ का हुआ तबादला। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। अलग अलग हादसों में दो लोगों की हो गई मौत। बरौली थाना अध्यक्ष को एसपी ने किया लाइन हाजिर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
16: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
17: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
18: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
19: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
19: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
20: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
21: मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं।
22: एकांत,
21: भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण। धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो, भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी सत्ता का समूल विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं मानूंगा।

0: राजा को उसकी भरी सभा में चेतावनी कौन दे रहा है? कौन कह रहा है कि तुम अपने कर्तव्य से भटक गए हो और मैं तुम्हारे अहंकार को खत्म करूंगा, अत्याचार को खत्म करूंगा, मैं तुम्हारे राजवंश को खत्म करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर, आपके हमारे देश भारत के बनने और बढ़ने की कहानी भारतवर्ष में आपका स्वागत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गांधार से लेकर आसाम तक, एक भारत हो सकता है 1, 2, 300 साल पहले नहीं, आज से 2,300 साल पहले। ये सोच उस एक व्यक्ति की है जिसे इतिहास में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। भारतवर्ष में इस बार कौटिल्य।
1: 2,300 साल पहले के राजनीतिक मानचित्र में मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। उस समय भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और एक अखंड साम्राज्य था मगध। इस साम्राज्य की कौटिल्य ने अपनी सूझबूझ से नींव रखी थी, और इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने एक साम्राज्य ही नहीं खड़ा किया था बल्कि साम्राज्य को, देश को जनता के हित में कैसे चलाते हैं इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी।
0: राजा कैसा होगा, मंत्री कितने और कैसे होंगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा, इन बातों के सहारे कौटिल्य ने महान मौर्य साम्राज्य खड़ा किया और अपनी किताब अर्थशास्त्र के जरिए ऐसी धरोहर छोड़ी, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जिसकी वजह से कई लोग ये कहते हैं कि भारत को समझना हो, भारतीयों को समझना हो, तो पहले अर्थशास्त्र को समझो, कौटिल्य को समझो।
1: कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का मूल शब्द है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? राजा कहें या शासक, उसकी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? इसे आज से लगभग 2,300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया था। कौटिल्य राजा को एक राज ऋषि के तौर पर देखते थे।
2: सुख का मूल क्या है?
3: आचार्य, आपने हमें बताया है, सुखस्य मूला धर्म, सुख का मूल धर्म है।
2: धर्म का मूल क्या है?
3: धर्म का मूल अर्थ है।
2: अच्छा, तुम बताओ, राजा का हित किसमें है?
3: राजा का हित प्रजा के हित में होता है।
1: चाणक्य को राजा नहीं, एक ऐसा राजा चाहिए था, एक ऐसा शासक चाहिए था जो ऋषि जैसा हो। चाणक्य को जिस काल का माना जाता है वो भारत में महाजनपदों का काल था, जिनमें मुख्य थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेतिया, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छा, शुरसेना, अस्माका, अवंती और गंधार। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में शास्त्र, पुराण और राजा की इच्छाओं के मुताबिक शासन चलता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़ी घोषणा की,
2: राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्य का विधान शास्त्रों के विधान के ऊपर है। राज्य धर्म न्याय के आधार पर चलेंगे, न्याय के।
3: आचार्य, अगर धर्म न्याय का विधान और शास्त्रों का विधान परस्पर विरोधी हो तो?
0: एक बड़ा प्रश्न था। 2,300 साल पहले भी, आज भी। कौटिल्य जिसे धर्म न्याय या राज्य का विधान कहते थे वो आज का संविधान है। कौटिल्य ने कहा, राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के शास्त्र से सरकार नहीं चलेगी, संविधान ही सर्वोपरि है। जहां शास्त्र और राज्य के धर्म न्याय में विरोध हो वहां राज्य का विधान चलेगा, संविधान चलेगा।
4: कौटिल्य पहला भारतीय चिंतक हुआ प्राचीन भारत में, जिसने कहा कि परंपरा के कानून के अतिरिक्त राज्य अपना न्याय भी बना सकता है, अपना कानून भी बना सकता है, और अगर शास्त्र के न्याय से और राज्य के धर्म न्याय में संघर्ष हो, विरोधाभास हो, तो राज्य का धर्म न्याय प्रभावी होगा।
1: आज से 2300 साल पहले संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना काफी बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी कोने में उस वक्त ऐसी किसी बात पर बहस नहीं चल रही थी। जिस राज्य की कल्पना चाणक्य कर रहे थे वो उस वक्त भारत में भी मौजूद नहीं था। चाणक्य तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य यानी गुरु थे। तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है वो 2000 साल पहले अध्ययन अध्यापन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। यह है तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष की तस्वीर। कौटिल्य ने तक्षशिला में रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया और वहीं आचार्य बने। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में चाणक्य की गिनती होती थी। चाणक्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा था, लेकिन क्या जन्म भी यही हुआ था, इस पर एक राय नहीं है। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म गोल्य नाम के जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम चणक और माता का नाम चणेश्वरी था। इनके घर जैन मुनियों और सन्यासियों का आना जाना था। चाणक्य के जन्म पर भी जैन सन्यासी उनके घर पहुंचे। जन्म के समय बालक चाणक्य के मुंह में एक दांत था।
5: बालक के मुंह में जन्म से ही दांत विद्यमान है।
6: इससे तो ये प्रतीत होता है कि एक दिन बालक ये राजा बनेगा।
5: राजा?
1: इस भविष्यवाणी से चाणक्य के माता पिता चिंतित हो गए। वो अपने बेटे को राजा नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा जैन मुनि बने।
5: हमारी तो इच्छा थी कि ये बड़ा होकर जैन मुनि बने और या फिर आचार्य बने।
6: यदि इनका ये दांत निकाल दिया जाए,
1: यही नवजात बालक
6: तो आगे संभव है ये राजा नहीं,
1: अलग अलग नामों से जाना,
6: राजा का निर्माता बने।
7: वो तीन नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। अब आजकल के विद्वानों का हिसाब ये है कि विष्णुगुप्त तो उसका अपना नाम था, चाणक्य उसको कहा गया क्योंकि उसके पिता का नाम चणक था, वो मगध में पढ़ाते थे।
1: चाणक्य बड़े होकर आचार्य बने, लेकिन उनकी रुचि राजकाज में थी, दंड नीति में थी। राजकाज कैसे चलाना चाहिए, इन बातों पर थी।
2: वैराज्य, वैराज्य बिना राजा का राज्य, ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है, उन्हें अपना नहीं समझता, उन पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका विक्रय कर देता है।
3: इसे रोका कैसे जा सकता है आचार्य?
2: इसे रोका ही नहीं जा सकता, इसे पराजित भी किया जा सकता है।
5: वो कैसे आचार्य?
2: यदि देश के निवासी उस विदेशी राजा का विरोध करें तो उसे भागना ही होगा। सिकंदर को हमें पराजित करना ही होगा, ये हम सबका उत्तरदायित्व है, सबका।
1: चाणक्य जिस समय तक्षशिला में विदेशी शासन से होने वाली समस्याओं के बारे में छात्रों को पढ़ा रहे थे, उन्हीं दिनों एक के बाद एक देश पर कब्जा करता हुआ मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर तृतीय भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसके कब्जे में पूरा ग्रीस, यूरोप के कई देश, मिस्र, तब का फारस और आज का ईरान था। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा गया। फारस पर कब्जा करने के बाद उसकी नजर भारत पर थी।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: सिकंदर के सामने भारत का पहला राज्य था गांधार, जिसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके आते हैं। उस वक्त गांधार का राजा आम्भी था। आम्भी ने सिकंदर की सेना को रोकने की कोशिश नहीं की और राजा आम्भी ने बगैर विरोध के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली।

0: गांधार के बाद बारी पंजाब की थी, जहां का राजा पुरु था, यानी पोरस। पोरस की बहादुरी के बावजूद बहुत जल्दी पंजाब पर भी सिकंदर का कब्जा हो गया।
1: लोगों के बीच कई पीढ़ियों से जो कहानियां प्रचलित हैं, उसके मुताबिक अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने इस तरह एक के बाद एक राज्यों को झुकते देख कौटिल्य बहुत आहत हुए। उनका मानना था कि जब तक देश छोटे छोटे टुकड़ों राजवंशों में बटा रहेगा, देश की प्रजा लूटी जाती रहेगी। इसीलिए वो एक ऐसे राजा को तलाश करने में लगे थे जो चक्रवर्ती हो, जिसके राज्य की सीमा में पूरा भारत शामिल हो। लेकिन ये हो, उससे पहले उन्हें इस बात की चिंता थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान को कैसे रोका जाए।
0: छोटे छोटे राज्यों, महाजनपदों में बंटे भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। सिकंदर महान को भारत में कोई चुनौती दे सकता था तो वो मगध ही था। मगध आज के पटना और गया का इलाका है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध की सीमा गंगा से यमुना यानी मथुरा तक फैली हुई थी। मगध के पास बड़ी सेना थी और उस समय मगध के सिंहासन पर बैठा था नंदवंश का शासक धन नंद। आचार्य चाणक्य ने मगध जाकर राजा धन नंद से गुहार लगाने की सोची, लेकिन मगध की स्थिति कुछ और ही थी।
2: ये क्या अन्याय है? मैं एक महीने पहले ही कर भर चुका हूँ, ये किस चीज का कर? ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये अनुचित है।
3: चुप कर दोस्त, ये अतिरिक्त कर लिया जा रहा है, तुझे राजा का आदेश नहीं पता?
4: यहाँ तो निरंकुशता का साम्राज्य है।
0: मगध में राजा के अधिकारियों का आचरण भ्रष्ट और अत्याचारी था। चाणक्य और उनके साथी मगध के इस हाल को देखते सुनते धन नंद के दरबार में पहुंचे। धन नंद के दरबार में उस दिन दान पर्व का आयोजन हो रहा था। इस दिन राजा ब्राह्मणों को दान देने वाला था।
5: धनपति कुबेर की भांति मेरा कोषागार भी स्वर्ण मुद्राओं से भरा है, लेकिन धनानंद दान देना भी जानता है। ब्राह्मणगण धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इस दान पर्व में उन्हें भी दान मिलेगा। अमात्य राक्षस
6: जी मां,
5: आप श्रेणियों के अनुसार आचार एवं ब्राह्मण गणों के नाम पुकारे हैं।
6: आचार्य धर्म रक्षित

0: आचार्य विष्णुगुप्त।
1: मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है महाराज।
0: स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है? मैं मगध के राजा के इस तिरस्कार का कारण जानना चाहूंगा।
1: कारण जानने की आग्रह ना करें महाराज। सत्य कभी कभी बहुत कठोर और अप्रिय होता है।
0: आचार्य विष्णुगुप्त, कटु एवं कठोर सत्य के विष को धारण करने की क्षमता धनानंद में है। मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। बोलो
1: महाराज। प्रजा को उत्पीड़ित करके उनसे छीना हुआ धन दूषित और कलुषयुक्त होता है। इस धन का छोटा सा अंश ब्राह्मणों को दान करके आपको कलुष से मुक्ति नहीं मिल सकेगी।
0: धनानंद के अपमान के लिए नीच को फंदी बना लिया जाए।
2: क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु आपने आपने अभी इन्हें अभय दान दिया और इसके साथ साथ ये ब्राह्मण है और एक आचार्य भी।
0: ब्राह्मण नहीं, नीच है। तुमने इसे निमंत्रण क्यों दिया? धनानंद का अपमान करने के लिए इसे सभाकक्ष से धक्के देकर बाहर निकाल दो।
1: ये तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारे जैसा ही शासक राष्ट्र का विनाश करता है।
0: सैनिकों, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो।
1: धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मगध तुम्हारे अहंकार और अन्याय से त्रस्त है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी समूल सत्ता का विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा।

वैसे चाणक्य पहले से ही राज्य, राजा, प्रजा और शासन के संबंधों का अध्ययन कर रहे थे। चाणक्य को अब एक ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धननंद जैसे शासक न हो, भारत में छोटे छोटे राजा न हो। उसे एक ऐसे राजा की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष पर शासन कर सके। देश को कैसे चलाना चाहिए, इसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना शुरू की।

0: आचार्य, इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं?
1: मनुख्य नाम वृति अर्थ, मनुष्यवती भूमि वृति अर्थ, तस्य पृथ्वी लाभ पालन उपाय शास्त्रमर्थ शास्त्रमती। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं।
2: इसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने देश को बनाने और चलाने के लिए दुनिया में सबसे पहले सप्तांग मॉडल रखा।
1: राष्ट्र की मेरी जो अवधारणा है उसमें 7 अंग होने चाहिए, सप्तांग। तुम बताओ कौन कौन?
0: राजा, आमात्य, दुर्ग, जनपद, दंड।
2: कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहता है कि राज्य के लिए उसका स्वामी यानी राजा का होना जरूरी है। जैसा कि आज लोकतांत्रिक देश भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, कौटिल्य के सप्तांग में अमात्य यानी मंत्री को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। जैसा कि अब अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, सप्तांग सिद्धांत के मुताबिक जनपद या प्रजा के बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज प्रजा की जगह भारत के नागरिक हैं। कौटिल्य ने कोष यानी राज्य की अर्थव्यवस्था को राज्य का जरूरी अंग बताया था, जो आज भी है। कौटिल्य ने कहा था कि राज्य की रक्षा के लिए दंड यानी सेना आवश्यक है। इसकी तुलना आज हम पुलिस और सेना से कर सकते हैं। कौटिल्य ने मित्र यानी मददगार देशों को भी राज्य का अंग बताया था। आज हमारे देश को भी ऐसे मित्र चाहिए। दुर्ग से कौटिल्य का अर्थ सुरक्षित किला था, जहां राजा और मंत्री सुरक्षित रह सके। आज इसकी तुलना खास लोगों की सुरक्षा से हो सकती है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30-92 या 90765-65750।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्ष

0: सौ या 7070-7542 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: सप्तांग मॉडल ऑफ चाणक्य जिसमें स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र इति प्रकृति है। एक राज्य चलाने के लिए आइडियल लीडर शुड बी एबल टू कीप ऑल द 7 थिंग्स टुगेदर। तो प्रोसेस भी बता दे और कहते हैं कि चलो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो गया तो हाउ डू यू सॉल्व इट। तो अमात्य उत्पत्ति ही एक अच्छे अमात्य की क्वालिटी क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि चाणक्य के हिसाब से वी नीड टू आइडेंटिफाई द लीडर, फिर उनमें पोटेंशियल देखना, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो हैव ए मैनुअल जो आप बार बार रेफर कर सकते हैं। जैसे अपने भारत देश में वी ऑलवेज बिलीव द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट मैनुअल जिसके ऊपर पूरा देश चलता है।
2: कौटिल्य जिस समय एक राज्य यानी एक अखंड देश के साथ जरूरी अंगों का सिद्धांत गढ़ रहे थे, उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण कर यहां साम्राज्य खड़ा करने के सपने बुन रहा था। सिकंदर का खतरा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि मगध के राजा धननंद को न तो अपने राज्य की परवाह थी और ना ही प्रजा की। इस हालत में कौटिल्य ऐसे राज्य या देश का खाका खींच रहे थे जो विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबले के लिए सक्षम हो।
3: भारत में आज संसद है, मंत्री परिषद है, अलग अलग मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय के मंत्री हैं, सेक्रेटरीज हैं, अफसरों की एक पूरी फौज है जो देश चलाने का काम कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आज भारत में जो शासन व्यवस्था है उसे अंग्रेजों ने दिया, उससे पहले मुगलों ने भी एक व्यवस्था बनाई थी, इनसे पहले भारतीयों की अपनी कोई शासन व्यवस्था थी नहीं। जबकि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अंग्रेजों से, मुगलों से सैकड़ों साल पहले राजा और मंत्री परिषद से लेकर नीचे सड़क पर चुंगी तक वसूलने के लिए अधिकारी रखने की बात कही है।
2: कौटिल्य ने शासन चलाने के लिए राजा से लेकर गांव के मुखिया तक की व्यवस्था कर दी।
4: अर्थशास्त्र की परिकल्पना ये थी कि हम एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मोनार्की की स्थापना करें, सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रीकृत हो, खंडित नहीं हो, छोटे छोटे राज्यों में ब्यूरोक्रेटिक हो, जिसमें राज्य के सैलरीड पदाधिकारी राज्य की सेवा करें। इससे लगता है कि प्रशासन तंत्र काफ़ी विकसित और जटिल हो चुका था उस समय। उसके पहले के ग्रंथों में आप देखें, प्री कौटिल्य टेक्स्ट में, जैसे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आप देखेंगे तो सभा समिति विधाता और एक दो पदाधिकारी के नाम मिलते हैं, रत्निन जैसे एक पदाधिकारी का नाम है। तो बहुत सूची बहुत छोटी पहले के राज्यों में मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत विस्तृत सूची मिलती है।
3: कौटिल्य ने कैसी व्यवस्था सोची और वो भी कब? संस्था अध्यक्ष एक अधिकारी होते थे जिनका काम होता था कि लोगों को व्यापारियों के जाल फरेब से बचाया जाए। जैसे आज सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसी सड़क ही नहीं बल्कि नदियों में नावों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए और टैक्स वसूलने के लिए नावाध्यक्ष होते थे। लेकिन कौटिल्य की चिंता का विषय एक और था, भ्रष्टाचार, करप्शन।
5: मछलियां पानी में रहकर कब पानी पीती हैं इसका बताना संभव है। ठीक उसी तरह राज अधिकारी धन का कब हरण करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है, परंतु धन की चोरी करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों से पार पाना कठिन है।
6: आचार्य, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग क्या है?
5: अधिकारियों को एक ही विभाग में ना रहने दिया जाए ताकि उनके निहित स्वार्थ की पूर्ति को रोका जा सके।
4: करप्शन को रोकने के लिए या फिर एकात्मता प्रशासन में लाने के लिए उसने एक ऑडिटिंग सिस्टम वर्णित की है कि आषाढ़ पूर्णमासी के दिन जितने महामात्र हैं, जितने अकाउंटेंट्स हैं, वो एक जगह उनकी बैठक होगी और उस बैठक के दरवाजे बंद हो जाएंगे, सब मिल करके वहाँ अकाउंट सेटल करेंगे, जो अगर सहमत नहीं हो रहा है उसको फोर्स भी किया।

0: जा सकता है कि सही अकाउंट ये है।
1: कौटिल्य के सामने मगध में फैले भ्रष्टाचार का उदाहरण मौजूद था। मगध की भ्रष्ट व्यवस्था से भी उन्हें आहत बताया गया है। दरबार में अनादर की बात तो थी। कौटिल्य ने हेरा फेरी, गबन, चोरी जैसे भ्रष्टाचार के कई रूपों की अर्थशास्त्र में चर्चा की है। अधिकारी किस तरह गबन करते हैं, इसके 40 तरीकों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, उसकी पूरी कमान राजा के हाथ में थी। कौटिल्य के पास देश चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम का ब्लूप्रिंट था।
2: अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, अर्थशास्त्र राज्य शासन चलाने की कला की किताब है, जिसमें राजनीति भी है, जिसमें अर्थ भी है, समाज भी है, शासन व्यवस्था भी है, विदेशों से संबंध की भी बात है, सेना की भी बात है।
1: कौटिल्य के पास राज का चलाने का ब्लूप्रिंट था, लेकिन न राजा था न राज्य था जहां इसका इस्तेमाल हो पाता। धन नंद के दरबार से अपमानित होने के बाद कौटिल्य ने नंद वंश की सत्ता विनाश का प्रण लिया था, लेकिन यह प्रण पूरा कैसे होता? कौटिल्य को तलाश थी एक ऐसे नेतृत्व की जो मगध को नंद वंश के अत्याचार से मुक्त करा सके। कौटिल्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश भी थी जो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध में ही कौटिल्य की तलाश पूरी हो गई।
3: आचार्य, कौन है ये?
4: ये चंद्रगुप्त है आचार्य।
3: चंद्रगुप्त?
2: चंद्रगुप्त के बारे में 3 बातें मिलती हैं। नंद वंश से वो जुड़ा हुआ था, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। हमें लिटरेचर में एक वंश का जिक्र मिलता है जिसको क्लान कहते हैं, कुल का, मौर्या क्लान। तो कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि ये मौर्या क्लान का था। चाहे वो मुद्रा राक्षस हो या एक दो और किताबों में, चंद्रगुप्त के लिए जो शब्द का इस्तेमाल है, कुलहीन। कुलहीन का मतलब लोक, कमिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द सोसाइटी। कुल, तो ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।
1: चंद्रगुप्त कौन था, उसका संबंध किस परिवार से था, इन जैसे सवालों का एक जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल है। कौटिल्य 2300 साल पहले हुए, लेकिन उनकी कहानियां 7वीं से 12वीं सदी के बीच लिखी गई बौद्ध, संस्कृत और जैन ग्रंथों में मिलती हैं। महाकवि दंडी ने दशकुमार चरित में लिखा है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्यों के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त एक ग्रंथ की रचना की है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त का सबसे ज्यादा उल्लेख विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में है। विशाख दत्त ने नाटक मुद्रा राक्षस में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात पाटलिपुत्र के आसपास दिखाई है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: नन्ना मुन्ना लाही
3: देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
11: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: सौ हाथ की दूरी से लिया गया इतना चूक निशाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा तेजस्वी युवक है ये युवक, कहीं वो तो नहीं?
13: हाँ चल, ये वही चंद्रगुप्त है जिसे हमने पाटलिपुत्र पे सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था।
4: कुमार चंद्रगुप्त,
14: प्रणाम आचार्य।
13: तुम्हारा कल्याण, हमने पाटलिपुत्र में तुम्हें अपने साथियों के साथ सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था।
14: क्षमा करें आचार्य, मगध का शासन प्रजा की सहायता करना तो दूर, उन्हीं को लूट रहा है। करों की वसूली के नाम पर सैनिक प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, यहां तक कि विधवाओं पर भी दया नहीं की जा रही। यह असहनीय है आचार्य।
12: वीरता का प्रदर्शन समझ बूझ कर करना चाहिए।
13: इन्हें नमन करो चंद्रगुप्त, ये आचार्य विष्णुगुप्त।
14: आचार्य विष्णुगुप्त, मैं चंद्रगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त को नमन करता हूँ।
12: आयुष्मान भव,
14: आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया आचार्य।
1: कौटिल्य चंद्रगुप्त से प्रभावित हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त में मगध सम्राट बनने की संभावना देख ली थी। इसी बीच यूनानी शासक सिकंदर की सेना पंजाब तक पहुंच गई थी, जहां राजा पुरु यानी पोरस ने उसका बहादुरी से सामना किया। इसके बाद से ही सिकंदर की सेना थकने और बिखरने लगी। सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया।

0: ये बहुत अनुकूल समय है चंद्रगुप्त। अलेक्षेंद्र की सेना थक चुकी है, वो अपने सेना के साथ वापस लौटने वाला है। उसके अधीन उत्तर पश्चिम सीमांत के देशों में विद्रोह शुरू हो चुका है। तुम उनका नेतृत्व करोगे और उन्हें यवन राज से मुक्ति दिलाओगे।
1: परंतु आचार्य, हमारा लक्ष्य तो मगध है।
0: अवश्य हम मगध पर आक्रमण करेंगे, लेकिन इससे पहले वो राज्य जो अलेक्षेंद्र से हार चुके हैं या उसका विद्रोह कर रहे हैं, हमें उन्हें अपने साथ मिलाना होगा चंद्रगुप्त। और हमारे लिए वो सभी राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मगध के शत्रु या मित्र हैं।
1: यानी शत्रु राज्य के शत्रु हमारे मित्र हो सकते हैं?
0: निश्चित रूप से।
2: कौटिल्य चंद्रगुप्त को समझा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में शत्रु और मित्र राज्यों से कैसे संबंध रखे जाए और विजयी होने के लिए साम, दाम, भेद और दंड की नीतियों का इस्तेमाल कब और कैसे हो।
3: साम, धान, भेद, दंड आर फोर डिफरेंट टेक्निक्स वेयर यू कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड सेट थिंग्स राइट। सो इन आवर लैंग्वेज इफ यू स्पीक इन दिस 2016 और इन द 21st सेंचुरी, इट इज गिविंग अवे रिवार्ड्स टू पीपल, दैट इज धान। Ved is creating difference of opinion between people. Dand is punishing. So we can say, how do we punish the criminals? How do we give rewards, that is dhana, to the police force or to the army or the people? And how we bring bed between the various fighting groups?
2: Kautilya ke nigrani mein Chandragupta Maurya ne Punjab se jeet ka silsila shuru kiya. Is jeet se pehle kuch Jain aur Greek sahitvid चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच मुलाकात का भी जिक्र करते हैं। बहरहाल पंजाब में जीत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरब की तरफ रुख किया।
1: आचार्य, नंद की सेना में 2,00,000 पदाती, 20,000 अश्वरोही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी हैं। मगध की ऐसी विशालकाय सेना को हम कैसे परास्त कर सकते हैं?
0: परास्त कर सकते हैं। युद्ध में केवल सेना की शक्ति ही नहीं, लोगों का समर्थन और सूचना की भी आवश्यकता होती है।
1: श्री आचार्य,
0: मगध की प्रजा और कुछ मंत्री धनानंद के विरुद्ध हैं। हमें उनका समर्थन लेना होगा और इस कार्य के लिए हमें गुप्तचरों की सहायता लेनी होगी। भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण।
2: लेकिन मगध की सेना के सामने चंद्रगुप्त और कौटिल्य को करारी हार का सामना करना पड़ा।
4: आप जब पेशावर तक्षशिला से शुरू करते हैं तो सीधे पाटलिपुत्र मत जाइए। आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए, आसपास के क्षेत्र की सेनाओं को अपने साथ मिलाते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। और वही किया चंद्रगुप्त ने अंत कि आसपास के क्षेत्रों में जो थे लोगों को जीतता गया, क्षेत्र जीतते गए और अंत में धनंद को भी उसने खत्म कर दिया।
2: कई लड़ाइयों के बाद अंततः कहीं अपने सैनिकों के सहारे और कहीं अपने दुश्मनों के दुश्मन के सहारे, कहीं पारिवारिक संबंध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया।

0: कौटिल्य से ये नहीं होता कि आप बड़े वो हेजीमोन हो जाते हैं, हेजीमोनिंग होंगे, आप हर एक को कॉन्कर करेंगे, आप इधर कटेंगे उधर करेंगे। कौटिल्य करता था, उसने भारतवर्ष को एक करना था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही है, चक्रवर्ती क्षेत्र, वो ना तो ईरान पे अटैक करने का था, ना ही तिब्बत पे, ना ही बर्मा पे, उसका चक्रवर्ती क्षेत्र के अंदर ही ये थ्योरी थी।
1: चंद्रगुप्त के शासन में पहली बार भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम मगध था। चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी से लेकर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में गोदावरी तक किया था।
2: और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
5: Across 10 of the 11 active missions.
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87-894-18744।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: पर कोनो जचल होना
1: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए OTP सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों की शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस चुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए NDA की ओर से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की ओर से रेखा गुप्ता, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने नामांकन किया है। वहीं जनशक्ति जनता दल की ओर से वीणा मांडवी प्रत्याशी हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। राज्य सरकार ने नगर निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में 30 अगस्त तक विभिन्न जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 2 या अधिक नगर निकायों का विलय, शहरों की सीमा का विस्तार, नए नगर निकायों का गठन तथा नगर पंचायतों को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि 2025 में भी ऐसे प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमा के बदलाव पर रोक लगाई गई थी। प्रदेश में इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने पटना में आयोजित इको टूरिज्म इन्वेस्टर मीट में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस सेल के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सुविधाएं और स्वीकृतियां दी जाएंगी। श्री किशोर ने बताया कि यह सेल विभाग के मुख्यालय में कार्य करेगा। जलकुंभी शिल्प विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योग विभाग और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस पहल से जलाशयों में फैलने वाली जलकुंभी को मूल्य वर्धित शिल्प उत्पादों में बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे आय के अवसर बढ़ने के साथ ही महिलाओं और युवाओं को टिकाऊ रोजगार मिलेगा। वहीं विभाग के सचिव कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत अगले 8 महीने में सहरसा और वैशाली के 200 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत चयनित घरों में सोलर प्लेट लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 55,000 से अधिक लाभार्थियों के रिकॉर्ड यूएलए पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। श्री अमृत ने अधिकारियों को इस कार्य में लगी एजेंसियों के साथ समन्वय कर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। कटिहार पुलिस ने कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि युवक द्वारा सोशल मीडिया चैट और ऑडियो कॉल के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियां, संवेदनशील स्थलों की जानकारी साझा करने तथा आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित सामग्री का आदान प्रदान किया जा रहा था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 14 जुलाई राज्य के दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ में सबसे अधिक 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी और गंडक समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए कल दोपहर कोसी बराज से 172,435 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
2: भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 20 फाटकों को खोल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण बीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध समेत सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी का डिस्चार्ज 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बागमती नदी रून्नी सैदपुर के कटौझा में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं लाल बकैया नदी बैरगनिया के बोहाबाड़ी में लाल निशान के ऊपर बह रही है। इधर गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। राजगीर स्थित खेल अकादमी में 25 और 26 जुलाई को राज्य स्तरीय तैराकी चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 42वीं सब जूनियर और 52वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकर ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर इस ओपन चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इच्छुक खिलाड़ी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
3: सब जूनियर एवं जूनियर स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल कराने का। ये सिलेक्शन ट्रायल प्रॉपर 50 मीटर स्विमिंग पूल में और सारे TSR के साथ आयोजित किया जाएगा। जो भी बच्चे इस स्विमिंग सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेना चाहते हैं वो खुद एक गूगल फॉर्म भर के रजिस्टर पहले अपने आप को कर लें।
0: अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला गली से पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में पहले से ही निलंबित चल रहे थे। किशनगंज के तेरापंत भवन में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायता की अपील की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया, कहा गंगा पथ से हरिहरनाथ मंदिर तक रोप वे की तैयारी। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, भाजपा से नीरज, जन सुराज से पीके ने भरा पर्चा, नामांकन के बाद जेजेडी प्रत्याशी गिरफ्तार, 4 घंटे बाद मिली जमानत। प्रभात खबर ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दहेज हत्या में जमानत देने में सतर्कता बरतें निचली अदालत। दैनिक जागरण लिखता है, लॉर्ड्स पर भारतीय बेटियों ने रचा इतिहास, पहले महिला टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराया। आज अखबार ने लिखा है, अगस्त से सरकारी अस्पतालों की सफाई संभालेंगी जीविका दीदियां। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, मुंगेर में उद्घाटन से पहले ही दरक गई 3,792 करोड़ रुपए से बनी 4 लेन सड़क, एनएचएआई ने गठित की जांच टीम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच, कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
11: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी, भारती जी बोल रहे हैं।
2: हाँ,
1: मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
2: क्या हाल चाल है आपका?
1: हालचाल तो अभी क्या हालचाल पूछती रहती है। हम लोग आपका हालचाल पूछते नहीं है, आप ही बताइए आपका हालचाल क्या है।
2: मेरा तो ठीक है।
1: नहीं, ठीक तो नहीं है, कुछ तो अनबैलेंस तो जरूर होगा।
2: हो जाता है।
1: ये बात सही है। तो अभी इसी के उपलक्ष में कोई गाना सुना दीजिए।
2: गाने के बोल कुछ बोलिएगा।
1: गाने के बोल?
2: हाँ?
1: गाने का बोल क्या बोलूं। कर्तव्य फिल्म का कोई सुना दीजिएगा गाना।
2: कर्तव्य मूवी का?
1: कर्तव्य मूवी का कोई भी गाना हो चलेगा। हाँ, तो वही सुना दीजिएगा मैडम। अब तो मौसम ठंडा उंडा, बहुत लोग सारे लोग देख रहे हैं, सुबह ही आपका प्रोग्राम हम सुन रहे थे, सारे लोग बोल रहे हैं मैडम मौसम, मैडम मौसम, मैडम
2: मौसम, सब कोई पूछ रहा है।
1: और कोई नहीं पूछता है, खेतों में धान उगा कि नहीं, खेतों में धान लगा कि नहीं। आपका खेती है कि नहीं मिलो?
2: है, मेरे यहाँ भी खेती होता है, मेरे घर भी होता है। अपना खेत हो तो कहीं से कुछ ज्यादा मतलब खरीदना और इतना नहीं पड़ता है।
1: अच्छा, आपका घर का ये सब कुछ हो जाता है ना। चलिए मेरा तो ठीक है, हो कर्तव्य फिल्म का गाना सुनवा दीजिएगा कोई।
2: चलिए ठीक है, गाना पूछ करते हैं, सुन करिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम। हमें

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90.2 एफएम में।
0: जी नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार,
0: हम विमलेश कुमार शर्मा जिगना मठ से बोल रहे हैं, थाना निरगंज जिला गोपालगंज।
1: रेडियो बंद कर दीजिए ना।
0: जी बोलिए।
1: हाँ, अब क्लियर आवाज आ रहा है। तो क्या हाल चाल है?
0: हम रहा था तो ठीक है, अपना बताइए।
1: हमारा भी ठीक है। बारिश हो रहा है?
0: जी हाँ, बारिश तो कल से हो रही है, रात से हो रही है।
1: मौसम भी ठीक है,
0: बहुत बहुत खूब सुहाना मौसम है। मौसम तो बहुत अच्छा है।
1: बताइए, कौन सा गाना सुनिएगा?
0: कौन सुनना है? आज एकादशी व्रत में हूँ, हम एकादशी व्रत करते हैं, इसी से हमको गाना सुनना है, भक्ति सॉन्ग सुनना है। और नहीं है प्रेम प्रभु जी का तिहर सौगात, यही सॉन्ग सुना दीजिए टेकारी लाल का आवाज में।
1: और डेडिकेशन बता दीजिए किसे है?
0: जिसके रामा जी प्रसाद है, अनिल जी है, मनोज शर्मा जी है, और गुड़िया जी है, निर्मला जी है, बच्चा जी है, और संजय जी है, और आप और सोनी जी और सोनू सर जी, इतने लोग सुनने वाले हैं रेडियो रंजन, सबको और रेडियो रंजन को पूरा परिवार के साथ भक्ति सॉन्ग सुनना है, लोग को सुनाना है।
1: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.2।
0: नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: भारती मैम नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: कैसन बनी?
2: हम तो ठीक बने, रुआ बताए रुआ कैसन बनी?
1: बस इसे बढ़िया ठीक बा।
2: अच्छा, सब तो अच्छा भावे, समान न हो इसे।
1: पहचान गई? एगो खुशी के बात बा कि हमार भतीजी पूजा कुमारी के आज बर्थडे बा, तो बर्थडे के अथी में अगर आज सुनावे के बा तो बर्थडे के गाना सुना देम।
2: अच्छा, तो गाना हम अपना मन से सुनाएं कि रोवा बताएं?
1: अपने मन से सुनाएं, बनिया भोजपुरी में सुना देम बर्थडे के गाना। पूजा बेटा के हमार जन्मदिन बा।
2: भतीजी की?
1: भतीजी है लेकिन बेटा बेटा बराबर एकदम। हमरे से हमरे साथे खायल पियल सुतल रहल सब कुछ हमरे साथे बेटा बेटा ही है।
2: रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ है रोवा भतीजी के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना बा।
1: तो वही पता नहीं है, आज रिक्वेस्ट बा कि आज बजा दें।
2: बिल्कुल,
1: कहियो ने की कहले कि हमारा आज बजा दें, बाकी आज बजा दें रोगा।
2: हाँ, बिल्कुल बजाएं,
1: आज बजा दें।
2: चलिए ठीक है, भतीजी के नाम भी बताएं?
1: पूजा कुमारी।
2: अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते
1: हैं। आगे बात हो,
2: गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
1: चलिए धन्यवाद।

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: हम रामा जी प्रसाद बोल रहे राजन मार्केट से।
1: क्या हाल चाल बराबर?
0: हाल चाल ठीक बाने बरखा होता है?
1: हाँ बारिश तो होता है।
0: चलिए तब हमने दुनिया बराबर फोन कर हमने क्या बारिश नहीं होता ना छावे होते रहे।
1: हाँ छावे होते हैं होते ना रहे।
0: हाँ बतिया तो नहीं गाना सुनाए
1: बता दी।
0: रिमझिम बरसता सावन होता।
1: अच्छा ठीक हुआ, गाना क्यों के सुनाऊंगे बा?
0: जितना लोग सुन रहा सबको सुनी और धना वाला भाई बराबर हमारा का नाम ले लेना, उनका नाम हमारा तो याद नहीं करो। अभी हमारे दूसरा नंबर पे हम मानी का
1: ना 3 नंबर पे।
0: चलिए ये गाना सुना दी। नमस्ते
1: ठीक हुआ। नमस्ते गाना प्ले करता नहीं सुनते रहे रेडियो 90.4।

0: लगा।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 8470309 या 9765665750।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: नमस्कार भारती जी।
2: नमस्कार।
1: पहचान रही है कि नहीं? धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़ से।
2: क्या हाल चल रहा है?
1: बढ़िया है।
2: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी ड्यूटी कर रहे हैं, काम है, अभी काम कर रहे हैं।
2: अच्छा, चलिए ठीक है। नाश्ता तो करके गए होंगे?
1: हाँ, नाश्ता 8 बजे करके आते हैं।
2: लंच कब होता है?
1: लंच 1 बजे होगा।
2: अच्छा, चलिए।
1: लगा रहे थे बहुत देर से, नहीं लग रहा था, फिर सोचे की बार होता है तो याद आ
2: जाए। चलिए, भाग्य से एक बार ट्राई किए तो लग गया।
1: बहुत लोग फोन करते हैं ना, लगातार कॉल आता ही रहता है। और बारिश वरिश हो रहा है कि नहीं?
2: बारिश तो हो रहा है इधर, अभी बारिश ही हो रहा है।
1: हो रहा है, हम लोग को भी कल से पानी इधर हो रहा है।
2: चलिए तो ठीक ही है, मौसम ठंडा हो ही गया है।
1: पानी जरूरी है अपने तरफ, इसलिए धान उन्दर रोपाई चालू है ना। ज्यादा होगा तो अभी फायदा रहेगा ना, तो नहर से कितना पंप सेट चलाएगा आदमी। हम लोग तरफ नहर से चलता है पानी, पंप सेट लगा के चलता है। गाना सुनवा दीजिए हमको, 800 साल का 800 ज्यादा का शराब में।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ, रंजीत है, सुनील है, वरुण पांडे है।
2: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: हेलो जी,
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: गुड मॉर्निंग भारती मैम
0: जी। गुड मॉर्निंग।
1: बहुत मुश्किल से फोन लगता है मैम, बहुत दुख होता है कभी कभी फोन नहीं लगता है तो।
0: अच्छा जी, अभी तो जस्ट कॉल एक कटा तो आपका आया।
1: बहुत देरी से हम ट्राई कर रहे थे, लग ही नहीं रहा, तो फिर मैसेज भेजे हम कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी भी कॉल नहीं लगते। हर समय बिजी बिजी बताता मैम, ऐसा क्यों, कोई ट्रिक?
0: नहीं, अब कॉल लगातार आते रहते हैं, अभी कॉल कटता नहीं है, तब तक एक कॉल रेडी रहता है।
1: जी, मैम गाना सुन रहा था
0: जी, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
1: ये लैला मजनू का गाना है, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सॉन्ग तो सबसे पहले भारती मैम को और जितने भी श्रोता है उनको, सुनने वाले को।
0: नाम बता दीजिएगा अपने।
1: मैं गया जी से बोल रहा हूँ मैम, शंकर गुप्ता।
0: अच्छा
1: जी, अभी आइए गया में, बोध गया में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है।
0: बहुत अच्छा जगह है
1: जी मैम,
0: मौका मिलेगा तो कभी आएंगे लोग घूमने।
1: बिल्कुल आइए, वेलकम। कब तक बज जाएगा मैम
0: ये सॉन्ग आपको, आज या फिर कल सुनने को मिल जाएगा?
1: जैसे आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे को मिल जाएगा सुनने?
0: हाँ, सैटरडे तक बजता है ना।
1: मॉर्निंग में ही मिलेगा, 11 बजे वाली, शाम में।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू
0: जी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी मैम, नमस्कार।
15: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMP से।
15: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
14: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे हैं मैम। जी जी जी मैम,
15: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
14: फिल्म धड़कन से है और गाने के वो है दुल्हन का सहरा सुहाना लगा है। तो सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दोस्त लोग उनके सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
15: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
14: आपके साथ सुनना चाहते हैं मैम।
15: ओके, और सब बढ़िया?
14: जी जी मैम, सब ठीक है मैम। आऊँ, वहाँ का मौसम के क्या हाल चाल है मैम?
15: इधर तो अभी बारिश हो रहा है।
14: जी जी, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं है मैम, अभी तो नहीं हो रहा है, सुबह तो हो रहा था, अभी 11 बजे नहीं हो रहा।
15: अच्छा, नहीं लेकिन अभी तो इधर लगातार रात से हो ही रहा है।
14: जी जी मैम,
15: चलिए फिर ठीक है।
14: ओके मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी, योगेश जांगरे बोल रहे हैं, गणेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: अभी बस वही धान लगाने का काम चल रहा है घर में।
1: तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है?
0: नहीं, अभी बीच में बारिश हो गया था ना, तो थोड़ा उससे विलम्ब हो गया, ज्यादा बारिश हो गया था। जी,
1: चलिए कोई नहीं। बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?
0: फिल्म धर्म क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दीदी हो।
1: और कौन किसी को डेडिकेट की है?
0: जी, कुछ मित्र हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवांगन जी, संतोष वैष्णव जी, मुकेश शर्मा जी और तमाम साथी।
1: चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम, हर हर महादेव।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: जी नमस्ते।
10: नमस्ते,
11: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
10: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
11: बस बढ़िया है, अपना बताइए।
10: हमारा भी ठीक है,
11: बाकी सभी लोग ठीक हैं?
10: सब कुछ ठीक है।
11: चलिए अच्छी बात है। और आज का फरमाइश है हमारा हेलो ब्रदर मूवी से, चुपके से कोई आएगा वाला ट्रैक सुनना है।
10: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
11: आपको, सोनी जी को, मनोरमा जी को, सोनू सर को और लिसनर्स लोगों में, पटेड़ा से बोला जी को, थाने से रामाजी प्रसाद भैया को और गोपालगंज निवासी और दुबई रहते हैं जो ईरान भैया उनको, और गणेश कुमार जो है पीपरा नारायण से जुड़ते हैं उनको, और किसी किसी लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है सबको।
10: चलिए ठीक है,
11: ठीक है, बाकी गाना प्ले कर दीजिएगा।
10: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मैं शाहजहां बोल रही हूँ मेजपुरी से।
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: एकदम बढ़िया। आप बताएं, आपका हाल चाल कैसा है?
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: आप कौन बोल रही हैं?
1: भारती।
0: अच्छा, नाम बहुत सुंदर थे।
1: अच्छा
0: जी जी बिल्कुल। कौन रखता है?
1: मम्मी पापा और कौन ही रख सकता है।
0: तो और से बताएं अपने बारे में।
1: हम सब ठीक हैं और अभी तो यही काम हो रहा है रिकॉर्डिंग वाला।
0: जी जी बिल्कुल। बारिश आ रही है?
1: नहीं, अभी तो बारिश नहीं आ रहा है। आपके तरफ हो रहा है क्या?
0: जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बारिश आ रहा है।
1: अच्छा, चलिए तो बढ़िया है। बारिश हो रहा है फिर भी मौसम थोड़ा उमस की तरह हुआ रह रहा है।
0: बिल्कुल।
1: और सब भोजन हो गया आपका?
0: जी जी, नाश्ता पानी हो गया है। आप बताए, आपका हुआ नाश्ता पानी? क्या क्या खाई है?
1: हम तो दाल फ्राई चावल रोटी खा के आए हैं।
0: ओके, ठीक है। हम सब्जी खाए हैं।
1: अच्छा, चलिए ठीक है।
0: जी जी बिल्कुल। तो आज मुझे सॉन्ग सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
0: सॉन्ग का बोल है, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको डालूंगा तुमसे, ऐसे कोई सॉन्ग है वही सॉन्ग।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी जी, आप बहनी और जितने सुन रहे हैं सबको सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके
0: ओके ओके, तो सबको सुनाइए और मैं चलती हूँ।
1: ठीक है, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा
1: मुझे भी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: जी नमस्ते।
5: नमस्ते,
4: हम पचपरा से बोलते हैं भोला जी।
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
4: ठीक है, आप ना बताएं?
5: हमारा भी ठीक है।
4: बारिश उदिश होता नो?
5: हाँ बारिश तो होता, अभी तो नहीं हुआ, मैंने भय रहा कुछ देर पहले।
4: पछुआ महाराज बहुत लगल हमने के पानी दो दिन से होता, खूब पानी होता, रातों के पानी भी बहुत तेज भइल बा।
5: अच्छा चलिए, तब तो ठीक है बा।
4: जी हमने तो रोपनी सब हो गए, सब मोटर चला चला रोपनी हो गए, लेकिन दो पानी हो गए सब।
5: हाँ हाँ, ये तो और ही अच्छा बात हुआ, एक दोहरानी पानी हो गए।
4: आज गाना रही इतिहास में सगरो लिखल भाई, मैं राहुल से केहू न जीतल बा।
5: और ये गाना क्यों के सुनाऊ के बा?
4: रेडियो रंजन के पूरा लोग सुनी, जितना नहीं सुन रहा बारो वो सुन ले।
5: बिल्कुल सुने,
4: हम वो सुन ले। रेडियो रखले बने, रेडियो भी चार्जिंग वाला, चार्ज करके एक दिन चार्ज होला तो चार दिन चले ला।
5: चलिए ठीक है बाबे
4: जी,
5: तो गाना प्ले करते नी।
4: जी जी सुनो जी, आज की कॉल
5: अब ई रोवा की कन्फर्म ना करें के
4: ज्यादा
5: हो जाला तो मैंने तन टाइम लाग जाला।
4: हाँ हाँ, आज कई दिन से तो सुनोगे टाइम लेके मिले, जैसे कि आदमी रातों रात दिनों दिन मोटर चलाओ तो आदमी तो कई दिन तो कार्यक्रम रह सुन ले, लेकिन लेकिन अब कहे तो आपको स्वप्न हो गए आदमी।
5: राहुल फरमाइश दोसर के सुन ले ला
4: ना है ना,
5: और ही का चाहे।
4: अरे अपने खातिर सब थोड़ी कर जला, कमाई जला, कमाई जला जो सब कोई खा। जी बात बात ठीक बा।
5: चलिए फिर गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: जी नमस्ते।
5: नमस्ते
6: ए जी, एक बात बताइए,

0: के यहाँ था लग जला तू का चीज हो।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 में।
1: जी गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग,
1: कैसी हो?
2: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मेरी
2: नाम बता दीजिए।
1: नाश्ता हो गया?
2: नाश्ता करके आते हैं घर पे।
1: गाना सुना दीजिए।
2: बता दीजिए।
1: कोई भोजपुरी गाना सुना दीजिए।
2: अच्छा, आप नहीं बताइएगा?
1: जोर।
2: अच्छा चलिए, कोई नहीं, भोजपुरी सॉन्ग ही ना सुनना है।
1: कोई भी भोजपुरी गाना
2: कौन सुन का सुनिएगा? नीलकमल का या फिर हरी लाल का?
1: समर सिंह के सुना दीजिए।
2: ठीक है चलिए फिर। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
1: अपने फैमिली का करना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ। 90.4 FM।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
9: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up. Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत दूर साल है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
14: कैसे हैं मैडम?
15: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
14: ठीक है, अपना बताइए।
15: बस यही काम चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। और क्या
14: मौसम कैसा है?
15: मौसम सही है, गर्मी नहीं है और बारिश हो रहा था कुछ ही देर पहले।
14: मुझे एक सॉन्ग सुन रहा है मैडम,
15: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
14: मैंने क्यों प्यार किया या मार दिया, ये बताओ।
15: अच्छा, और किसी को डेडिकेट किया
14: है? हाँ,
15: तो चलिए
14: मैडम,
15: मैं आपको कन्फर्म तो नहीं कर सकती लेकिन आज और कल दो दिन चल जाएगा।
14: अच्छा,
15: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 असम में। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी धान के रोपने हो रहा है।
0: अच्छा, हो गया कि अभी हो रहा है?
1: हो रहा है, अभी चालू तो हुआ। सूख के दिन था
0: और
1: बारिश हुआ तो चालू हुआ।
0: चलिए, तब तो बढ़िया है। तो बारिश के पानी से ही सारा काम हो गया कि मतलब चलाना भी पड़ रहा है? और
1: चलाना नहीं पड़ रहा है, बारिश का पानी है।
0: चलिए, तब तो बढ़िया है। और बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: साजन साजन साजन मेरे दुल्हन सजाएगी।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: अम्मा नसीब कौन राय बाती करना
0: रखिए। तो चलिए, गाना प्ले करना है, सुनते रहिए सबके साथ।
1: जी नमस्ते।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने।

0: लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, नमस्कार।
8: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
7: जी धन्यवाद। मुन्ना बोल रहा हूँ मुंबई से।
8: क्या हाल चाल है?
7: बढ़िया है, अपना सुनाइए कैसे हैं?
8: हम भी ठीक हैं।
7: जी चलिए, अच्छा ऐसा ही रहना चाहिए। और सब मौसम कैसा है उधर का?
8: मौसम इधर का ठीक है,
7: बारिश हो रहा है।
8: हाँ बारिश हुआ था, अभी तो फिलहाल खुला हुआ है।
7: जी
8: आप बताइए, आपके तरफ कैसा मौसम है?
7: अभी तो 2-3 दिन से धूप निकल रहा है।
8: अच्छा,
7: बारिश अभी बंद है।
8: गर्मी पड़ रहा है क्या?
7: गर्मी है, हवा चल रहा है।
8: चलिए सब हवा है तो उतना गर्मी नहीं लगता होगा।
7: नहीं, हवा है, गर्मी उतना नहीं लग रहा है।
8: चलिए ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
7: शिल्पी राज की आवाज में एक गाना है, नना दिया रे नना दिया थाप दे हरा दिया, यही गाना है। ठीक है, यही वाला सुना दीजिए।
8: मतलब गाना ठीक है ना?
7: हाँ हाँ, गाना में कोई वो नहीं है, साफ सुथरा गाना है, बस यही है। ठीक है,
8: तो फिर गाना किसी को सुनाना भी है?
7: जी आपको डेडिकेट रहेगा और सुमित जी को और जितने भी टीम जिम सुनने वाले हैं सभी लिसनर को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
8: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजिम 90.4 FM।
7: जी धन्यवाद,
8: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कलकत्ता के रेडियो रूम 94.4 FM में।
1: नमस्कार, पप्पू ठाकुर बोल रहे हैं, रामदास गई कटिया थाना गोपालगंज।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है जी। आरती जी, आप तो बताइए कैसा मौसम है अभी गोपालगंज का?
0: गोपालगंज का मौसम तो अभी सुहाना है।
1: नहीं हो रही है ना?
0: नहीं, अभी बारिश खुला हुआ है।
1: खुला हुआ है, रात से खुला हुआ है। हम भी आए हुए हैं आपके SMB कॉलेज जलालपुर में। बोल रहे हैं मैम, गाना एक सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: आज एक और फरमाइश कर दे रहे हैं, मोहम्मद रफी साहब का गाना है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का। गाने का बोल है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब भी याद आएगी मेरी मेरी साथ।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी?
1: हाँ हाँ, जितने पुराने लिस्ट में था सुनने वाले हम सब के लिए है, और ये सॉन्ग आपके लिए भी है। गाना सॉन्ग भी सुना करिए। उसके बाद से अभी तो मैं लाइव है सुन रहा हूँ योर वॉइस एंड योर चॉइस सोनी मैम के साथ में। आप भी आइएगा 2 बजे के बाद में भी।
0: जी, पूरी कोशिश है।
1: ठीक है ठीक है, आइए। ओके
0: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 92899225667 या 97714861464।
12: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ हूँ और आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ और शो SMS फरमाइश के साथ। समय 9:22 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277165696। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि हम कार्यक्रम को आप सभी के बीच प्रस्तुत करें और आप पुराने गाने की जगह नए गाने की फरमाइश करें और हम आपकी फरमाइश पूरी ना कर पाएँ और आप इंतज़ार करते रह जाएँ और कार्यक्रम की समाप्ति भी हो जाए। तो आप जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं पुराने गाने के लिए स्पेशल कार्यक्रम है तो पुराने गाने की फरमाइश करें। 90s या ओल्ड इज गोल्ड, भोजपुरी हो या हिंदी, कोई भी हो, लेकिन पुराने होते हैं तो आपकी फरमाइश हम बिल्कुल पूरा करेंगे। यदि नए होंगे तो हम बिल्कुल पूरा नहीं करेंगे। कुछ मैसेज पहुंचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गानों के साथ। और यहाँ पे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो क्या हाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, मैसेज करती हैं निशा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शोंग तेरी जुल्फों से खुदाई तो नहीं मांगी थी, सिंगर MD रफ़ी। और इस संदेश को भेजते हैं सगीर अंसारी जी फ्रॉम तेजपुर आसाम से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्ते। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश करती हैं जब तुम चाहो पास आते हो। और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल बढ़िया है, अपना बताएं। फिलहाल गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है, बने रहा हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनो भैया क्या हाल है, मैं पल्लवी पांडे भिड़िया से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सविया फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है छतरी ना खोल बरसात में, प्लीज़ सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि मैं शैलेंद्र कुमार यादव विनोद मोड़ से और गाना सुना दे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल गाने की लाइन हमें समझ में नहीं आ रही। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे पल्लवी पांडे जी, आप थोड़ा सा सब्र करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैसेज पहुंचते जा रहे हैं। आगे लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर, रंजन कुमार पंजाब से जुड़े हैं और हमारा भी फरमाइश गाने का बोल है भामरवा के तोहरा साथ जाई। तो आपसे क्षमा चाहेंगे, हम इस गाने को नहीं सुनाएंगे। आप लोग निर्गुण और नाथ शरीफ भजन कीर्तन की फरमाइश ना करें, आप लोग साधारणतः गाने का फरमाइश करें जो हम आपको सुना सकें। आप लंबे लंबे गाने का फरमाइश करेंगे तो यह बहुत कम समय का कार्यक्रम बना हुआ है और हमारा समय भी बीत जाएगा और गाने सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा। आधे गाने सुनने से कुछ नहीं होता है, फुल एंजॉय कीजिए तो जो कुछ आता है, या 75% तो गाने सुनना जाता है तो ही मज़ा आता है। तो आप लोग साधारण गाने की फरमाइश करें और स्पेशली पुराने गाने बनाए गए इस पुराने गाने के लिए शो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि पहले वाले गाने जो मोहम्मद रफ़ी जी और आशा भोसले जी और मुकेश जी के जो गाने थे, थोड़े 4 मिनट 3 मिनट के 3.5 मिनट के गाने हैं और उसको सुनने में सुकून मिलता है, इसलिए स्पेशली यह पुराने गाने के लिए ही शो बनाए गए हैं और पुराने गाने की ही मांग की जाती है। तो आप लोग पुराने गाने की फरमाइश करें, बिल्कुल हम पूरा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और पहले गाने का फरमाइश शगीर जी की प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

रेडियो एम जी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। अभी जो गाने हम सभी सुन रहे थे, उसी टाइप के गाने के लिए स्पेशली यह शो बनाया हुआ है। और फिर आप लोग नहीं मानते हैं तो 90s के गाने को भी शामिल किया गया, और आप लोग फिर उससे भी आगे बढ़कर और अभी के जो गाने रिलीज हो रहे हैं उस गाने को भी फरमाइश करते हैं। तो उस गाने को तो नहीं सुना सकते हैं, 90s के गाने सुनाने के लिए मान्यता दी गई है तो हम उसको सुना सकते हैं। तो आप लोग जितने पुराने गाने फरमाइश करेंगे उतने आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाएगा। यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं, और कुछ मैसेज जो हमने शामिल करने स्टार्ट किए उससे भी पहले मैसेज किए गए हैं जो है। और लिखा गया है कि हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी। मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी, दरगाह, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से, और आज मुझे सॉन्ग सुनना है। आज मेरा 11वां दिन है और सॉन्ग ने मैं आया सपनों में कोई सहजादा चुरा के मेरा दिल ले गया, फ्रॉम द मूवी वापसी सजन की। और मेरा सॉन्ग प्ले होगा क्या? तो बिल्कुल आपके सॉन्ग प्ले करेंगे। और वो भी अभी और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, मनीष रजक, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से, और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते, MD नौसाद, दरभंगा, बाजितपुर से, और मुझे एक गाना सुना दीजिए, फिल्म आप ऐसे ना थे, गाने का बोल तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे MD नौसाद जी। और आगे मैसेज पहुँचे हुए अभी आगे लिखा गया है कि ओहो, लिंक करते हैं शेयर, तो बिल्कुल खुशी से। और हाँ, निर्गुण गाने की फरमाइश हम प्ले नहीं करेंगे, आप गाने को चेंज कर ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हमको वो वाला गाना मत सुनाइएगा और ये वाला गाना सुनाइएगा, बिल्कुल आप जो कहेंगी वही गाने सुनाएंगे। आप लोग की फरमाइश के लिए हम लोग बैठते हैं, जो आप लोगों का आदेश होगा उसी गाने को प्ले किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश प्रीति रैदास की पूरी करते हैं और सुनते हैं कि पसंद के गाने, आया कोई सपनों में सहजादा चुरा के मेरा दिल ले गया।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे आप सब, और काफ़ी प्यारा शाम सुन रहे थे और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कई, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है भैया प्लीज़, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे दीपक जी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो गुड इवनिंग, हाउ आर यू आरजे सोनू सर जी, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है। आप कौन, अपना भी परिचय दें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, बरसात भरे मौसम में कैसे हैं? हम भी जुड़े हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि और कहा जा रहा है कि मेरा भी वेलकम कीजिए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत ही है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपने अब तो परिचय नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना भी परिचय दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि हाय सर जी, हमें भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल आप भी बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं मनीष जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, यही गाना सुनना है, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने मंजिल को पाना है गाने को इंजॉय करते हुए।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710 3992 या 9765665750।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। सोशल लाइफ में फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, आगे मैसेज करते हैं शैलेंद्र जी और गाने के फरमाइश करते हैं, मैंने घुंघरू बांध लिए, इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे शैलेंद्र जी। और यहाँ पे कुछ मैसेज भी पहुँचे हुए थे, मैसेज शामिल कर ले। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि नाइस सॉन्ग, मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरे गाने कब बजेगा, तो बिल्कुल आपके भी गाने बजेगा। और इस मैसेज को करते हैं पल्लवी पांडे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर, हमें भी गाना सुनना है, निशा पांडे। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन गाने के फरमाइश तो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि लोगों की संख्या अधिक है और समय बहुत कम है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि घर का सिलेंडर भरवाने ले गया था, 950 की जगह घर वालों ने 1100 बता दिया। अब घर वाले मोदी को गोली, आप इधर उधर मैसेज क्यों करते हैं जी। और आप आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और कह रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं सर जी, तो बिल्कुल आपका हो सके तो आ जाएगा। और सुनो जी, आप जब भी मैसेज करें तो थोड़ा अच्छा सा मैसेज करें, क्योंकि ये आवाज़ें कई लोग सुनते हैं, और किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, और इसमें कोई कंप्लेन करेगा तो हमको डांट सुनने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से मैसेज करें ताकि लोगों को मनोरंजन हो, या मनोरंजन का माध्यम है और कार्यक्रम चलाया जाता है मनोरंजन के लिए, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो आप थोड़ा सा समझें और अपने लाइन को जो भी टाइप करें थोड़ा सोच समझ के टाइप करें। आगे मैसेज पहुँचे हुए तो आगे मैसेज को हम रुकते हैं और गाने को प्ले करते हैं, अगले गाने की फरमाइश सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। हम सभी रेडियो 90.4 एफएम पे मैंने घुंघरू बांध लिए।

0: मेरी जान।
1: टेडरम सीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा जा रहा है कि क्या हुआ भैया, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर ही देते हैं और इस मैसेज को करते हैं दीपक एंड जेलर जी और गाने की फरमाइश करते हैं। कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है दिल दिल तो उसे भूल जा, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं दीपक एंड जेलर जी और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमझिम 94 एफएम पे। दिल तो उसे भूल जा।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9774186164।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँच रहे हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। गाने का बोल बाबुल के अंगना बेसार, पिया घर जैबू बिटिया। विवाह गीत की फरमाइश पहुँचा हुआ है निशा के तरफ से, तो चलिए इनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय सोनू सर जी, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में अनूप यादव जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, चलिए सोनू बाबू मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं सोनू वर्मा बिलवा जौनपुर उत्तर प्रदेश से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इनका मैसेज मिल ही नहीं रहा है और हमारे पड़ोसी ही हैं, बिदबेरवा के रहने वाले हैं। तो फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपके नाम तो हम नहीं बता सकते हैं बट आपके मैसेज हमने देखे थे और आप गाने को एंजॉय करते रहें। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगले पसंद के गाने निशा की और विवाह गीत।

अभी प्यारा विवाह गीत सुन रहे थे। विदाई का रिहर्सल चल रहा है इसमें, फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, मैसेज करती है रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि तो चलिए कुछ ही समय बचे हुए कार्यक्रम समाप्त होने में, अब तो कार्यक्रम समाप्त ही होगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो आगे गाने की फरमाइश हम चलिए प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सोल नेपाल बॉर्डर से। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है किशोर जी और लता जी के स्वर हैं। सॉन्ग है रंग भरे मौसम में रंग, डेडिकेट मैडम जी को शफाक रोशनी, हिना हाजरा, शाहजहाँ, गुड़िया, आशा, निशा, शबा, ब्यूटी, खुशी, सबीता, शबीना, दिलीप भाई और सोनू बाबू आपको भी। तो चलिए हम तो सुनते ही हैं, तो आपके गाने क्यों नहीं सुनेंगे, आपके गाने भी, सबके गाने सुनते हैं तो आपके भी गाने सुनेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि वेरी सुपर सॉन्ग, अनूप यादव जी मैसेज करते हैं बिल्कुल। और गाने प्ले करते हैं, सुनते हैं फरमाइशी सॉन्ग अगली, नहीं तो समय निकल जाएंगे।

0: डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

हेलो हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आजी सोनी। आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ और 12:04 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। तो अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए, हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। या फिर उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 72-77-16-65-96 पे। और कॉल सिर्फ वही लोग करें जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ सकते हैं या फिर इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के शो की आगाज़ करेंगे खूबसूरत से गाने के साथ। जब तक आपकी मैसेज आती है तब तक इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे और सुनते रहिए आप सभी अपना कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस को।

वेलकम बैक रेडियो रंजीम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 12:10 हो चुके हैं शुरू घड़ी में, और यहाँ कॉल भी पहुँचना शुरू हो चुका है और काफ़ी सारे मैसेज भी पहुँच चुके हैं। तो चलिए बढ़ेंगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्कार, रिशाद मास्टर जी हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और मैसेज है, अनिश यादव जी जुड़ चुके हैं दुमरा यदुवंशी टोला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती हैं, हर शाम रेडियो रिमझिम की मधुर आवाज़ से सजा जाती हैं। सोनी मैम की प्यारी मुस्कान और मीठी बातें दिल के हर कोने में खुशियों को फूल खिल जाते हैं और मैसेज खिलाते हैं। अनिश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सरफरोज अली जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि और एक सप्ताह के बाद शो में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और गाना सुनना है कुमार सानू की आवाज़ में, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। साथिया तेरे बिन, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है। सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और संजय यादव जी हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। एक और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है, नाम पता मेंशन करिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और एक और यहाँ मैसेज, और यहाँ अर्शाद जी जुड़े हुए हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, वो मुझे चाहे या मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, ये कुछ कम है कि बसा है मेरी सांसों में, सामने हो मेरी आंखों के ज़रूरी तो नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि शो का आगाज बहुत ही अच्छा हुआ है, और मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो मैं आप सभी से बोलूंगी कि अगर आप लोग बोल के वॉइस टाइपिंग कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। और ये बात सभी से है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, सोनी मैम नमस्कार, राधे राधे, रेडियो रिमझिम से हम भी जुड़ गए हैं। सुनील कुशवाहा जी हैं मैहर एमपी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि खुशियों की बहार लेकर आए हैं आप, हर दिल में प्यार जगाए हैं आप, दिल से है आपका हार्दिक स्वागत, और महफिल को यादगार बनाए हैं आप। और मैसेज के हाथ है दीपक जी जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। बनी रही हमारे साथ में, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल रेडियो रिमझिम फैमिली। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि इम्तियाज अहमद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार पांडे जी हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं और मेरा भी आज फरमाइश है, जी हाँ बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ बसंती देवी जी जुड़ चुकी हैं लामे चौवरिया टोला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और लिख रहे हैं कि रह ना पाओगे भुला कर, देख लो यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो, हर जगह होगी कमी महसूस मेरी, तुम अपनी महफिल को कितना भी सजा कर देख लो, हर हर महादेव। सोनी जी और हमारे तरफ से रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को हर हर महादेव बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। और जो अगली फरमाइश हमारे पास आज की पहुंची हुई है, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका सरफरोज अली जी जो कि जुड़े हुए हैं गोपालगंज से, और गाना सुनना है कुमार सानू की आवाज़ में साथिया तेरे बिन। काफ़ी खूबसूरत गाना, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम अख्तरी, और गाना सुनना है मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अख्तरी जी, और गाने की फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, और सुनाना है लिखना है आपको और हम सफर अहमद अली जी को और बाकी ऑल लिसनर को, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में। और आगे यहाँ मनीष रजाक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, पाजी है यूपी चौवन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हाजिरी बिल्कुल लग चुकी है आपका, इंजॉय करिए गाने को।

और धनेश जी आप बताने की कष्ट करिएगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना भी प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। और हम भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नाम मेंशन करिए और नाम क्या है आपका। कृष्णा शर्मा जी हैं मुजफ्फरपुर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए तो हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले हैं सरफरोज अली जी, जो कि हैं गोपालगंज से, और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मोबाइल तो सबके पास है लेकिन रेडियो पर गाना सुनने का मज़ा ही कुछ और है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है कि मैम मेरा भी गाना है सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और मोतिहारी जिला से संतोष राम जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका भी वॉइस मैसेज है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ और भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और अहमद अली जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका भी बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और इंस्टाग्राम पे भी यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ कॉल पहुँच चुका है, तो चलिए बात करते हैं कौन है कहाँ से, जानते हैं फरमाइश को। हेलो
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद वकास है, स्कॉटलैंड से।
0: जी कैसे हैं मोहम्मद जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ।
0: चलिए अच्छी बात है,
1: बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम मस्त। तो आज
1: भगवान आपको खुश रखे।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज मेरी गाना की फरमाइश है, कितने कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुम द मूवी कसूर।
0: जी
1: तो वो गाना लगा लिए मेरे लिए।
0: जी बिल्कुल लगा रहे हैं। और आपके उधर का मौसम कैसा है बताइए?
1: स्कॉटलैंड में अच्छा मौसम है, ड्राई मौसम है।
0: अच्छा चलिए बढ़िया है।
1: इंडिया में मौसम कैसा है?
0: आज सुबह बारिश हुई थी लेकिन अभी मौसम बढ़िया है, साफ सुथरा है और ठंडा है।
1: ठीक है
0: जी, गाना प्ले कर दिया आपका,
1: थैंक यू। नमस्ते
0: जी, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किए। नमस्ते, एंजॉय करिएगा।

और यहाँ विश्वास जी का मैसेज है, लिखने कितना बेचैन हो के तुमसे मिला सुपर सॉन्ग सोनी जी। जी हाँ बिल्कुल, संजय यादव जी है दुबई से लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम एक। और यहाँ मैसेज नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आज अमन जी हैं लिख रहे हैं कि बहुत ही, और हाँ चलिए अच्छा लगा आपको भी गाना पसंद है। एक और यहाँ मैसेज है कि लिख रहे हैं गाने का बोल है, बिल्कुल गाने की फरमाइश है आपका, प्ले करेंगे। और मैं यार एमपी से सुनील कुशवाहा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको बता दूं कि अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है, आपका एक सप्ताह होगा गुरुवार को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। थोड़ा सब्र रखिए, एक ही साथ तो सबकी गाने की फरमाइश नहीं प्ले हो सकती है, तो बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, और एक एक करके हम सबकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल इंजॉय करिए इस खूबसूरत।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861164।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9855 2791 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर रेडियो रमसिम के इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए, या फिर कॉल करिए 7277165 पे। और मैं हर रोज़ कहती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि व्हाट्सएप कॉल कोई ना करिए, बिल्कुल भी ना करिए। और आप लोग बार बार व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो ऐसा करिएगा तो फिर मैं गाना नहीं प्ले कर पाऊँगी। जो भी व्हाट्सएप कॉल करेंगे हम उनका गाना नहीं प्ले करेंगे, और आज तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप कॉल नहीं करिए। और यहाँ मैसेज है लिख रहे, नमस्कार जी, राकेश कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका घोड़ाघाट से। और राकेश जी आप भी कॉल नहीं करिए, आपके तरफ से भी कॉल आ रहा है, फरमाइश है, तो वेट करिए आपके गाने की फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और हाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूँ, लिंक शेयर किया हूँ, गाना प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और नौशाद मोबाइल है विक्रमगंज रोहतास से, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो जी, सोनू नाम है मेरा, और नमस्कार, मैं गाना सुनना चाहता हूँ दिल भर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और दिल भर गाना सुनना है तो आपको कौन सा गाना सुनना है, उसमें क्या दो गाना है तो आप कंफर्म करिए कि नया वाला या पुराना वाला। मैं आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ शाहुद्दीन अंसारी जी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी जी, और मैं भी जुड़ गया हूँ, शाहजहाँ है मुगल विरेचा से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और इंस्टाग्राम की तरह बढ़ेंगे तो यहाँ भी मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ, सोनू कुमार चौरसिया है और कुचायकोट जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, फिलहाल साउथ अफ्रीका से सुन रहे हैं रेडियो रिमसिम को, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और अखिया में बांटे प्यार कितना पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनना है तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, हेलो सोनी मैम, हम भी शो से जुड़ गए हैं और मुझे भी गाना सुनना है, सुना देंगे? बिल्कुल, आपका एक सप्ताह हो चुका है और बिल्कुल प्ले करेंगे आपका गाना जो है, और फरमाइश पहुँच चुका है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से भी काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश, और बिना देरी के आज की अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और उससे पहले यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है गाना सुन के, मेरा भी कॉल रिसीव कीजिए। अच्छा, बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ हम अगली फरमाइश जो है प्ले करेंगे हमारे पास जो है। और यहाँ संदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संदीप जी। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है आरजे अमन जी का, और इनको सुनना है गाना किस्मत की लिखी कोई बात हो तुम। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमसिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं आरजे अमन जी की फरमाइश है और लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच और यहाँ मैसेज है मिस्टर कुमार जी जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका और लिख रहे हैं कि हालचाल बा बिल्कुल बढ़िया रहो बताएं कैसन बानी। और आगे उमा शंकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं प्रणाम कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आप बताइए आप कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम जी हाँ बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे और गाना सुनना है मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, बिल्कुल फरमाइश है प्ले करेंगे संदीप जी थोड़ा वेट करिए। और आपकी श्रीमती जी कैसी हैं जरूर बताइएगा। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हम जिसकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। और मैसेज साथ जुड़े हुए हैं दुर्गेश जी आजमगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं सोनी जी नमस्कार कैसी हैं आप, मैं 2 दिन से शो में नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी गांव आना पड़ा है, मैं फिर से आज देहरादून जा रहा हूँ और डेली शो में जुड़ूंगा मैं भी रोहित देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी हम अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास है

और अगली फरमाइश है हमारे पास अरशाद जी की, जो कि है लुधियाना पंजाब से, और गाना सुनना है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो एंजॉय करिए अपने गाने को मोहरा फिल्म से, ये काफी बढ़िया खूबसूरत गाना रेडियो रमजम 90.4 FM पर।

और यहाँ अरसाद जी हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि ये फरमाइश हमारे ठेकेदार जी ने करवाया है और इंद्रजीत जी ने, उनको धन्यवाद बोलिएगा काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और यहाँ मैसेज है, सच में तो चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त। आज अमन जी हैं, डॉक्टर अमोद कुशवाहा जुड़ चुके हैं, सुबोध साहू जी हैं बेगूसराय से, और यहाँ एक और मैसेज है, ये भी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मण कुमार जुड़ चुके हैं सासा मुसा से, काफ़ी दिनों बाद, कैसे हैं बताइएगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बेस्ट है, मस्त मैडम जी, और ये सो आपको आप करें मैम जी 12 से 4 बजे तक। जी हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ आज भी 12 से 4 बजे तक। दुर्गेश जी आजमगढ़ से, यहाँ मुकेश यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बिल्कुल नहीं भूले हैं आपको भी।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रूम 90.4 FM में। और यहाँ मैसेज की तरफ रुक करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज है, लिख रहे हैं, क्या बात है मैम, आज बहुत ही अच्छा अच्छा गाना बज रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही गाने की फरमाइश करते रहिए तो सो ऐसे ही शानदार चलता रहेगा। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि MD फारूक अंसारी जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं मैं भी जुड़ चुका हूँ और शामिल कीजिए मेरे मैसेज को भी, भागलपुर बिहार से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बिल्कुल मैसेज शामिल कर लिए हैं। और मैसेज है, लिख रहे हैं कि तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त मस्त गाना है, पर गर्दा उड़ा दिया सोनी मैम आपने और टाइपिंग गलत हो गया था। कोई बात नहीं, इसलिए बोलते हैं कि एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ताकि पढ़ते टाइम थोड़ा सा दिक्कत होता है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है। और उसी में कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सोनी मैम आपको पढ़ने नहीं आता है, अब बताइए मैं क्या करूं, जैसे लिख के आएगा आदमी पढ़ेगा फिर पता चलता है ना कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये नहीं ये होना चाहिए। और यहाँ मैसेज है, लक्ष्मण जी है, लिख रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, कैसी हो मैम आप? तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ। और यहाँ दिनेश कुमार जी जुड़ चुके हैं दोहा कतर से, नमस्ते, और लिख रहे हैं कि आपको सहयोगी, ओहो आपके सहयोगी जी को भी और सभी श्रोताओं को भी बिल्कुल नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और आप बताइए कैसे हैं आप, तबीयत पानी सब बढ़िया है ना? एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि रेडियो फैन पंकज भाई को नमस्कार बोल दीजिएगा मेरे तरफ से, बिल्कुल बोल दिए हैं लेकिन आज वो शो में आए नहीं है। रितेश कुमार जी है फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि

अंसारी जी हैं फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, ऋषिकेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। मैसेज तो काफ़ी सारे हैं, शामिल करते जाएंगे तो समय शामिल करने में ही बीत जाएगा। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी जी मैं भी जुड़ गया हूँ, जय श्री राम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और जो भी एक भाई ने फरमाइश की है, मेरी ज़िंदगी की मालिक मेरे दिल पर हाथ रख दे, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश है। जी हाँ बिल्कुल। और अम्मेट मॉडर्न टेलर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नाम के साथ जुड़िए, थोड़ा नाम मेंशन कर दीजिए कि आप कौन हैं। वैसे तो कोई मैंडेटरी नहीं है, अम्बिया मॉडर्न टेलर ही काफ़ी है आपके लिए। और अगली फरमाइश हम बिना देरी के प्ले करेंगे, इंस्टाग्राम पे पहुंचा हुआ है, उसके बाद हम कॉल की तरफ बढ़ेंगे। और इंस्टाग्राम पे गाने की फरमाइश है सजनी रे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि और मैम जुड़ते हैं हर शो में, पर आप मुझे भूल गई हैं। मैं किसी को नहीं भूलती हूँ, मुझे सबको याद रहता है, और आप भी याद है। और फरमाइश प्ले कर दिया है महताब जी, आप इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और सच में दिल खुश हो गया गाने की फरमाइश सुन के आपकी, और ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने की आप लोग भी फरमाइश करिए। फिलहाल इंजॉय करिए अपने गाने को।

और यहाँ मुस्तफ़ा जी जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीके फास्ट फूड है सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और विष्णु कुमार जी हैं, और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश जो पहुंची थी हमारे पास मेहताब सिद्दीकी जी की दुबई से, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और एक और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, प्रिंस चौहान जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि सिस्टर गाना सुनना है, और शाम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। जी हाँ बिल्कुल, फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। आपकी बारी आते हैं, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि जी मैम आपने पूछा बनाए इस पल को खास, बाकी सब फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और बढ़िया हूँ इसलिए आप सभी के बीच हाजिर हूँ, इसी से पता चल सकता है कि मैं मस्त हूँ एकदम। और आगे यहाँ मैसेज है, लक्ष्मण सोनी जी है, जी आप, मैं बिल्कुल आपके मैसेज को शामिल कर ली हूँ, और आपका गाना है वो भी प्ले करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, रजिया सुल्तान मूवी का जलता है बदन, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और

0: मुकेश जी जुड़े हुए यूपी से, बनी रही हमारे साथ में। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बेस्ट मस्त मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश जी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि रेडियो में एक बात है, सुनते हैं तो अपने सब गम भूल जाते हैं। जी हाँ, ये बात तो है, और ये बात मैं एक्सपीरियंस करके, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है कि रेडियो सुनने के बाद आदमी जो भी परेशानी होती है वो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आदमी भूल जाता है। और यहाँ मैसेज है, आरजू फिल्म के गाना सुनना है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। ऋषिकेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ओहो फुरकान अंसारी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है फुरकान जी जो कि जुड़े हुए हैं भागलपुर बिहार से, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जोरदार गाना सुनवाइए मैम, सुबह का स्वाद अच्छा हो गया। और चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है कि सुबह का स्वाद अच्छा हो गया। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, जैसे कि हम बात किए थे कि अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से, तो सुनते हैं कौन है कहाँ से।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: गाना सुन रहा जी।
0: जी गाना सुनवाएंगे, अपना परिचय दे दीजिए।
1: परमात्मा कुमार बोल रहे हैं
0: जी। परमात्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गोपालगंज हमारा घर पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, तो कौन सा गाना सुनवा दे आपको?
1: हाजीपुर में हूँ।
0: ओह तो वहाँ का मौसम कैसा है?
1: बहुत गर्मी है जी यहाँ पर।
0: अच्छा,
1: आपका उधर कैसा है मौसम?
0: अभी तो 3-4 दिन से बारिश हो रही है तो मौसम बढ़िया है, ठंडा है।
1: इधर भी तो बारिश है जी, इधर बहुत गर्मी पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है यहाँ पर।
0: नहीं, इधर तो रात में पूरी रात हो रही है और सुबह 6 बजे के बाद खुल जा रहा है बारिश।
1: नहीं नहीं, इधर तो रात नहीं, फिर कभी नहीं होता है, इधर तो धूप ही निकलता है खाली, गर्मी इतना है, 40-42 डिग्री है।
0: आने दीजिए बारिश को, बोलेंगे कि अब हो गया इधर, अब आपके तरफ चली जाए। तो गाना कौन सा सुनवा दे बता दीजिए।
1: गाना सुन रहे हमको जो बबीता किला का गाना ये आजकल फॉलो करते हैं, सुन रहे हैं ये गाना चाहिए। यही गाना सुनवा दीजिए।
0: ओके, प्ले कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो में कॉल किया।

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्कार, पप्पू ठाकुर बगही बाजार से और कटिया गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे लिखते हैं कि सोनी जी ये बात नहीं बोलना चाहिए मैम, लगता है कि आप जेंजी वाले हैं। और कौन सी बात पे ये आप बोल रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए? और सही बोला ना, जेंजी का मतलब होता है 1997 से 2012। जी नहीं, 1997 से नहीं होता है, और 2006 के बाद से जो है अभी तक 6 से 12 के बीच में जो है उनको जेंजी बोला जाता है। और आप किस बात पे बोले हैं ये जरूर बताइएगा। फिलहाल शो में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।

और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे और यहाँ मैसेज है पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सॉन्ग सुनना है, कब तक याद करूँ मैं तुझको, कब तक अश्क बहाऊँ। तो जब तक हो सकता है तब तक फिलहाल ये गाने की फरमाइश करने वाले हैं। दुर्गेश जी आजमगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आजकल फोनों कल का गीत भी हो जाए, मेरे दिल जीत लिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि आपका फेवरेट सॉन्ग है। धनेश जी है दिल्ली से और यहाँ इस गाने को मुस्तफ़ा जी भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। गुलाम हुसैन जुड़ चुके हैं वर्ड्स मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

और यहाँ सलमान अली जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश है मेरे पास जो, सोना कितना सोना है। तो चलिए इंजॉय करिए अपने गाने को, और गाने की फरमाइश पहुंची है नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से, प्ले कर दिया आपका गाना, इंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पहले मैम छोटा था तब मैं पापा के साथ रेडियो रिमझिम को सुनता था। जब 2014 में सुनते थे लेकिन 26 में रेडियो रिमझिम का एप्लीकेशन मिला, तब से ऑनलाइन रेडियो सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, दुबई में काम के साथ साथ रेडियो सुनने का टाइम का पता नहीं चलता है। थैंक यू सो मच ऐप के माध्यम से रेडियो सुनाने के लिए। और मेरे ख्याल से आपको काफ़ी देर पता चला है कि रेडियो रिमझिम का एप्लीकेशन भी है, क्योंकि काफ़ी पहले ही रेडियो रिमझिम का एप्लीकेशन बन चुका था और आप सुनते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेहताब सिद्दीकी जी हैं दुबई से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97,714,86,164।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और देखते ही देखते एक घंटा बीत गया और पता भी नहीं चला यार। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, राधे राधे सभी को, बोल दीजिएगा बिल्कुल। और लिख रहे हैं कि जलते हैं बदन बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, जो भाई ने फरमाइश किया उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सुजीत कुमार जी हैं मिर्जापुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम लोग के गाना सुनने के बाद किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो और समाचार के पहले बजा दीजिए बिल्कुल। और सन्यासी रंजन बाबा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मज़ा आ गया सॉन्ग सुन के, सोना कितना सोना है। मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से। एक और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है दुर्गेश जी आजमगढ़ से, बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, और कैफ मोबाइल गोंडा यूपी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम गाने के साथ में ओहो, लिख रहे हैं कि गाने के साथ में बकैती करती हो तो गाने का मजा कीड़ा कर देती है। ओहो ठीक है बिल्कुल समझ गया आपकी बातों को, और गाने के बीच में अब बकैती कम करेंगे। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं भी जुड़ गया हूँ शो से, और जब बबीता सागर का गाना चल रहा था तब से थोड़ा लेट हो गया हूँ और कुछ काम के वजह से, कोई बात नहीं काम भी ज़रूरी है। और शो से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी हैं छोटपुर से। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि कैसे हैं मैम जी नमस्कार, और मुन्ना जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं, और आप तो गायब भी हो जाते हैं कभी कभी, दर्शन दे दिया करिए। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग विद योर वॉइस, और दिनेश कुमार जी है दोहा कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है, फिल्म आपके हैं कौन से, और गाने का बोल है जूते दो पैसा लो। बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करेंगे। और फिलहाल किससे जूता मांग रहे हैं बताइएगा। उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, और आगे यहाँ बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ कोल्हापुर महाराष्ट्र से मैसेज पहुँचा हुआ है, धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ कैफ मोबाइल की तरफ से फरमाइश बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, वेट करिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैं भी लाइव सुन रहा हूँ रेडियो रिमझिम को, जी हाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा, और आज के लिए सो सॉरी। कोई बात नहीं है, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पप्पू ठाकुर जी हैं, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं गाने का, और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है सिल्फी राज के बाद में, बर्बादी हुई बाकी शादी हुई। और सलमान अली जी हैं, तो इंजॉय करिए अपने गाने को। बिक्रमपुर विप्र बैकुंठपुर गोपालगंज से है, ओहो इंजॉय करिए, गाना प्ले कर दिया आपका रेडियो रिमझिम पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं सलमान अजीज जी की फरमाइश है और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं थैंक यू गाना सुनाने के लिए और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बर्बादी हुई आज के ट्रेंडिंग सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा जी हाँ बिल्कुल धनेश जी हैं दिल्ली से एक और यहाँ मैसेज है और दांत फाड़ रहे हैं लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग और शाहजहाँ जी है मुगल विरैचा से बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है और आपका तो एक सप्ताह हो ही चुका है और पूरे सप्ताह के बाद ही आप जुड़ती हैं एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ चलिए बढ़िया बात है अच्छा का ही काम है एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बर्बादी हुई नाइस सॉन्ग और बहुत खूब मैडम जी और शिव सागर दीवाना जी है जम्मू कश्मीर से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बर्बादी हुई शादी हुई तोरे से और जहाँ बारिश दुनिया में सुकून से जीना किसी के लंबे से काम नहीं है जी हाँ बिल्कुल और मैसेज के साथ है नाम है इनका मुकेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंजॉय करिए आप सभी भी और गाना काफ़ी ऐसे तैसे आ रहा है कि क्या बोलूँ मैं और यहाँ ऐसा मैसेज है लिख रहे हैं कि कुल मिला के लैकन के पसावल जाता मस्त ट्रेंडिंग सॉन्ग और जी हाँ एक जवाब गाना भी आयल बा सुनिए थोड़ा सा फिलहाल रोवा भी सुन के बताएं कि जवाब वाला और ये मैसेज करे वाला बानी अनिल जी छोटपुर से एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हमारा भी फरमाइश है एक घंटा हो चुका है जी हाँ बिल्कुल और एक घंटे में ही इतने गाने की फरमाइश आ जाती है कि क्या ही बोलूं और प्ले करते करते किसी का तो एक घंटा हो ही जाएगा फिलहाल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे थोड़ा और वेट करिए और यहाँ अगली फरमाइश जो है मेरे पास पहुँचा हुआ है हैदराबाद से और गाने की फरमाइश करने वाले हैं संदीप कुमार जी तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्ले कर दिए आपके गाने को मेरे ज़िंदगी की मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दें

और यहाँ उमा शंकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और साथ में इनके हैं अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह। एंजॉय करिए आप सभी और फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लेकिन पहले जो आता है वही मस्त होता है, बाकी सब कॉपी पेस्ट होता है। जी हाँ बिल्कुल, और एंजॉय करिए गाने को।

0: 93.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं जो कि गाने की फरमाइश है हैदराबाद से संदीप कुमार जी की और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे और अगली गाने की फरमाइश है जूते ले लो पैसे दे दो जूते दे दो पैसे ले लो। तो चलिए प्ले कर रहे हैं आपका गाना और गाने की फरमाइश करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रंजन 90.4 FM पर।
1: हरे

और यहाँ अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से लेने वाले हैं, तो जैसे ही गाना खत्म करते हैं आप लोग कॉल करना शुरू करिए, क्योंकि अभी आप लोग कॉल करिएगा तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, और जब कॉल करने की बारी हो रही है आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो गाना खत्म होते ही कॉल करिए। और यहाँ उमा शंकर जी की तरफ से मैसेज भी पहुँच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और गाने के साथ में

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं जूते दे दो पैसे ले लो और गाने की फरमाइश के साथ थे मशंकर जी दिल्ली से। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम भैया का गाना जूता कौन ले लिया है। ये तो आपके भैया जानते हैं और आप पूछ के बताइए कि आपके भैया का जूता कौन ले लिया है। और वो तो मुझे नहीं बताएंगे लेकिन आपके भैया है शायद आपको बता दें। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: तब सोने जी बहुत बढ़िया शो चलता है।
0: चलिए अच्छा बात बा।
1: बहुत कड़क धूप होगल बा।
0: धूप तो इन्हीं निकलल बाटे लेकिन थोड़ा कम बाटे, गर्मसल बाने।
1: हाँ हाँ गर्मी भी बहुत बा लेकिन लाइन बा। चलिए तो एगो गाना सुना दे हम तो के हमर फरमाइश। हेलो ब्रदर मूवी के सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे।
0: अच्छा
1: तेरी चुनरिया दिल ले गई। और सुनाए वाला सुनने वाला पहले रघुआ के फिर भारती जी के फिर सारे रेडियो रंजन जितना सुना था सबको के विक्रम के नौसादो भाई के सुनाए के बा। उनकर फरमाइश बजा दे।
0: उनकर फरमाइश तो चल गए। सुनिए ना।
1: हाँ तो हमने भी विक्रम मुनि बड़ा के बारे में।
0: अच्छा अच्छा तुम्हारे का फरमाइश तो चला देने।
1: हाँ
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे ले बनी एंजॉय करी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करनी।

और यहाँ मैसेज पहुँचा है, लिख रहे हैं कि साले जी चुड़ैले बाड़ी। अच्छा, तो बहुत पहले चुड़ैले रही, अभी तक ना दिल्ली का जरूर बताएं। और आगे यहाँ मैसेज बार लिखा था नहीं कि हमरो फरमाइश बा। जी हाँ बिल्कुल, सबके फरमाइश बा दिखा था नहीं। और इंजॉय करिए गाने को।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434068 पे।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
9: वेलकम बैक आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और यहाँ देर बज चुका है। और अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि गाने बजाने का कष्ट करिए, धन्यवाद। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। सुबोध साहू जी है बेगूसराय बिहार से, थोड़ा वेट करिए। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि साली जी थी, साली बहुत पहले चुराई थी 2013 में, और अभी तक मुझे लग रहा है आपका जूता मिला नहीं है। उससे अच्छा इंतजार करने से अच्छा होता है कि अभी तक आप खरीद लिए होते। और यहाँ कई सारे मैसेज है लिख रहे हैं कि आज मेरा भी गाने की फरमाइश है। जी हाँ बिल्कुल, और शाहबुद्दीन अंसारी जी हैं फरीदाबाद से, आपकी भी फरमाइश है, और आपकी फरमाइश जो है वो शुक्रवार को प्ले होगी, क्योंकि अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है। जी हाँ बिल्कुल, और ब्रेक के बाद हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है, उससे पहले यहाँ एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे, एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे, फिर समय आया लोग प्यार में अंधे हो जाते थे, अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। अरे मेरे बाबू गुच्छा हो गया। तो ये बताइए कि वो अंगूर का गुच्छा हुआ या फिर खजूर का। मुन्ना जी है मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम ऐसे जल्दी करेंगे सोनी जी की आवाज़ में सुपर सॉन्ग और गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इशाद जी है धनाव से और आगे यहाँ मैसेज और गाने की फरमाइश जो है सन्यासी रंजन बाबा जी हैं, सुनना है गाना किसी से तुम प्यार करो। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दिए, एंजॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिंगम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी गाना सुनाने गाना बजावे खातिर। ओके और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि ये आज नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आपका भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे जो हमारे पास है। गाने की फरमाइश, तुम्हारी नज़रों में हमने देखा गजब सी चाहत, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले कर रहे हैं और फरमाइश करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से जो कि जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं सोनू कुमार जी जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश तुम्हारी नज़रों में हमने देखा। और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं और अगली फरमाइश से बरसात के दिन आए और गाने की फरमाइश करने वाले हैं लक्ष्मण सोनी जी। सासा मुसा से इंजॉय करिए अपने गाने को।

और यहाँ मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना सुनाने के लिए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी मिलते हैं एक घंटा बाद। जी हाँ बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाँ तो ये सोनी जी का टैलेंट है, जूता का पता लगा लिया। पता नहीं लगाएं और पूछे आपके भैया ने ही बताया। और यहाँ रंजन कुमार जी जुड़ चुके हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और इन्जॉय करिए इस खूबसूरत से गाने को जो कि सासा मुसा से पहुंची है लक्ष्मण सोनी जी की तरफ से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160002।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065775।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज।

बहुत स्वागत है आपका, भी लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है सुनवा दीजिए। और गाना कौन सा है ज़रूर बताइएगा, फिर हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज है लिख रहे हैं कि अपनी चाय सुकून से पियो, अपना पसंद का कपड़ा पहनो, अगर कोई कहे कि कौवा सफ़ेद है तो उसका कौवा सफ़ेद रहने दो, अगर कोई कहे कि सिर चाय पीता है तो कहो कि आज सुबह मैंने उसी के साथ चाय पी है। और हर किसी को सफाई मत दो, क्योंकि हर आदमी स्पष्टीकरण के काबिल नहीं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल। और मैसेज के साथ है अनिल जी छोटपुर से, और लोगों का क्या है, उन्हें तो हमेशा नया मसाला चाहिए कुछ ना कुछ कहने के लिए, और जैसे नया मसाला मिलेगा पुराने बात को भूल जाएंगे और नई बात करने लगेंगे। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी जलता है बदन सॉन्ग फरमाइश करने वाले भाई कहाँ गए, उन्हें मैं भी ढूंढ रही हूँ और कहाँ है। और जिनकी भी गाने की फरमाइश थी जलता है बदन, एक बार मैसेज करिए और मैं आपको ढूंढ लूँ, मिल नहीं रहे आप। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैडम हमको भी एक सॉन्ग सुनने के बाटे, तुम मुझसे यूँ भुला ना पाओगे, है मैं सुबह ही ये गाना सोच रही थी। और क्या बात है भाई, मैं हर रोज़ मैं देख रही हूँ कि कोई गाना सोच के आती हूँ और उस गाने की फरमाइश आ जाती है। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाने की फरमाइश करने के लिए। और पप्पू ठाकुर जी हैं बगही बाज़ार से, बने रहिए हमारे साथ में और थोड़ा वेट करिए, गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा गाना है और कई दिनों से प्ले नहीं हो रहा है। और रामविलास जी जुड़े हुए हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कई दिनों से कैसे प्ले नहीं हो रहा है और आपकी गाने की फरमाइश, ओहो कोई नहीं, कई दिनों से नहीं हो रहा है, आज आपके गाने की फरमाइश जो है बिल्कुल प्ले होगा, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा भी गाने की फरमाइश है। जी हाँ बिल्कुल, आप सबकी गाने की फरमाइश है। और बिना देरी हम अगला गाना प्ले करेंगे, हमारे पास अगली गाने की फरमाइश है, कब तक याद करूँ मैं उसको कब तक अश्क बहाऊँ। तो इन्जॉय करिए दुर्गेश जी अपने गाने की फरमाइश को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, दुर्गेश जी की फरमाइश थी आज हम गढ़ से, और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका कृष्णा शर्मा जी, जो कि जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर से, और गाना सुनना है इनको जिंदगी में आवेला जवानी एक बार। इंजॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे गाना आपका प्ले कर दिए हैं।

और यहाँ मैसेज पहुँच गया है कृष्णा जी की तरफ से, लिख रहे हैं थैंक यू मैम सॉन्ग चलाने के लिए। दुर्गेश जी की तरफ से भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना नहीं गुनगुनाई है क्या मैडम जी। या भैया मेरी आवाज़ फीमेल वाली है और मेल गाने के साथ मैं मेल आवाज़ के साथ कैसे गुनगुनाऊँ इसीलिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी गाने की फरमाइश के लिए। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है कि मेरा गाना है कितना बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिलहाल इसी गाने को एंजॉय करिए और इसके बाद हम अगली गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। हमारे पास मैसेज है, नाम है इनका राम बिलास जी जो कि जुड़े हुए हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से। तो नेक्स्ट गाना आपकी है, एंजॉय करिए।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ कई सारे मैसेज आते हैं, भैया आप लोगों को मेरा फोटो क्यों दिखना है? आवाज़ सुनिए ना, आवाज़ से ही जानिए और मेरे नाम से जानिए, फोटो क्यों देखना है कि आप लोग कैसे, मतलब मैं कैसे दिखती हूँ नहीं दिखती हूँ, उससे क्या ही करना है आप लोगों को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे सुनील जी नमस्कार, और पौन साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, खगड़िया बिहार से जुड़े हुए हैं और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है और आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। जी हाँ, और यहाँ राम कुमार पांडे जी हैं, जी हाँ बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है और मैं तो ध्यान से मेरे उत्तर ही गया था कि आपकी भी फरमाइश है और बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सही बात है, कोई मतलब नहीं होना नहीं है। जी जी हाँ, और मैं देखती हूँ कि हर रोज कोई ना कोई मैसेज करते हैं कि मैडम जी अपना फ़ोटो भेजिए या फिर ये आप हैं या फिर कुछ भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और गाना सुनना है तो बिल्कुल। और धर्मेंद्र कुमार जी हैं अयोध्या कोल्हापुर महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े बने रहिए हमारे साथ में। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जिंदगी में सब कुछ एक ही बार होता है, समय के साथ आता है। जी हाँ बिल्कुल उमाशंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पागल कहीं का गाना है रफ़ी जी की आवाज़ में। जी हाँ बिल्कुल, और आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करेंगे, देखेंगे कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में। जी नमस्ते, कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। नेहा बात कर रही हैं बोरे से।
7: जी मैडम जी।
10: जी कहाँ थी जी इतने दिनों से?
7: ओ तो लगाते वो तो आपसे खाते नहीं
10: है। ओ ये मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
7: तेरे तेरे दिल चुरा चुराएंगे तुझे अपना बनाएंगे।
10: चोरी चोरी चुराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चुरा लीजिए, हम पूरा मौका दे रहे हैं आपको। नहीं मैं मना नहीं कर रही हूँ, जो जैसे चोरी चोरी कब चुराया जाता है, जब चुराने कोई ना दे, मैं पूरा मौका दे रही हूँ आपको। ठीक है, गाना प्ले कर दिए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की। एंजॉय करिए गाने को।

और यहाँ इंस्टाग्राम पे गोविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे कि मुझे भी गाना सुनना है। मैडम जी, मेरा गाना दोपहर से ऊपर हो गया, नहीं बजा है। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाना की फरमाइश नेहा जी की है भोरे से। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका गाने की फरमाइश के लिए। और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। मैसेज से यहाँ कई सारे हैं, रंजीत कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैसेज को रोक के बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश मेरे पास है जो कि बुलंदपुर उत्तर प्रदेश से, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं राम बिलास जी। इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले हैं रामविलास जी बलमपुर उत्तर प्रदेश से और लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और बिना देरी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्ते, क्या हाल बा। हाँ, हाल बिल्कुल बढ़िया बा। लिख रहे हैं कि सोनी मैम, आज हमके देखने हैं कि आपके प्रोग्राम में होके वाला बा, सब कोई के मिठाई खिला दें। और आज हम दुबई से घर आए, एक चॉकलेट। अमरजीत शुक्ला जी वानी, बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में। और चलिए खुशी के बाद बाकी आज घरे आए। और बिना देरी अगला फरमाइश हम प्ले करें। अगला फरमाइश जो हमारा पास बाटे पप्पू कुमार जी बानी, पप्पू ठाकुर बगही बाजार से, तो एंजॉय करिए अपन गाना के, तुम उसे यूँ भुला ना पाओगे।

और इस गाने के साथ बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार के तरफ, और दोपहर समाचार के बाद से फिर आप सभी से मुलाकात होगी, और जिनकी भी फरमाइश से छूट गई है अभी तक प्ले नहीं हुआ है, दोपहर समाचार के बाद आप लोग एक बार फिर से मैसेज करिएगा कि हमारा गाना बाकी है और हम प्ले करने की पूरी कोशिश करेंगे, और मिलते हैं आप सभी से दोपहर समाचार के बाद। इंजॉय करिए इस खूबसूरत से गाने को।

0: की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे हुर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक खतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत खतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी है। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
4: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
5: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण। कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070 32042 पे।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
16: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
17: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
18: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
19: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
18: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
20: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
21: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 9939966999।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और 2:47 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर रेडियो रमजिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए।

अरे हाँ, मैसेज है, लिख रहे हैं कि सर झुकाने की आदत नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं, हम खो गए तो पछताओगे बहुत क्योंकि हमारी लौट के आने की आदत नहीं। जी हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी बढ़िया आदत है। और मैसेज के साथ हैं शाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज हैं हमारे पास और फरमाइश भी है, तो हम यहाँ अगली फरमाइश जो प्ले करेंगे, हमारे पास पहुँचा हुआ है जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, राम कुमार पांडे जी हैं लंदन से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेघनाथ जी हैं, ओम प्रकाश घर के हेल्पर से जुड़े हुए हैं गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। दिनेश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं मैं भी जुड़ गया फिर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी एक बार फिर से।

आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे राम कुमार पांडे जी की फरमाइश है लंदन से, और मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाना सुनाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है और भी कई सारे, और भी ना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगला फरमाइश हमारे पास है सुबोध साहू जी की, बेगूसराय बिहार से जुड़े हुए और गाना सुनना है। तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया, चढ़ गया ऊपर अटरिया पर लोटन कबूतर। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ सुनील कुशवाहा जी हैं, मैयर एमपी से लिख रहे हैं कि अच्छा गाना चल रहा है। जी हाँ, और सुबह साहू जी गाना सुन लिए हैं। बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है मुन्ना जी का, मुंबई से हम जुदा हो गए। इंजॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं। और यहाँ एक मैसेज है, गोविंद कुमार जी हैं, गाना सुनना है। तो गोविंद जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपके पास, तो आप गाने का नाम क्लियर करिए कि आपका गाना कौन सा है। उदित नारायण की आवाज़ में गाना सुनना है, लेकिन जो आप नाम लिखे हैं उस नाम से मुझे कोई गाना नहीं मिल रहा है। तो आप एक बार गाने का नाम कन्फर्म करिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल इंजॉय करिए मुन्ना जी की फरमाइश पर ये AI वर्जन गाना।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ अरशाद मास्टर जी फिर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। रेहा मैसेज है, लिख रहे हैं कि उनको तो वही गाना पसंद है, ये आई वाला। और आरजे अमन जी है, जी हाँ बिल्कुल, और मुझे भी ये आई गाना पसंद नहीं है, पर कोई कोई अच्छा लगता है। और यहाँ मुन्ना जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच जी मेरा गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी गाने की फरमाइश है साहिद जी। और यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, उसके बाद हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ एक और मैसेज है, शमशेर जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। अनिल कुमार जी है दरभंगा से, लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, और गाने की फरमाइश है तनी देखल करी हमारा के कम जी। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानकपुरा बठिडा पंजाब से जुड़ चुके हैं किशोर सबलनिया जी, सावित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया, बेटी अंशु के साथ, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर मैसेज कर दिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी हैं लाइन में। जी हाँ बिल्कुल, और पवन शाह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, बात करें कौन है कहाँ से। हेलो,
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
7: जी नमस्कार
6: जी, नमस्कार, विमलेश जी बात कर रहे हैं।
7: जी विमलेश कुमार शर्मा जी, नमस्ते
6: जी। जी क्या हाल चाल है?
7: ठीक है, आपने बताइए।
6: हम भी बढ़िया हैं। गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
7: गाना तो सुनेंगे आपको, तो आवाज सुन कर के ही मन करता लगता है, कॉल कब करें, कॉल कब करें, कितना कॉल करें, रिसीव नहीं कर रही है,
6: क्या करें, इतना कॉल आता है। यहाँ भी फरमाइश से मैसेज के माध्यम से भी काफी सारे रहते हैं, तो थोड़ी सी हो जाती है कंफ्यूजन कि व्हाट्सएप मैसेज ले कि कॉल ले।
7: आपको बोलने का पहले नहीं कुछ अलग है, आपका आवाज कुछ अलग है, सुनने के बाद ये मन करते ही रह जाता है, कॉल करते रहूं, करते रहूं।
6: चलिए कॉल किए तो लग गया ना,
7: तो
6: मेहनत किए तो रिसीव भी हुआ ना, समय पे कॉल नहीं आता है ना जब रिसीव करना होता है।
7: हाँ,
6: ये दिक्कत हो जाती है। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनवा दे आपको?
7: गाना हमको सुनना है प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। आप साथ में गाओगी तो और बढ़िया हो जाएगा।
6: जी जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे।
7: इसको गायकार को और फिल्म को नाम थोड़ा बता दीजिएगा।
6: अच्छा अच्छा,
7: पूरा गाना चलाइएगा।
6: बप्पी लहरी जी की आवाज में है, आशा भोसले जी हैं, प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना है, गाना प्ले कर दिया आपका।
7: गाना एक बार और सुने, आपको साथ जो गाना प्ले करते हैं, साथ में जो गा देते हैं तो बेहतर गाना हो जाता है।
6: अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, गाना प्ले, हाँ हाँ गाना प्ले कर दिए हैं जी।
7: ये गाने को हम फरमाइश किए थे आपको साथ में गाना गाने के लिए, नहीं तो इसको पहले भारती जी को साथ कॉल करके गाना सुन चुके हैं।
6: अच्छा अच्छा, चलिए गाना प्ले कर दिए, एंजॉय करिए।
7: नमस्ते
6: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल किया।

90.4 रेडियो रमजम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे थे बिमलेश जी की फरमाइश थी जिगना मठिनिया सा और गाने की फरमाइश काफ़ी खूबसूरत और बिना देरी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज भी काफ़ी सारे हैं लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत सुनकर अच्छा लगा। मुन्ना जी है मुंबई से और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गाते रहिए जी हाँ बिल्कुल और मैसेज है जी कभी कम नहीं होगा जी बिल्कुल और हाँ गणेश जी हैं लिख रहे हैं कि कल मेरा गाना नहीं बजा था तो आज प्ले करने की पूरी कोशिश है फिलहाल बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे और बरसात फिल्म से गाना सुनना है गाने की फरमाइश पहुंची है गोविंद कुमार जी हैं एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं।

और गणेश जी गाना सुनना है तो आपका गाना है कहाँ, गाने का नाम भेजिए, फिर हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। और मीनू जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत एमडी मीनू है, शाहजाद आलम जी हैं, परी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एंजॉय।

मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक बार से फिर से जुड़ गया हूँ शो से सोनी जी, और मैसेज करने वाले हैं पप्पू ठाकुर जी बगही बाजार से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि व्हाट अ माइंड ब्लोइंग चॉइस ब्रदर, रियली दिस सॉन्ग इज गुड, थैंक यू चॉइस एंड फॉर चॉइस एंड रिक्वेस्ट। और मैसेज के साथ है सोनू जी सऊदी अरब से, इंजॉय करिए गाने को।

0: और इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ ये गाना जो थी गोविंद कुमार जी की फरमाइश थी, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है शाहजहां जी है मुगल विदेचा से, और सुनना है गाना लिख रहे हैं कि वेरी खूबसूरत सॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल एकदम खूबसूरत सॉन्ग है। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हमारा गाना नहीं चलेगा क्या जी, बिल्कुल चलेगा। और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं। अगली फरमाइश है वॉइस के माध्यम से सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कौन हूँ आप सबको तो पता है, और मैं हूँ शाहजहां विलेजर से, और आज मैं भी सॉन्ग से जुड़ चुकी हूँ। सो आज मुझे भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग का बोल है, अब तेरे दिल में आ गए हम, यही सॉन्ग सुनना है। और ये सॉन्ग मैं सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ, साथ में मेरी दी है, मेरी आंटी है, और जितने सारे सुन रहे हैं उन सबको सुनाना चाहती हूँ। सो सुना दीजिएगा। ओके ओके, बाय बाय।
0: और शाहजहां जी हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दें, एंजॉय करिए, लेकिन आप आगे से जब भी वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेजिएगा तो गाना कहीं रिकॉर्डिंग कहीं शांत जगह से करके भेजिएगा, क्लियर वॉइस भेजिएगा ताकि समझ में आए। मुझे तो समझ में आ गया कि श्रोताओं को नहीं समझ में आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो वॉइस हमेशा क्लियर और साफ सुथरा भेजा करिए, सभी से ये मेरा अनुरोध है। और या जब कॉल कर रहे हैं तब कहीं शांत जगह से जाकर कॉल करिए ताकि बात और जो आवाज़ है आपकी क्लियर आए।

0: सुंदर गाना सुनकर मजा आ गया, साथ में आप गाए चार चांद लग गया। और यहाँ कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, मेरा भी गाना बजा दीजिए। हाँ बिल्कुल, और मिलते हैं आप सभी से छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ लिख रहे हैं कि ये
1: तुझे अपना कहेंगे,
0: हो एंजॉय करिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894-18744।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
0: वेलकम बैक, 90.4 FM रेडियो रिमझिम पे आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं, मेरा मानना है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की अधिकार नहीं है, अगर वो नहीं चाहता या फिर चाहती तो। और फोटो की क्या ज़रूरत है, मन में इमेजिंग कीजिए, नहीं तो देखना है तो बंजारी रोड गोपालगंज आइए, और फालतू की बात नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम के सम्मान करें, और ये जनहित में जारी है। जी हाँ बिल्कुल, और मैसेज करने वाले हैं पप्पू कुमार ठाकुर जी और बगई बाजार से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बिल्कुल सही कहा आपने। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा गाना चला दीजिए, बिल्कुल वेट कर रहे हैं आप, और गाना है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर ओम प्रकाश जी हैं और गाना प्ले कर दिया आपका।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफ़ी खूबसूरत गाना मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए और गाने की फरमाइश करने वाले हैं ओम प्रकाश जी, और इन्होंने गाना सुन लिया। अभी ना देरी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, मेरे दिल की धड़कनों को इंजॉय करिए अपने गाने को। और साहिद जी जुड़े हुए हैं, प्ले कर दिए आपका गाने का फरमाइश और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है। बिल्कुल, अब प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को।

और यहाँ रंजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं वैशाली बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि सुपर। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा बैटरी डाउन होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं। और मैसेज करने वाला नाम है इनका दिलीप राम जी, शोहरवा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी आपका खाना, जी हम बिल्कुल, मेरा खाना हो चुका है। और शाहजहाँ जी हैं मुगल बरेचा से, और यहाँ गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँच चुका है, बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, इंजॉय करें।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं साहिद जी की फरमाइश। और बिना देरी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास भोजपुरी गाने की है और फरमाइश करने वाले हैं अनिल कुमार जी दरभंगा से। तो इंजॉय करिए अपने गाने रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। तनी देखल करी हमारा के कम जी, प्ले कर दिया गाना आपका।

और यहाँ नील कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि साचो काजी, बिल्कुल साचो बाटे और एमे कोनो दूर राय नहीं के। और यहाँ एमडी महमूद अंसारी जुड़ चुके बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रोआ के भी शो में।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास और कॉल भी पहुँच रहे हैं। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी पहले आप सिंगर थे क्या, और आप आपके गुनगुनाने से लगता है कि लेकिन बहुत ही अच्छा आप गुनगुनाते हैं। और मैसेज के साथ है अनिल जी दरभंगा से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इससे पहले मैं सिंगर नहीं थी, बस ऐसे ही घर पे पड़े रहते थे। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, मैं भी जुड़ गया हूँ। और नादिर अली जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कुमान मास्टर से मेरा गाना है सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है क्योंकि यहाँ समय काफ़ी कम है और काफ़ी लेट आ पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग भाई, और मेरा भी गाना है बजा दीजिए बिल्कुल। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हम कितने नंबर पे हैं। और शुभम कुशवाहा जी हैं बंजारी से, बिल्कुल आपका भी नंबर आने वाला ही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज लिख रहे हैं, मेरा गाना आप ही का गाना अभी प्ले करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं लिख रहे हैं कि तू भुला दे मुझे इस बात का सिकवा नहीं, तूने मुझे रुलाया इस बात का कोई गिला नहीं। जिस दिन हमने तुझे भुला दिया बस इतना समझ लेना कि दुनिया में हम नहीं। तो धनेश जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के जाने से दुनिया छोड़नी पड़े, और भुलाने के लिए उसके अलावा भी कई चीज होता है। और मुझे इस बात पे एक शायरी याद आ रही है, और वो ये है कि भुला दो मुझे इस बात का सिकवा नहीं, याद रखो इसका भी कोई गिला नहीं, बस इतना समझ लेना ऐसे ए दोस्त, किसी के भूल जाने से कोई लाश नहीं बन जाता, जिंदगी चलती रहती है, प्यार ही सब कुछ नहीं। और यहाँ बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ और भी मैसेज जुड़ पहुँच रहे हैं, और अभी गाने की फरमाइश आ रही है, आप लोग माफ़ करिएगा, हम अभी जितनी भी फरमाइशें आ रही है नहीं प्ले कर पाएंगे क्योंकि समय काफ़ी कम है और समय इशारा कर रहा है समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, मोतिहारी जिला से संतोष राम जी जुड़े हुए हैं और गाना सुनना है सजना बैरी भले हमार। तो एंजॉय करें अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे प्ले कर दिए आपके गाने को।

और यहाँ मुकेश खरवाल जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। शाहुद्दीन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने के बाद हम आपकी शायरी को शामिल करते हैं।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले हैं संतोष राम जी मोतिहारी जिला से, और गाना इन्होंने सुन लिया और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्ते मैम आप कैसी हैं। और शायद सजाद आलम जी जुड़े हुए हैं बेंगलोर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज हैं, लेकिन अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ एक शायरी पहुँचा हुआ है मुकेश खरवाल जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हैं जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना ये जवाब उनका था। तो भैया अगर ये मेरे से कोई जवाब देता तो फिर मर जाएंगे तुम्हारे बिना ये सुनकर हमने मुस्कुरा दिए, हमको कहा इतनी भी जल्दी क्या है, हमने कहा इतनी भी जल्दी क्या है, पहले शादी की तारीख तो बता दीजिए। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया सॉन्ग सजना बैरी भैया हमार, अनिल जी है छोटपुर से। और अगली फरमाइश हमारे पास है पिपरा नारायण से, गणेश कुमार जी की वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: कोई प्यार ना दोबारा नील कोमल सिंह के गाने बजा दीजिए, यही सॉन्ग आप बताइए एक हफ्ता हुआ है कि नहीं बताइए।
0: और गाना आपका प्ले कर दिए हैं गणेश जी, और एक हफ्ते की बात है तो आपका एक हफ्ता हो चुका है, अभी आपकी सिस्टर जी यानी कृष्णा जी के एक सप्ताह नहीं हुआ है। और अगली फरमाइश आप एक सप्ताह बाद ही करिएगा, क्योंकि आप एक सप्ताह से पहले ही फरमाइश करके बोलने लगते हैं कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करिए, आप शो में जुड़िए, लेकिन सबका ध्यान रखिए आप भी, हम अकेले सबका ध्यान नहीं रख सकते हैं। वैसे मेरा सब पे ध्यान होता है कि किसका गाना हम कब प्ले किए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी सब्र रखिए और इन्जॉय करिए अपने गाने को।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम गाना सुन रहे हैं गणेश कुमार जी की फरमाइश है और वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है इनके तरफ से एक। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम घर नहीं जाना है, जाना है ना घर, यहीं थोड़ी रहेंगे, घर नहीं जाएंगे तो फिर कल कैसे आएंगे अगले फिर से आप सभी के साथ शो में। और शो में आने के लिए जाना तो जरूरी है। और पाजी यूपी चौहान से जुड़ चुके हैं, फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हमारा गाना नहीं बजेगा क्या, बिल्कुल बजेगा। और यहाँ अनिल जी लिख रहे हैं कि चली पिया जी के मुस्की के साथ छूट गई गणेश जी के, जी हाँ बिल्कुल, और सुपर गाना बाटे प्यार हो ही ना दोबारा हो। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि शो खत्म करने से पहले फिर से सभी सुनने वाले को सोनी जी नमस्कार, पप्पू ठाकुर बगई बाजार कटिया गोपालगंज से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक बार उसके रोने पर उसके होठों को क्या चूम लिया, अब तो पगली हर रोज रोने की बहाना करती है। और मैसेज के साथ है दिलीप राम जी। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, बिल्कुल आपका गाना बज चुका है। और यहाँ मैसेज है गाना सुनाने के लिए धन्यवाद। और संतोष राम जी हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है मैम यहाँ, और क्या करिएगा गर्मी के दिन में गर्मी ही रहेगा। और फरमाइश से बहुत सारी है, सबका कहना है कि मेरा मेरा मेरा हम किसका गाना बजाएं। और सबके लिए मैं आखिरी गाना छोड़ के जाऊंगी,

0: प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स।
1: होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
3: और यहाँ 5:59 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और इसी के साथ दीजिए आप सभी मुझे आज के इस शो से जाने की इजाजत। और जिन भी श्रोता की फरमाइश आज नहीं प्ले कर पाए हैं, आप सभी लोग मुझे माफ करिएगा, क्योंकि समय का जो है पाबंदी है और समय तय है कि उसी के बीच इतनी गाने फरमाइश प्ले करना है और उसमें नहीं हो पाता है, किसी न किसी का तो छूटेगा ही। और यहाँ अभी अभी मैसेज पहुँचा हुआ है, टुनटुन यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और दीजिए इजाज़त जाने की, फिर मिलेंगे आप सभी से कल इसी कार्यक्रम में। और आप सभी के लिए एक गाना छोड़ के जा रहे हैं, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, नमस्कार।

0: एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ,
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: 9.4
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 90765065।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070 32042 पे।
16: दिल कहे रे ग।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-94-94-53
1: और 9097-61-60-02।
4: नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: दिल कहे रे ग।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: दिल कहे रे जी।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: दिल कहे रे

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331

0: लिगामेंट की सर्जरी, एलिजा रोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: दिल कहे रे।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
10: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up, hello.
12: Now
11: pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी, मैं लालन काकू बोल रहा हूँ।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: मौसम कैसा वहाँ का
2: है? मौसम ठीक है यहाँ,
1: तो गर्मी पड़ रहा है दिल्ली।
2: अच्छा, बारिश नहीं हुआ है क्या अभी?
1: हुआ था, अभी फिलहाल बंद है 2-3 दिन से।
2: अच्छा, कोई नहीं, फिर घूमते फिरते जाएगा।
1: मैडम आपका नाम क्या हुआ?
2: भारती।
1: भारती जी, मुझे एक गाना सुनना है।
2: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, शायद मेरी शादी का ख्याल तेरी मम्मी को आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय को बुलाया
2: है। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
1: ये सबसे पहले चाहते और बाकी जितने भी हमारे रेडियो श्रोता गण है भाई, सभी को और मैं को सुनना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों लोग सुनना चाहता है गाने को।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके,
3: शायद

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: लाल बाबू बोल रहे हैं,
1: क्या हाल चाल?
0: नहीं, सोनी जी बोल रहे हैं।
1: नहीं,
0: सिद्धार्थी जी। तो क्या समाचार है?
1: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। टीम का नाम है आज का संजू।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है जीजी जीजी लक्ष्मी मंडल वाला।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: और विकास दीदी दीदी है, गुड़िया है, सीमा है, दादी जी है, आप जी।
1: चलिए सर, ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: सलाम।
6: वालेकुम सलाम। रचना बोल रहे हैं प्रथम
7: से। क्या हाल चाल है?
6: ठीक है, अपना बताइए।
7: हमारा भी ठीक है।
6: बड़ा इंतजार कर रहे हैं।
7: हो जाता है कभी कभी।
6: कभी गाना नहीं सुन पाते, कभी सुन पाते, कभी नहीं सुन पाते, इतना मेहनत करने के बाद। हमने सुन पाते फरमाइश किए थे गाना सलमान खान का, कहाँ सुन पाए, नहीं सुन पाए।
7: सलमान खान का कौन सा सॉन्ग? वो तो बजा, हमने तो बजाया था।
6: हमने सुनते नहीं थे। मगरिब का टाइम हुआ था तो बंद करे थे नमाज पढ़ने के लिए।
7: तो कितने बजे? हम तो मतलब 5 से 7 चलता है,
6: 6 बजे के बाद बंद करते हैं। मगरिब का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने का टाइम होता है।
7: नहीं, लेकिन आपका गाना बज गया था। और सुबह में तब सुन लीजिएगा, 10 से 12 बजता है।
6: सुबह सुन लेंगे, सुबह 12 बजे तक बजता है ना, वो भी सुनते हैं लोग।
7: 9 से 11 बजे तक चलता है।
6: आज के लिए गाना सुनवा दीजिए,
7: बता दीजिए।
6: हिंदी गाना ज्यादा तो मालूम नहीं है, थोड़ा सा मालूम है, बता दे रहे हैं। आपको समझ में आ जाए तो बजा दीजिए, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है।
7: जी जी बिल्कुल बोलिए, अगर समझ में आता है तो हम भी बजा ही देंगे।
6: कोई नहीं आएगा ना हिंदी ना, मैं चाहे तुझे वही लगाना सुनना है।
7: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
6: आपको सुनवाएंगे सोनी में हमको, और जितना लोग रेडियो सुनते हैं सभी को सुनाएंगे।
7: हाँ हाँ, मेरा तबीयत ठीक है।
6: नाश्ता तो हो गया? बारिश तो खूब हो रहा है अभी।
7: हाँ, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अभी खुला हुआ है,
6: खुल गया। ठीक है बहन, तो गाना सुनवा दे फिर।
7: हाँ बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 91.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन नगर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, खाना खा के अभी फ्री हुए हैं और मैडम जी ने फोन लगा जाए तो लग नहीं गया।
0: चलिए तब तो बढ़िया है
1: जी। और भारती जी बोल रही है? सोनी जी बोल रही है?
0: भारती।
1: अच्छा, तो मेरी फरमाइश है, आज पिक्चर का नाम है दलाल और गाने के बोले मर गए फोकट में कोई तो हमको लियो बचाए ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: जी सबसे पहले आपको है और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा कगवासा से।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4।
1: धन्यवाद।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: एक और
12: नाम बता दी पहले अपन।
11: नाम हमारे शांति कुमारी।
12: कहाँ से?
11: अमेठी से।
12: अच्छा, हमारे तो हो गई बराबर खा लेगी बनी।
11: हाँ हो गई, गाना सुना दिए मेरे को ना, तुम मेरे हो ना, ठीक है, हिंदी गाना।
12: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनाओ के बाद।
11: हाँ, हमारे भैया बड़े, मम्मी बड़ी, बाबू बड़े।
12: अभी तो रिकॉर्डिंग होता, गाना शाम के 5 बजे से बाजेला।
11: हाँ
12: फिर बस, तो फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो।
11: हाँ, 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: इसीलिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। आप सुनाइए कैसे हैं?
1: हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ की दुर्गापुर भी चंपारण से। और सब सुनाइए अपना घर परिवार में और पूरा परिवार कैसे आप लोग?
1: हम सभी ठीक है और घर परिवार में भी सभी कोई ठीक है।
0: जी अच्छा रहिए, खुश रहिए। यही कामना है बालाजी के बाबा सुनेश्वरनाथ जी की।
1: तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: जी अभी तो कोयल जैसी मधुर आपकी प्रस्तुति हेलो फरमाइश का कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ और अपने बातें भी कर रहा हूँ, साथ में बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर का तो मौसम अभी ठीक है।
0: जी इधर तो कभी धूप कभी छांव हो रहा है, सुबह में हल्का बारिश हुई है इधर। जी
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी फिल्म का नाम है बम ब्लास्ट और गाने का बोल है मुझे जीने नहीं देती है याद दीदी।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त लोग संजय शाहजी, मोहम्मद अलार जी, दीपक कुमार दास जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, उपास कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, अंचल कुमार जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुदान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनना चाहता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले करता है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद,
1: वेलकम।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
4: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: आप सोनी जी बोल रहे हैं?
5: नहीं, भारती।
6: भारती जी, बाप बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है जी।
5: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
6: विकास कुमार हिमतापुर से।
5: अच्छा, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
5: बस ठीक है।
6: अच्छा, अभी गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
5: गोपालगंज का मौसम अभी सुहाना है।
6: अच्छा, बारिश वरिश हो रहा है?
5: बारिश हुआ था रात को, अभी ठीक है, नहीं हो रहा है।
6: और बताइए मैडम, खाना वाना हो गया?
5: हाँ, हमारा तो हो गया। आप बताइए, आप कैसे हैं? आपका खाना हुआ या नहीं?
6: नहीं, हम लोग का अभी खाना नहीं हुआ, अभी सुबह का खाना हुआ है, लंच में खाना होगा 1 बजे।
5: अच्छा, सब तो ठीक ही है।
6: हाँ, सब बढ़िया है मैडम। धान होने लग गया सब खेत में, बहुत पैसा लगता है खेत में धान लगाने में।
5: वो तो है।
6: हम तो आज दिल्ली में हमको आया हुआ है 15 दिन घूमने में। आज मेरे को गाना सुनवाइएगा, वो कौन सिंगर नहीं है?
5: कौन सिंगर
6: नहीं, ये मेरा दोस्त से बात कर लीजिए, बात करना चाहता है।
5: दे दीजिए,
6: वही फरमाइश, गाना का फरमाइश वही देगा। हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार,
6: मुझे गाना सुनाता की साड़ी लाल जी का।
5: नाम बता दीजिए पहले।
6: मेरा नाम कुलजीत है।
5: और कहाँ से?
6: मैं यूपी से हूँ।
5: अच्छा, तो क्या हाल चाल है आपका?
6: बात एक बार बढ़िया है।
5: अच्छा जी, चलिए, तब बढ़िया होना ही चाहिए।
6: जी मैम, बढ़िया हुआ लाल जी।
5: हाँ हाँ, हम भी ठीक है
6: जी मैम, बढ़िया चाहिए। खेसारी लाल जी का गाना सुनना था।
5: कौन सा सॉन्ग?
6: जी जान गई लू, कितना पानी में बड़ा पहचान गई लू।
5: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
6: हेलो, मेरे दोस्त से आप बात करें? हेलो,
5: पूछ रहे हैं उनसे कि गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं।
6: गाना तो हम लोग अपने दोस्त में सुनेंगे, आपको सुनवाएंगे, जितना रेडियो रेंजन सुनने वाले है सब श्रोताओं को डेडिकेट करें। फरमाइश सुन लिए?
5: हाँ सुने हैं।
6: खेसारी लाल का है बेवकाई, इनका मोन है, सुनवा दीजिएगा, ठीक है ना? इनके मोन पसंद से आज हम तुम अपने फरमाइश अपने खुद बात कर लो और कर दो फरमाइश।
5: जी बिल्कुल, तो इनको गाना प्ले कर देंगे। चलिए फिर,
6: ठीक है,
5: गाना प्ले करते हैं, सुनते सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मुझे गाना सुनना है।
1: जी गाना तो सुनाऊंगी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत दूर से आ रही है लग रहा है।
0: जी नेटवर्क थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो गाना सुनना है, दिलवाले का मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जी सबसे पहले आपको मासूम कौशर कमरन भाई मन भाई मन भाई भाई आयुष भाई प्रिंस भाई लक्ष्मी भाई हेमा जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ जितने रेडियो सुनने वाले हैं रेडियो रिमझिम परिवार का।
1: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: Break
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: नमस्ते मैडम।
12: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
13: आज भी गाना सुनवा दी।
12: नाम बता दी पहले।
13: परमात्मा कुमार। कलम अटिनिया से।
12: तो हाल चाल ठीक बनो?
13: ठीक बाबर कुछ सुनाई सब बता।
12: हम नहीं होके ठीक है बनी सन।
13: बारिश गोपालगंज में होता की?
12: बारिश होता कबो कबो होता है कबो नहीं हो, मैंने दिन में तो एक
13: बार निकल रहा था। बारिश काल भवे बहुत बिजी हो चुकी है। बारिश बाहर के काम रहे हैं। पंजाब में बारिश काली रात ही आदि मौसम बनल बा।
12: चले ठीक है बाबा।
13: गाना सुनवा दी सुनती राती गाना।
12: गाना बता दी कौन सा?
13: बोले पसंद के बजा दे
12: ना। बड़ो वो बताई के पड़ी
13: एक बार हमारा बता के पड़ी। बार बार सुनवा नहीं रोजा सुनवाई अपने भी है।
12: ना ना ये पड़ी रोवा बताई रोवा बताए के पड़ी।
13: सुनती राती गाना बजा दे वो गाना के नाम बाला धनिया वगैरह नहीं है कौन सी के साथ जो है वह गाना बजा दे। उसी लाइन में गाना बाजी हैदराबाद वाला कौन लगी था।
12: ठीक बाबा हाँ हाँ
13: ठीक
12: है। तो गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, इतना सुनाइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: आज हम पहली बार कॉल किए हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम संजय दुबे पड़ेगा, संजय दुबे सासाराम पुणे महाराज।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: का नाम क्या पड़ेगा मैडम?
1: मेरा नाम भारती है।
0: जी जी, तो हम सुनते तो रिंगिंग बहुत दिन से है, लेकिन कोशिश बहुत बार की है लेकिन लगा नहीं, बहुत भीड़ रहता है ना एकदम। आज पहली बार में सोचा ट्राई करता हूँ।
1: तो पहली बार में ही लग गया।
0: हमें भोजपुरी गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: कौन सी का गाना है? गुनगुना दो
1: जी, बोलिए।
0: आई हो दादा दही दरबा, रात भर घूसल रहे झारा वाड़े दरबा, रात भर घूसल रहे झारा वाड़े दरबा, आई हो दादा दैसन की आवाज है दरबा। ये गाना सुनना है।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: जी जी, सबसे पहले आपको सुनाएंगे और रिमझिम के सभी जितने भी सुनने वाले दोस्त हो गए आगे लोगों को सुनाएंगे। और हमारे भैया है रामबिलास कुशवाहा भैया, संतोष दुबे जी हैं, और एनके विश्वकर्मा सर जी हैं, श्वेता पाठक जी हैं, और मुन्ना भाई मुंबई वाले हैं, और जितने भी सब दोस्त लोग हैं ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को बुलाएंगे।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87-894-18744।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो मैम, नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
13: धन्यवाद जी। मैम कैसे हैं?
14: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: हम भी अच्छे हैं, उम्मीद है कि पूरा टीम अच्छा होगा। भारती मैम बोल रही है?
14: हाँ हाँ।
13: किसी शो में गया रहता है मैम, उस शो में क्यों नहीं आती है?
14: आते हैं ना।
13: नहीं, हम तो सुनते हैं, नहीं आती है।
14: हम तो सैटरडे को तो पूरा दिन हम ही थे,
13: उस दिन नहीं सुन पाए मैम। और भोजपुरी एक्सप्रेस में आएंगी तो अच्छा लगेगा।
14: भोजपुरी एक्सप्रेस में
13: मैम हम कितने नंबर पे, बहुत है ना?
14: अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
13: जी मैम, सफरोज अली बोल रहे हैं।
14: मुझे तो पता है लेकिन लिसनर लोग को तो नहीं पता है ना। तो और सब बताइए, और सब कैसा है हाल चाल?
13: मेरा नाश्ता हो गया।
14: मेरा तो हो गया, आपने कर लिया है?
13: हम कर रहे हैं, और आपके पास अभी याद आया कि उनसे बात करें, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया, 2-3 दिन। बुधवार दिन बात हुआ था। जी मैम, तो मुझे गाना सुनना है, गाना सबको अच्छा लगता है, उस गाने कितने भी तारीफ किया जाए कम है।
14: तो मुझे भी बता दीजिए कौन सा गाना है।
13: गाना है दूधे का सहरा, गाना है ना, वही वाला।
14: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
13: अभी सुनने वालों को और आपको, सोनी मैम को।
14: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
13: धन्यवाद।

0: हेलो मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल यही है कि दुकान पर बैठे हैं, कहीं ग्राहक ना आ जाए।
1: अच्छा,
0: इसीलिए जल्दी बात कर लेते हैं। कर्तव्य फिल्म का कोई भी गाना हो सुनवा दीजिएगा।
1: कर्तव्य मूवी का जो गाना बोले थे ना आज बजेगा।
0: आज बजेगा?
1: हाँ,
0: तो वो तो गाना वो सुना दीजिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को या पीती हूँ गम भुलाने को। या आप पिए या हम पिए, जो पिए गम भुला जाएगा। तो यही गाना सुनवा दीजिएगा, डेलिकेट रहेगा आपको और सोनी जी को और हम दो इसी नाद में हम लोग सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर देते हैं, सुनते रहिए।
0: हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम कीजिए जल्दी। हाँ, थैंक यू।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो MG 90.4 FM में।
10: नमस्ते मैडम जी।
9: नमस्ते,
10: बहुत अच्छा है, आप बोल रहे हैं।
9: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
10: अच्छा है, अपना बताइए कैसे है?
9: हम भी अच्छे हैं।
10: ठीक है, अच्छे से काम है।
9: तो क्या कर रही हैं अभी?
10: अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, तब मेरा फोन लगेगा।
9: चलिए, तब तो आपका फोन लग गया ना।
10: अभी तो सब ठीक है, नाश्ता हो गया?
9: हाँ, नाश्ता हो गया।
10: मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंड है।
9: और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
10: गाना सुना दीजिए उदित नारायण के, कोई भी गाना, अच्छा गाना।
9: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
10: जी मैडम,
9: नमस्ते।

0: जी बहुत स्वागत है रेडियो रिंग 20.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम,
1: आप कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम लोग बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम तो साईं पलक है।
0: अच्छा,
1: और सब बताइए मैम, और आपका अच्छा है ना?
0: हाँ हाँ,
1: चलिए। मैम आपका नाम श्रुति है?
0: नहीं, भारती।
1: अच्छा भारती, पहले श्रुति थी मैम। चलिए, नाश्ता पानी हो गया है?
0: हाँ, नाश्ता पानी करके आते हैं घर से।
1: मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम हमारे यहाँ अभी तो ठीक है, बारिश हुआ था रात को, तो अभी मौसम ठीक है।
1: चलिए,
0: कौन सा गाना सुनिएगा
1: मैम? सुना दीजिएगा बरसात वाला, टिप टिप बरसा पानी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सभी निकल को डेडिकेट है, और आपको भी, सभी आज को डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी।
0: तो
1: जो छूट गए हो सभी को, सभी लिस्नर को।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। मैम आपसे, आपका तो मोबाइल बड़ा रेटिंग बता रहा था,
0: क्योंकि अभी कॉल बहुत
1: लाइन में अभी बिजी चल रही थी।
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त से बैठ कर लगा रहे थे, लगा से बिजी बिजी आखिरी में लगा है।
0: इधर कॉल थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लास्ट चल रहा है, और उधर सभी लोग लगातार कॉल करते हैं, तो
1: जिसे लग अच्छा उससे लग जाएगा ना। चलिए अच्छा,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: गाने मतलब गाने का समय कितना बजे? पहले हम लोग सुन रहे थे, अब हम लोग भी बिजी रहते हैं, लोग मतलब नहीं सुन रहे लोग। गाने का मतलब टाइमिंग?
0: अच्छा, गाने का समय है 5 से 7 शाम को, और सुबह में सेम रिपीट होता है।
1: योर वॉइस,
0: योर वॉइस अभी चालू हुआ है, 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा।
1: योर वॉइस?
0: हाँ,
1: पहले चलता था 10 से 12।
0: 10 से 12 सेम अब रिपीट होता है, यही हेलो माई चॉइस जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो सेम वही बजता है।
1: ठीक है,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।
1: याद कीजिएगा मैम।
0: जी
1: याद कीजिएगा हमको।
0: जी जी बिल्कुल याद रखेंगे।
1: ओके ओके, बाय टाटा।
0: टाटा।

0: मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: प्रसाद क्लिनिक।
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले हैं
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करे 99-393-65923।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
16: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
17: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो जी, नमस्ते।
20: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
19: इसके दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो सुशासन के नाम सोना मंत्री चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
20: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
19: हाँ, मेरा हाल खबर तो बिल्कुल बढ़िया है। आधा सही आप ऐसे है, आपको रेडियो रिमझिम से फोन पे लगा रहे हैं।
20: मैं भी ठीक हूँ और रेडियो रिमझिम के पूरे परिवार भी ठीक।
19: चलिए, बारिश हो रहा है कल से तो हम लोग बारिश से मजा लिए हैं। आप रहिए, बारिश हो रहा है कहीं?
20: इधर तो रात में बारिश हुआ था, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है।
19: रात में बारिश हुआ था? अच्छा, अब हम लोग सुबह में बारिश हुआ। ये बढ़िया बात है। अच्छा है, जो भाई के काम पे ले गया वही बहुत है, बढ़िया।
20: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
19: आज गाना सुना दीजिए, मेघा रे मेघा कहते हैं गाना, वही सुना दीजिए।
20: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
19: डेडिकेट में सबसे पहले आपको, आपको रेडियो जिन संपन्न परिवार को और दोस्तों के ऐसे कहना था मोहम्मद आबी जी, गुमारी सुनील कुमार जी, राम लखन कुशवाजी, कृपा गांव से अजीत कुमार अकेला बैकुट डांस है, नरेश सोनी, दीपक दास, उदय बहन ठाकरे, जिन्ना साहब, धर्मेंद्र यादव, हमारे नाम से जाने पसंद तमाम दोस्तों, विशेष को राजेंद्र यादव, भारती कंतलाल गौतम, हमारे नाम से जाने पसंद तमाम खास कर मोहम्मद लाल अंसारी मझौलिया के, उनको रहते हुए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
20: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: क्या हो रहा है अभी? तो श्रीराम से आ रहे हैं तो फोन लगा रहे हैं, तो खाली पे बात बता रहे हैं।
1: कोई नहीं, देर से पेट लग ही गया।
0: लग गया है। और सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है।
0: सुनिधि कहाँ पे?
1: सुनिधि वो भी इधर ही है, काम में लगी हुई है
0: अपनी। मनोरमा दीदी
1: वो भी उधर ही है।
0: वो तो चलेगा ना?
1: हाँ चलेगा।
0: और सब बढ़िया है? मौसम कैसा है?
1: मौसम तो ठीक है।
0: हमारे इधर थोड़ा धूप हुआ है।
1: अच्छा, इधर भी बारिश खुला हुआ है। अब बाहर तो नहीं गया देखने की कैसा है।
0: बारिश हुआ है क्या उधर?
1: नहीं, रात से हो रहा था तो सुबह में खुला है, धीरे धीरे हो रहा था सुबह में भी, लेकिन अब ठीक है।
0: नहीं, यहाँ पे तो रात ही के बरसा है, सुबह में नहीं बारिश हुआ है। धान रोपनी हो गया अपना?
1: हाँ, अपना हो गया सब।
0: चलिए ठीक है। कुछ दिन गए थे गोपालगंज, मतलब 3-4 दिन हो गया है। गैस चलाने के लिए गए थे उधर। गहने कार्रवाई कर रहे हैं।
1: बता दीजिए
0: कि निकमल सिंह का व्यवसाय सॉन्ग कोई भी बजा दीजिए, बढ़िया ये बजा दीजिए, हो ही ना प्यार दोबारा।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: सबसे पहले आपको सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, सोनू सर को, अक्षर सर को, डायरेक्टर सर को, और जितना रेडियो सुन रहे सब लोग का, और मेरी बहन है करिश्मा, उसको भी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: बात होगा। हाँ, रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86 164।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार।
10: स्वयं सुनी लोगों की शिकायतें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज के एक युवक की मौत। दुबई में मर्चेंट शिप पर तैनात था युवक। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आवेदन प्राप्ति केंद्र और सहयोग पथ का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने उन आवेदकों की समस्याएं सुनी जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में मिले समाधान से संतुष्ट नहीं थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
11: राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 129 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 100 आवेदकों के मामलों का निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक 90% समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
10: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में किया जाएगा। शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज नामांकन पत्रों की जांच में 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी का पर्चा भी रद्द हो गया है। उपचुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए थे। प्रमुख उम्मीदवारों में NDA की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर शामिल हैं। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत का दावा किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार को किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं है।
12: मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा। और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा।
10: इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उपचुनाव में NDA उम्मीदवार के पक्ष में जन समर्थन है।
13: बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में NDA के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। पूरा जन समर्थन, पूरा आशीर्वाद यहाँ के हमारे नीरज कुमार जी को मिल रहा है। और सिर्फ अब मतदान का तिथि जब आ जाएगा और रिजल्ट होगा तो आप देखिएगा किसी की जमानत यहाँ बचने वाली नहीं है।
10: पटना जिला प्रशासन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को पिछले चुनावों में कम मतदान वाले बूथों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और मतदान के लिए जागरूक करेंगे। गौरतलब है 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 41 रहा था, जो राज्य के औसत से काफी कम था। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। CBI ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसके तहत लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। न्यायालय ने राजद अध्यक्ष की लंबित आपराधिक अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय को 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने को कहा है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कमजोर मॉनसून को देखते हुए विकसित भारत जी राम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती को लेकर छूट दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि कम बारिश वाले जिलों में लीन पीरियड यानी काम के दिनों में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में 19 जुलाई तक विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत काम कराया जा सकेगा।
13: जैसे ही वर्षापात कम होता है हम अपने श्रमिकों को काम उसमें देना शुरू करते हैं कि ये काम मांग आधारित है, तो जो श्रमिक काम मांगेंगे उस अवधि में काम विकसित भारत जी राम जी योजना में उनको हर हालत में मिलेगा। अगर आप काम मांगा और 15 दिन तक आपको काम नहीं मिला तो उसमें बेरोजगारी भत्ता भी देने का, रोजगार भत्ता भी देने का प्रावधान। और कोई काम कर रहा है और उसको अगर मजदूरी नहीं मिली तो 0.05% के हिसाब से जो मजदूरी समय पर भुगतान नहीं करेंगे उनके वेतन से रिकवरी करके उन श्रमिकों को भी भुगतान किया जाएगा।
10: संशोधन के बाद शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका में 10 अगस्त तक लीन पीरियड प्रभावी रहेगा। वहीं रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और गया में यह पीरियड 9 अगस्त तक माना जाएगा। गृह विभाग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को शीघ्र विकास प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा गया। बैठक में औरंगाबाद के जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा भी शामिल हुए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज जिले के एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान थावे बाजार निवासी रोहन कुमार के रूप में हुई है, जो दुबई में एक मर्चेंट शिप कंपनी में कार्यरत थे। मृतक के भाई आलोक कुमार ने बताया कि जहाज पर हुए मिसाइल हमले में उनकी मौत हुई है।
1: 4 बजे भोर में उनको फोन आया कंपनी के तरफ की आपके भाई इंजर्ड हो गए हैं, आपके मिसाइल गिरा है। तो बाद 3 घंटे बाद फिर फोन आया कि आपके भाई डेथ कर गए। उनका सीट गया हुआ था सऊदी अरब, नॉक कंपनी में काम करते थे।
0: पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें 3 ASI और गृह रक्षा वाहिनी का 1 जवान शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बंटी यादव के अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के पास मौजूद थे, बावजूद इसके इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच में आज मृतक के छोटे भाई चंदन तिवारी और एक अन्य गवाह ने आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इससे पहले मृतक के माता पिता समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल अररिया और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
2: दिनांक 15 जुलाई राज्य के किशनगंज एवं अररिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। बागमती नदी रून्नी सैदपुर में लाल निशान से लगभग 100 सेंटीमीटर, कमला बलान झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में 113 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर हमारी सहरसा संवाददाता ने बताया कि जिले के पनमा इठहरी प्रखंड अंतर्गत सहुरिया पंचायत में परसाहा कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से राम पोखर और भेड़ा गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। निगरानी की अदालत ने पिछले साल दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से 3 अपराधियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। शिवहर स्थित यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक संतोष कुमार को पुलिस ने 1,96,000 रूपये धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। खगड़िया पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी सतीश यादव को गोगड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कादोगांव रेलवे ब्रिज के पास से SSB और पुलिस की टीम ने 326 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सुनी लोगों की शिकायतें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज के एक युवक की मौत। दुबई में मर्चेंट शिप पर तैनात साथ था युवक। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके

0: कोयले से का फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: ऑलराइट।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 6200042434।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: All right।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955497644।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती अकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
12: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन औषध अनुभाग आमंत्रित कर रहा है वैज्ञानिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट cdsco.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट नेटवर्क और सिस्टम्स, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तथा केमिकल। इसके अतिरिक्त जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटैलिटी, जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट। पता है www.iitism.ac.in। www.ac.in। भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय भर्ती एवं प्रोन्नति विभाग कॉरपोरेट केंद्र मुंबई आमंत्रित कर रहा है परिवीक्षाधीन अधिकारियों यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आवेदन। कुल 1500 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 234 अनुसूचित जाति के लिए, 144 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 390, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 144 तथा सामान्य वर्ग के लिए 588 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की इस वेबसाइट से, जिसका पता है sbi.bank.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स सेक्शन में करंट ओपनिंग्स को खोल सकते हैं, वहां आपको तमाम जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आमंत्रित कर रहा है सांस्कृतिक प्रतिभा क्षेत्र से 2 पदों को भरने के लिए आवेदन। एक पद सैक्सोफोन वादक का है और एक अन्य पद पश्चिमी शास्त्रीय पियानो वादक का है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के लिए सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के होने चाहिए। वेतनमान, योग्यता तथा अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
13: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
14: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
15: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
16: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
15: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
16: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
15: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
16: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
15: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
16: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
15: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
16: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
17: सुनिए सुनिए सुनिए,
18: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
17: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
18: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
17: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
13: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
21: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
22: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
23: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
21: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
21: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
23: कॉल करे 87894-18744।
24: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
10: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
12: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
11: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9939365923।

0: और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे

0: फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं।

0: चार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, Jio, Airtel, VI, जो भी चाहिए तुरंत।

0: एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईरान अमेरिका युद्ध में थावे के एक युवक की हो गई मौत। जिलाधिकारी ने आज कई विभागों के साथ की लगातार बैठक। NDPS के एक मामले में आरोपी को हुई 10 वर्ष कैद की सजा। स्मैक के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। अमेरिका और ईरान युद्ध में गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड का एक युवक भी अपनी जान गंवा बैठा। बताया जा रहा है कि दुबई में हुए ईरानी हमले का शिकार गोपालगंज का यह युवक हो गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। थावे के व्यवसायी और भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय गुप्ता का पुत्र सोनू कुमार गुप्ता कुछ दिनों से दुबई में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ईरान के द्वारा चलाए गए मिसाइल से सोनू कुमार गुप्ता की मौत हो गई। सोनू कुमार गुप्ता जहाज पे ड्यूटी करता था और बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के जलडमरू मध्य में हुए शिप पर ईरान के द्वारा किए गए हमले में सोनू की मौत हो गई। सोनू जिस जहाज पे काम करता था, वह जहाज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था। इसी बीच ईरान के तरफ से मिसाइल हमला कर दिया गया और इसी मिसाइल हमले में सोनू की मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार में हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल परिवार के लोग अब स्थानीय प्रशासन और सरकार से सोनू के शव को सुरक्षित मंगाने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से इस गांव में सन्नाटा पसरा है और लोगों में मातम दिखाई दे रहा है। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर तमाम पदाधिकारियों ने कई क्षेत्रों में लगातार बैठकें की। वहीं जिला पदाधिकारी ने भी आज कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज तथा अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ ने जिले के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर खाद्यान्न वितरण, जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, उचित मूल्यों की दुकानों के निरीक्षण और RC टैगिंग शिकायतों के निष्पादन एवं सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा करते हुए प्रखंडों में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा लाभुकों को निर्धारित मात्रा में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कम प्रगति वाले क्षेत्रों की अलग अलग समीक्षा करते हुए DM ने आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में पैक्सवार एवं प्रखंडवार लक्ष्य खरीद की उपलब्धि, किसानों की भागीदारी, CMR डिलीवरी तथा शेष लंबित कार्यों की भी समीक्षा हुई। DM ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, मिलरों एवं पैक्सों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। इधर जिलाधिकारी ने कृषि टास्क फोर्स की भी बैठक की। बताया जा रहा है कि जिला टास्क फोर्स की भी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान धान अधिप्राप्ति से संबंधित प्रखंड वार प्रगति, पैक्सों की कार्य प्रणाली, किसानों के निबंधन, धान खरीद की स्थिति तथा 100% लक्ष्य प्राप्ति को लेकर विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी प्रखंडों को उपलब्धियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इधर जिला पदाधिकारी ने जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर भी बैठक की। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के साथ हुई इस बैठक में आंगनवाड़ी केंद्र बरौली में आंगनवाड़ी दीदियों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गयी। जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन राजेश्वरी पांडे ने डुमरिया घाट बांध एवं गौसिया बांध का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ सुरक्षा से संबंधित तैयारियों, तटबंधों की स्थिति तथा संवेदनशील स्थलों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शाहनवाज खान, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल साजिद इकबाल, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपर समाहर्ता को बताया कि सारण तटबंध एवं सहायक शर्कीय वर्तमान में पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगातार निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है। संवेदनशील स्थलों पर नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी सुनिश्चित की गई हैं। DM के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक तथा ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान DDC महोदय ने विभिन्न जन कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य बिंदु एवं समीक्षा की गई। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी बैठक हुई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई और छूटे हुए लाभार्थियों के शौचालय निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और इसके तहत गाँव में घर घर दैनिक कचरा उठाव के स्थिति पर भी समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने धावा दल के माध्यम से आज कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें बताया जा रहा है कि जायका बिरयानी जो स्टेशन रोड गोपालगंज में है, वहां से भी एक बाल श्रमिक एवं एक बबलू मटन दुकान जो स्टेशन रोड में है, यहां से भी एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी और तमाम पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। थामे और सिद्धवलिया तथा सदर के भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी रहे। जहां से बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है, उन संस्थानों पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तत्काल बाल श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने कृषि टास्क फोर्स की बैठक में किसानों को समय पर कृषि संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति पर विस्तृत रूप से जानकारी ली। बैठक में जिला पशुपालन अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। कुचायकोट थाना कांड संख्या 249/2022 के मामले में आज अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा सुना दी, साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि 2022 में बलतरी चेक पोस्ट पर कुचायकोट थाना की पुलिस वाहन जांच कर रही थी, इसी दौरान एक कार से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम चरस बरामद किया था। यह चरस नेपाल के तरफ से तस्करी के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई वह हरियाणा के हिसार का रहने वाला शिव कुमार बताया जा रहा है। लगभग 4 वर्षों से अदालत ने इस NDPS के मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आज फैसला सुना दिया। इसमें जिला अभियोजन पदाधिकारी ललन द्विवेदी ने, जो NDPS के स्पेशल PP के रूप में इस मामले में अपना पक्ष रख रहे थे, उनके दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20B2C NDPS एक्ट में दोषी पाया और आरोपी को 10 वर्ष कैद तथा 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ने 1,00,000 रुपए का अर्थदंड जमा नहीं किया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। आज भोरे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खजुराहा स्थित HP पेट्रोल पंप के पास स्मैक जैसे मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने वहां छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। पूछताछ के दौरान अवैध मादक पदार्थ कारोबार से जुड़े नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला एवं अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इसमें भोरे पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद इसमें संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि सर्वप्रथम जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई उसका नाम बीरबल प्रजापति, पिता राम किशुन प्रजापति, जो संसार बंतरिया थाना भोरे का निवासी है, उसके पास से तलाशी लेने पर 14.71 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया, जिसे जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने बताया कि वह इस मादक पदार्थ को गणपति आयरन स्टोर के संचालक अशोक सिंह, पिता रामजी सिंह, जो भोरे के लामी चौर का निवासी है, वहां से खरीद कर लाया था और बिक्री कर रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने वहां भी छापेमारी की और अशोक सिंह को भी गिरफ्तार किया। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के ब्रह्माइन गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक नंदू कुमार बिजली के पंखे का प्लग लगा रहा था, इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मामले में पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, हालांकि समय रहते परिजनों ने उसकी जान बचा ली। वह फांसी से लटक गया था, परंतु तभी परिजन तुरंत देख लिए, जिसके वजह से उसको फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि युवक का उसके अपने ही भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी को लेकर घर में सुबह से ही झगड़ा और मारपीट हो रहा था और इसी से नाराज होकर युवक ने फांसी के फंदे पर झूल कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु परिजनों ने बचा लिया और फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में घायल युवक नरेंद्र सिंह से पूछताछ कर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। आज गोपालगंज शहर में नगर परिषद ने खुले में मांस मछली बेचने वालों पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलाकर खुले में मांस मछली के दुकानों को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई जादोपुर रोड, हजियापुर और कई स्थानों पर की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, अब बिना लाइसेंस के खुले में मांस मछली की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोरे थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के एक आरोपी कामेश्वर मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी विजयपुर थाना क्षेत्र के बलपुर पटजोली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर थावे थाना की पुलिस ने 557 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है इसका नाम हसमुल्लाह खान है। यह मुमताज खान का पुत्र है और मिरलीपुर थाना थावे का रहने वाला बताया जा रहा है। यह एक्सयूवी गाड़ी से शराब ला रहा था। पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है। गोपालगंज सदर अस्पताल में रात की हुई बारिश के बाद से पूरा परिसर जलमग्न हो गया था। अस्पताल का मुख्य मार्ग पानी से भर जाने के कारण झील जैसी स्थिति हो गई थी। अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुचका गांव थाना की पुलिस ने भी 333 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक मारुति सुजुकी वाहन को भी जब्त किया गया। पकड़ा गया आरोपी चंदन प्रसाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी सुतिब कुमार उर्फ राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह सिद्धवलिया के ही परसौनी गांव के वीरेंद्र महतो का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर छल कपट अथवा विवाह का झूठा प्रलोभन देकर यौन संबंध स्थापित करने का एक मामला दर्ज है। युवती ने इस आरोपी पर केस दर्ज करवाया था, तभी से यह फरार चल रहा था। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईरान अमेरिका युद्ध में थावे के एक युवक की हो गई मौत। जिलाधिकारी ने आज कई विभागों के साथ की लगातार बैठक। एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को हुई 10 वर्ष कैद की सजा। स्मैक के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: ओम नमः शिवाय।
12: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
11: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
12: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
11: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
12: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
12: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
11: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
12: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
11: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उप शाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
12: बोलबम हर हर महादेव।
13: सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
13: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा फैंसी साड़ी लेडी सूट क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन केडिया लेन मेन रोड गोपालगंज।
13: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
16: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
15: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
16: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
15: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
16: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
17: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
15: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो MGM 90.4 FM पे। समय 9:30 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि हर रोज की तरह पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजना है और पुराने गाने के साथ एंजॉय करना है। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो नमस्ते, MD 97 दरभंगा भजीतपुर से मैसेज करते हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कहते हैं कि मुझे एक गाना सुना दीजिए, फिल्म ऐसे ना थे, गाने का बोल इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, माय नेम इज़ साझा विलेज मुगल ब्रेचा से और सॉन्ग। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सॉन्ग की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो आज मेरा गाना बज सकता है क्या। बिल्कुल बज सकता है यदि आप पुराने गाने की फरमाइश करती हैं तो। इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू सर नमस्कार, आज मौसम एकदम सुहाना हुआ है। मंकेश साहनी बिरगज वेस्ट चंपारण से और बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करते हैं सुरेश जी त्रिबिरवान से और गाने की फरमाइश करते हैं, माँ मुझे माँ से मिला दे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, हम भी हैं साथ में। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरियारोक सोल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो रेडियो रिमझिम, नमस्कार सोनू भाई, सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। और मैं राजेश प्रसाद सूरत से और आपको सुन रहा हूँ, आज मुझे भी एक गाना सुनना है। तो बिल्कुल सुनना है तो सुनाएंगे और फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार सर जी, मैं शिवांश चौधरी प्रेमनगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से और मुझे गाना सुनना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आगे मैसेज भी पहुँचे, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर मैं पिठौरी से भागमनी यादव। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में भागमनी यादव जी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि क्यों कल न्यू था क्या। तो बिल्कुल कल आपकी गाने जो थे वो न्यू गाने की फरमाइश थी, जिसके कारण कल आपकी फरमाइश हम पूरी नहीं किए हैं। आज आप पुराने गाने की फरमाइश करती हैं तो आज पूरा होगा, यदि नए गाने की फरमाइश करती हैं तो आज भी पूरा नहीं होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और MD 97 जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छिम 90.4 FM पे संडे हम सभी और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोगों को तो पता ही है कि पुराने गाने का फरमाइश करना है, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं काफ़ी प्यारा सॉन्ग तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए, आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए, MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से। और आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, गाना सुनना है शोले मूवी का कोई हसीन जब रूठ जाती है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं संतोष कुमार पटेल जी सूरत से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भैया मैं अनिल छोटपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और कुछ कहते हैं कि 23 तारीख के बाद आज जुड़ा हूँ आपको 23 बार नमस्ते, मेरा फरमाइश भेज दो क्या? बिल्कुल भेजते हैं तो पूरा करने की कोशिश तो रहेगा मेरा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए, बिल्कुल आपकी सॉन्ग प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे बॉर्डर फिल्म से गाने की फरमाइश किया गया है और इस गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागण हैं वेस्ट चंपारण से। और गाने मैसेज करने वाले मंकेश साहनी जी हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं मंकेश साहनी जी आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ

0: फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमछिम 90.4 FM पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आगे कई मैसेज पहुंचे हुए हैं और कुछ मैसेज टाइप भी हो रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हाउ आर यू, तो बिल्कुल बढ़िया, अपना भी बताएं। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलुलिया से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि जय जय भोले नाथ, केहू बोला के भूला जाला, आपन अपने से दूर हो जाला, कैसे बताई रहुआ कि हम आपन ही घात कर जाला, नमस्कार प्रणाम, पत्थर दिल ना होला मोम पत्थर ना होला, दिल दिले हैं मन मंदिर ना होला, दिल दिले हा मन मंदिर ना होला। गाना भोले बाबा बम भोले बाबा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा सावन शर्मा जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमू आ गए नहीं, हमरो मैसेज शामिल करिए। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम पर, लेकिन आप कौन है अपना परिचय दीजिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश, यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है निशा शुक्लवा से, करती हैं गाने की फरमाइश मेरा प्यार मिल गया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी जीना सिर्फ मेरे लिए, अलका याग्निक की आवाज़ में।

94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और इस समय जो है आगे निकलते जा रहे हैं आगे गाने की फरमाइश कहीं पहुंच रहे हैं और आगे शाहजहाँ की तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुंचा तो बिल्कुल पूरा करने की कोशिश है और आगे मैसेज पहुंचा वो लिखा गया है कि जब तक जिंदा हूँ तो मैं रोज रील भेजती रहूँगी, जिस दिन ना भेजूँ उस दिन सोच लेना अगले दिन भेजूंगी, कुछ भी सोच लेते हो अभी मेरी उम्र ही क्या है। और इस मैसेज को करती हैं शबीना और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हाय सुनो भाई मुझे गाना सुनना है तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं विकास श्यामपुर से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स गाना सुनाने के लिए, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि फरमाइश भेजे प्ले होगा, बिल्कुल आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी समय निकल गए हैं और हमें लगता है कि और 2-3 ही गाने प्ले करने की समय बचे हुए हैं और कई गाने का फरमाइश हमारे पास पड़े हुए हैं तो आज नहीं कल रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और सुनो जी जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल सुनो जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कहते हैं कि इस ख्वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखे, कलम इधर लाओ बेवफाओं के बारे में हम लिखेंगे। बड़िया थाना क्षेत्र बालापुर से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपने जो ऊपर की लाइनें जो भी भेजे हुए हैं वो हम इस तरह की लाइनें शामिल नहीं करेंगे, आप कुछ भी मैसेज कर देते हैं तो थोड़ा सा सुधार कर मैसेज करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, सुरेश शाह जी की तिरबिरवा से गाने की फरमाइश करते हैं माँ मुझे माँ से मिला दे, तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

4 FM सुन रहे और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग माँ शेरवाली और इस मिसेस को इस मैसेज को करती हैं रोशनी और कहते हैं कि हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं। मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा और मैं भी जुड़ गई हूं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि हाय सर मुझे भी शामिल कर लीजिए निशा पांडे तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा गाना क्यों नहीं बजेगा तो बिल्कुल आपका गाना तो बजने की लाइन में है लेकिन समय बहुत कम है। और इस मैसेज को करते हैं विकास जी श्यामपुर से और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि जय बजरंग बली भाई कैसे हैं ठीक है ना सभी दोस्त कैसे हैं ठीक है ना सुपर गाना वाह भाई सविता चौहान भूत छपरा से जुड़ी हैं तो बिल्कुल बढ़िया हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि और इस मैसेज को करते हैं राजेश जी सूरत से और गाने के फरमाइश करते हैं काहे सैया तेरी मेरी बात बने नाही। ये गाना सबसे पहले आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और मैडम जी के साथ सुनना चाहता हूँ तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इंजॉय करते हैं।

ரேடியோ எம்ஜிஎம் 90.4 எஃப்எம் சந்தே. रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और काफ़ी प्यारा शाम और काहे से यह तेरी मेरी बात नहीं बानी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए साहेब सुनो बाबू हमरो गानवा बजा देव हमने के कई जानी बानी जा और सुना तानी जा तनी ध्यान देव हमरो बतिया को तो चलिए रावर भी फरमाइश हम पूरा कर देता नहीं और मैसेज के पहुंचाए वाला बानी श्यावन शर्मा जी और गाने के फरमाइश के लिए बानी यहाँ के बोलबम के और रितेश पांडे के आवाज़ में भोले बाबा बम भोले बाबा खा लेना भांग के गोले बाबा तो चलिए रावर फरमाइश प्ले करता नहीं सुनल जाओ और इंजॉय कर जाओ

छोटा सा सॉरी, रेडियो MCM 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब और गाने एंजॉय कर रहे थे अभी बोलबम का और रितेश पांडे की आवाज़ में। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे श्यावन शर्मा जी और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, चली रहो के धन्यवाद भाई रेडियो MCM सुनने खातिर। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई गाना बजाने के लिए, और इस मैसेज को करते हैं राजेश जी, तो चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो MCM सुनने के लिए राजेश जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शिवांश चौधरी जी इस मैसेज को करते हैं और गाने के फरमाइश करते हैं तू मेरा हीरो नंबर वन। तो चलिए अंत में आपकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का। तो अंतिम गाने शिवांश चौधरी जी की रहेगी और जो भी सुरतगढ़ छूट जा रहे हैं कल कोशिश रहेगा कि यदि आप सभी का मैसेज पहुंचता है तो पूरा करने की। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो MCM 90.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

0: भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth level officers or BLOs will now visit house to house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, "Bharat Tex is the vision of the Prime Minister." He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textiles sector. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app linked money laundering case. The agency had recently attached assets worth over 940 crore belonging to the chairman, his family members and entities allegedly owned and controlled by him. In cricket, chasing a target of 259 runs set by England, India were 239 for 4 in 42 overs in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham, when reports last came in. Earlier, electing to bat first, England were all out for 258 runs in 47.5 overs. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: अभी मौन हूँ, आगे पता चलेगा कि कौन हूँ।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी, मैं ललन साहब बोल रहा हूँ।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: मौसम कैसा वहाँ का?
2: मौसम ठीक है यहाँ,
1: इधर तो गर्मी पड़ रहा है दिल्ली।
2: अच्छा, बारिश नहीं हुआ है क्या अभी?
1: हुआ था, अभी फिलहाल बंद है 2-3 दिन से।
2: अच्छा, कोई नहीं, फिर घूमते फिरते जाएगा।
1: मैडम आपका नाम क्या हुआ?
2: भारती।
1: भारती जी, मुझे एक गाना सुनना है।
2: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, शायद मेरी शादी का ख्याल तेरी मम्मी को आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय को बुलाया।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
1: ये सबसे पहले तो आपको और बाकी जितने भी हमारे रेडियो श्रोता गाने हैं भाई सभी को, और मैं तो सुनना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों लोग सुनना चाहता है गाने को।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: लाल बाबू बोल रहे हैं,
1: क्या हाल चाल?
0: नहीं, सोनी जी बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: सिद्धार्थी जी। क्या समाचार है?
1: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। टीम का नाम है आज का संजू।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है जीजी जीजी रसोदा का नंदलाला।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: विकास दीदी, दीदी है, गुड़िया है, सीमा है, दादी भी है, आप है, आदि।
1: चलिए सब ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
7: रेशमा बोल रहे हैं प्रथम से।
6: क्या हाल चाल है?
7: ठीक है, अपना बताइए।
6: हमारा भी ठीक है,
7: बड़ा इंतजार कर रहे हैं।
6: हो जाता है कभी कभी,
7: कभी गाना नहीं सुन पाते हैं, कभी सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद हमने सुन पाते फरमाइश किए थे गाना सलमान खान का, कहाँ सुन पाए, नहीं सुन पाए।
6: सलमान खान का कौन सा सॉन्ग? वो तो बजा था, हमने तो बजाया था,
7: हमने सुनते नहीं किया। मगरिब टाइम हुआ था तो बंद करे थे नमाज पढ़ने के लिए।
6: तो कितने बजे? हम तो मतलब 5 से 7 चलता है,
7: 6 बजे के बाद बंद करते हैं। मगरिब का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने का टाइम होता है।
6: नहीं, लेकिन आपका गाना बज गया था। और सुबह में तब सुन लीजिएगा, 10 से 12 बजता है।
7: सुबह सुन लेंगे, सुबह 12 बजे तक बजता है ना, वो भी सुनते हैं लोग।
6: 9 से 11 बजे तक चलता है।
7: आज के लिए गाना सुनवा दीजिए।
6: बता दीजिए
7: हिंदी गाना, ज्यादा तो मालूम नहीं है, थोड़ा सा मालूम है, बता दे रहे हैं आपको, समझ में आ जाता है बजा दीजिए, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है।
6: जी जी बिल्कुल बोलिए, अगर समझ में आता है तो हम भी बजा ही देंगे।
7: कोई नहीं आएगा ना हिंदी, ना मैं चाहे तुझे वही लगाना सुनना है।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
7: आपको सुनवाएंगे सोनी में हमको, और जितना लोग रेडियो सुनते हैं सभी को सुनाएंगे।
6: हाँ हाँ, मेरा तबीयत ठीक है।
7: नाश्ता तो हो गया? बारिश तो खूब हो रहा है अभी।
6: हाँ, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अभी खुला हुआ है,
7: खुल गया। ठीक है बहन, तो गाना सुनवा दे फिर।
6: हाँ बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, खाना खाके अभी फ्री हुए हैं और मैडम जी ने फोन लगा जाए तो लग भी गया।
1: चलिए तब तो बढ़िया है
0: जी। और भारती जी बोल रही है, सोनी जी बोल रही है?
1: भारती।
0: अच्छा, तो मेरी फरमाइश है आज पिक्चर का नाम है दलाल और गाने के बोले मर गए फोकट में कोई तो हमको लियो बचाए ऐसा चीज तला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी सबसे पहले आपको है और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा कगवासा से।
1: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजन 90.4 एफएम।
0: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: एक और सुनिए,
6: नाम बता दी पहले अपन।
5: नाम हमारे शांति कुमारी।
6: और कहाँ से?
5: आम आईठी से।
6: अच्छा,
5: खाना हो गई? हाँ,
6: हमारे तो हो गई, बराबर खा ले।
5: हाँ, हो गई। गाना सुना दिए मेरे को ना, तुम मेरे हो रहा, ठीक है, हिंदी गाना।
6: अच्छा, और गाना क्योंकि सुना हो के बाद?
5: हाँ, हमारे भाई बड़े, मम्मी बड़ी, बाबू बड़े।
6: अभी रिकॉर्डिंग होता गाना शाम के 5 बजे से बाजेला।
5: हाँ,
6: फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रूम।
5: हाँ, 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: इसीलिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सब नहीं है, कैसे हैं?
1: हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास तिवारी को आप बोल रहा हूँ कि पूर्वी चंपारण से। और सब सुनाइए अपना घर परिवार में और रेमझिमपुरा परिवार कैसे आप लोग?
1: हम सभी ठीक है और घर परिवार में भी सभी कोई ठीक है।
0: जी अच्छा रहिए, खुश रहिए। तो आपसे यही कामना है वाला जी के बाबा को नेश्वर लाल जी।
1: तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: जी अभी तो कहल जैसी मधुर आपकी प्रस्तुति हेलो फरमाइश का कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ और अपने बातें भी कर रहा हूँ, साथ में बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर का तो मौसम अभी ठीक है।
0: जी जी, इधर तो कभी धूप कभी छाव हो रहा है, सुबह में हल्का बारिश हुई है इधर। जी
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी फिल्म का नाम है बम ब्लास्ट और गाने का बोल है मुझे जीने नहीं देती है याद दीदी।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त में हुए संजय साजी, मोहम्मद अलार जी, दीपक कुमार दास जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, उत्तर कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, अंचल कुमार जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुदान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्य मोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जखमी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले करता है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद,
1: वेलकम।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: आप सोनी जी बोल रहे हैं?
5: नहीं, भारती।
6: भारती जी, बाप, बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है जी।
5: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
6: मैडम विकास कुमार हिमतापुर से।
5: अच्छा, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
5: बस ठीक है।
6: अच्छा, अभी गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
5: गोपालगंज का मौसम अभी सुहाना है।
6: अच्छा, बारिश वारिश हो रहा है?
5: बारिश हुआ था रात को, अभी ठीक है, नहीं हो रहा है।
6: और बताइए मैडम, खाना वाना हो गया?
5: हाँ, हमारा तो हो गया, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका खाना हुआ या नहीं?
6: नहीं, हम लोग का अभी खाना नहीं हुआ, अभी सुबह का खाना हुआ है, लंच में खाना होगा 1 बजे।
5: अच्छा, तब तो ठीक ही है।
6: हाँ, सब बढ़िया है मैडम।

0: धान होने लग गया तो खेत में बहुत पैसा लगता है खेत में धान लगाने में।
1: वो तो है।
0: हम तो आज दिल्ली में हमको आए हुए हैं 15 दिन को मैंने। आज मेरे को गाना सुनवाइएगा वो कौन सिंगर नहीं है,
1: कौन सिंगर
0: नहीं, ये मेरा दोस्त से बात कर लीजिए, बात करना चाहता है।
1: दे दीजिए,
0: वही फरमाइश, गाना का फरमाइश वही देगा। हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
0: मुझे गाना सुनना था खेसारी लाल जी का।
1: नाम बता दीजिए पहले।
0: मेरा नाम कुलजीत है।
1: और कहाँ से?
0: मैं यूपी से हूँ।
1: अच्छा, तो क्या हाल चाल है आपका?
0: बात एक बार बढ़िया है।
1: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया होना ही चाहिए।
0: जी मैम बढ़िया हूँ, आप लाल जी?
1: हाँ हाँ, हम भी ठीक है।
0: जी मैम बढ़िया चाहिए। खेसारी लाल जी का गाना सुनना था।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: जी जान गई लू, कितना पानी में बाढ़ पहचान गई लू।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हेलो, मेरे दोस्त से आप बात करें? हेलो,
1: पूछ रहे हैं उनसे कि गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं।
0: गाना तो हम लोग अपने दोस्त में सुनेंगे, आपको सुनवाएंगे, जितना रेडियो रेंज सुनने वाले हैं सब श्रोताओं को डेडिकेट करें। फरमाइश सुन लिए?
1: हाँ सुने हैं।
0: खेसारी लाल का है बेवफाई, इनका मोन है, सुनवा दीजिएगा, ठीक है ना? इनके मोन पसंद से आज हम तुम अपने फरमाइश अपने खुद बात कर लो और कर दो फरमाइश।
1: जी बिल्कुल, तो इनको गाना प्ले कर देंगे। चलिए फिर,
0: ठीक है, ओके,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते हैं सबके साथ 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मुझे गाना सुनना है।
1: जी गाना तो सुनाऊंगी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत दूर से आ रही है लग रहा है।
0: जी नेटवर्क थोड़ा इधर उधर हो जाता है। जो गाना सुनना है दिलवाले का, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जी सबसे पहले आपको मासूम कौशल कमरन भाई मन भाई अन भाई भाई अंश भाई प्रिंस भाई लक्ष्मी भाई हेमा जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ जितने
1: जी जी बिल्कुल। चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
2: आज भी गाना सुनवा दी।
3: नाम बता दी पहले।
2: परमात्मा कुमार। कलर मटीनिया से।
3: तो हाल चाल ठीक बानो?
2: ठीक बाबर कुछ सुनाई समझा
3: हमने यो के ठीक है बानी सन।
2: बारिश गोपालगंज में होता की?
3: बारिश होता है, कभो कभो होता है, कभो नहीं से होता। मैंने दिन में तो एक
2: बार निकल रहा था, बारिश काल भवे बहुत बिजी हो चुकी है। बारिश बाहर के काम रहे हुए पंजाब में बारिश काली रात भी आज ही मौसम बनल बा।
3: चले ठीक है बाबा।
2: गाना सुनवारी सुनती राती जाना।
3: गाना बता दी कौन सा?
2: बोले पसंद के बजा दे
3: ना। बर रहो बताई के पड़ी
2: एक बार हमारे बता पड़ी।
3: हाँ
2: बार बार सुनवानी अपने भी है
3: ना। ना ये पड़ी रोवा बताए, रोवा बताए के पड़ी।
2: सुनती राती गाना बजा दे। वो गाना का नाम बाला धनिया वाला गाना नहीं है कौन सी के साथ जो है वह गाना बजा दे। गाना बाजी एक
3: ठीक बाबा। हाँ हाँ
2: ठीक
3: है। गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, इतना सुनाइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: आज हम पहली बार कॉल किए हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम संजय दुबे पड़ेगा, संजय दुबे सासाराम पुणे महाराज।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: का नाम क्या पड़ेगा मैडम?
1: मेरा नाम भारती है।
0: जी जी, तो हम सुनते तो रिंगिंग बहुत दिन से है, लेकिन कोशिश बहुत बार की है लेकिन लगा नहीं, बहुत डर रहता है ना एकदम। आज पहली बार में सोचा ट्राई करता हूँ।
1: तो पहली बार में ही लग गया।
0: हमें भोजपुरी गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: कौन सी का गाना है? गुनगुना दो
1: जी, बोलिए।
0: आई हो दादा की आवाज है, रात भर घुसल रहे झारा वाड़े भीतर बा, रात भर घुसल रहे झारा वाड़े भीतर बा, आई हो दादा कैसन की आवाज है, ये गाना सुनना है।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: जी जी, सबसे पहले आपको सुनाएंगे और रिमझिम के सभी जितने भी सुनने वाले दोस्त हो गए आगे लोगों का सुनाएंगे। और हमारे भैया है रामबिला कुशवाहा भैया, संतोष दुबे जी है, और एनके वी शर्मा सर जी हैं, श्वेता पाठक जी हैं, और मुन्ना भाई मुंबई वाले हैं, और जितने भी सब दोस्त लोग हैं ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को बुलाएंगे।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैम, नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
5: जी धन्यवाद। जी मैम कैसे हैं?
6: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम भी अच्छे हैं, उम्मीद है कि पूरा टीम अच्छा होगा। जी भारती मैम बोल रहे हैं?
6: हाँ हाँ।
5: इसी शो में गया रहता है मैम, उस शो में क्यों नहीं आती हैं?
6: आते हैं ना।
5: नहीं हम तो सुनते हैं, नहीं आती हैं।
6: हम तो सैटरडे को तो पूरा दिन हम ही थे,
5: उस दिन नहीं सुन पाए मैम। और भोजपुरी एक्सप्रेस में आएंगे तो अच्छा लगेगा।
6: भोजपुरी एक्सप्रेस में
5: मैम हम कितने नंबर थे? बहुत लेट है ना।
6: अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
5: जी मैम सफरोज अली बोल रहे हैं।
6: मुझे तो पता है लेकिन लिसनर लोग को तो नहीं पता है ना। तो और सब बताइए, और सब कैसा है हाल चाल?
5: मेरा नाश्ता हो गया।
6: मेरा तो हो गया, आपने कर लिया
5: है? हम कर रहे हैं। और आपके पास अभी याद आया कि उनसे बात कर रहे, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया, 2-3 दिन। बुधवार दिन बात हुआ था। जी मैम तो मुझे गाना सुनना है, गाना सबको अच्छा लगता है, उस गाने की कितने भी तारीफ किया जाए कम है।
6: तो मुझे भी बता दीजिए कौन सा गाना है।
5: गाना है दूल्हे का सहरा, गाना है ना। वही वाला।
6: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
5: अभी सुनने वालों को और आपको सोनी मैम को।
6: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
5: धन्यवाद।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल यही है कि दुकान पर बैठे हैं, कहीं ग्राहक ना आ जाए।
1: अच्छा,
0: इसीलिए जल्दी बात कर लेते हैं। कर्तव्य फिल्म का कोई भी गाना हो सुनवा दीजिएगा।
1: कर्तव्य मूवी का जो गाना बोले थे ना, आज बजेगा।
0: आज बजेगा?
1: हाँ,
0: तो वो तो गाना वो सुना दीजिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
1: ओके,
0: या पीती हूँ गम भुलाने को। या आप पिए या हम पिए, जो पिए गम भुला जाएगा। तो यही गाना सुनवा दीजिएगा, डेलिकेट रहेगा आपको और सोनी जी को, और हम दो ही तीन आदमी हम लोग सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर देते हैं, सुन रही है।
0: हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम कीजिए जल्दी। हाँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: The phone ring, they watch the head, don't get the hello.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494911। जी हाँ, 80029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एमजी 90.4 FM में।
5: नमस्ते मैडम जी।
4: नमस्ते,
5: बहुत अच्छा बोल रहे हैं
4: जी। जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: अच्छा है, अपना बताए कैसे है?
4: हम भी अच्छे हैं।
5: ठीक है, अच्छे से काम है।
4: तो क्या कर रही हैं अभी?
5: अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, तब मेरा फोन लगेगा।
4: चलिए, तब तो आपका फोन लग गया ना
5: अभी। सब ठीक है? नाश्ता हो गया?
4: हाँ, नाश्ता हो गया।
5: मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंड है।
4: और बताइए, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
5: गाना सुना दीजिए, उदित नारायण के कोई भी गाना, अच्छा गाना।
4: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
5: जी मैडम जी, नमस्ते
4: नमस्ते।

0: जी बहुत स्वागत है रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: आप कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम लोग बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छा। नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम तो साइन पलक है।
0: अच्छा,
1: और सब बताइए मैम, और आपका अच्छा है ना?
0: हाँ हाँ।
1: मैम आपका नाम श्रुति है?
0: नहीं, भारती।
1: अच्छा भारती, पहले श्रुति थी ना। चलिए, नाश्ता पानी हो गया है?
0: हाँ, नाश्ता पानी करके आते हैं घर से।
1: मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम हमारे यहाँ अभी तो ठीक है, बारिश हुआ था रात को, तो अभी मौसम ठीक है।
1: चलिए,
0: कौन सा गाना सुनिएगा?
1: मैम सुना दीजिएगा बरसात वाला, टिप टिप बरसा पानी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सभी निशुल को डेडिकेट है, और आपको भी, सभी आदि को डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी।
0: तो
1: जो छूट गए हो सभी को, सभी लिस्नर को।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। मैम आपसे, आपका तो मोबाइल बारह रेटिंग बता रहा था,
0: क्योंकि अभी कॉल बहुत
1: लाइन में अभी बिजी चल रही थी।
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त से बैठ कर लगा रहे थे, लगा से बिजी बिजी आखिरी में लगा है।
0: इधर कॉल थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लास्ट चल रहा है, और उधर सभी लोग लगातार कॉल करते हैं, तो
1: लग अच्छा वो से लग जाएगा। चलिए अच्छा,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं,
1: सुनिए ना। गाने मतलब गाने का समय कितना बजे? पहले हम लोग सुन रहे थे, अब हम लोग भी बिजी रहते हैं, लोग मतलब नहीं सुनते हैं लोग। गाने का मतलब टाइमिंग?
0: अच्छा, गाने का समय है 5 से 7 शाम को।
1: अच्छा,
0: और सुबह सेम रिपीट होता है।
1: योर
0: वॉइस अभी चालू हुआ है, 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा
1: योर वॉइस।
0: हाँ,
1: पहले चलता था 10 से 12।
0: 10 से 12 सेम अब रिपीट होता है, यही हेलो माई चॉइस जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो सेम वही बजता है। चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।
1: याद कीजिएगा मैम।
0: जी
1: याद कीजिएगा हमको।
0: जी जी बिल्कुल याद रखेंगे।
1: ओके ओके, बाय टाटा
0: टाटा।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, नमस्ते।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: इसके दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार सुशासन ग्राम सोना मंत्री चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
6: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: हाँ, मेरा हाल खबर तो बिल्कुल बढ़िया है। आधा सही, आप ऐसे हैं? आप रेडियो रिमझिम सुकून पे जा रहे हैं?
6: मैं भी ठीक हूँ और रेडियो रिमझिम के पूरे परिवार भी ठीक।
5: चलिए, बारिश हो रहा है कल से तो हम लोग बारिश से मजा लिए हैं। आप बताइए, कोई बारिश हो रहा है नहीं?
6: इधर तो रात में बारिश हुआ था, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है।
5: रात में बारिश हुआ था?
6: हाँ
5: सर, अब हम लोग सुबह में बारिश हुआ था। ये बढ़िया बात है, अच्छा है। जो भाई के काम पे ले गया वही बहुत बढ़िया।
6: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
5: आज गाना सुना दीजिए, मेघा रे मेघा कहते हैं गाना, वही सुना दीजिए।
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: डेडिकेट में सबसे पहले आपको वहाँ पर रेडियो जिन संपन्न परिवार को और दोस्तों हो गया कहना था मामा साबी जी, सुनील कुमार जी, राम लखन कुशवा जी, कृपा गांव से अजीत कुमार कला बैकुल से नरेश सोहनी, दीपक दास, उदय भान ठाकरे, जीना साहब, धर्मेंद्र यादव, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्तों, विशेष को राजेंद्र यादव भारती संत लाल गौतम, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम खास सर के मोहम्मद लाल अंसारी मझौलिया के उनको रहते हुए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
6: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: क्या हो रहा है अभी? तो श्रीराम से आ रहे हैं तो कौन लगा रहे हैं, तो खाली पे वास्तव रहे हैं।
1: कोई नहीं, देर से पेट लग ही गया।
0: लग हो गया है। और सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है।
0: सुनिधि कहाँ पे?
1: सुनिधि वो भी इधर ही है, काम में लगी हुई है अपने।
0: मनोरमा दीदी
1: वो भी उधर ही है।
0: वो तो चलेगा ना?
1: हाँ, चलेगा।
0: बने और सब बढ़िया है। मौसम कैसा है?
1: मौसम तो ठीक है,
0: हमारे इधर थोड़ा धूप हुआ है।
1: अच्छा, इधर भी बारिश हुआ हुआ है। अब बाहर तो नहीं गए देखने कि कैसा है।
0: सुबह में बारिश हुआ है क्या उधर?
1: नहीं, रात से हो रहा था तो सुबह में खुला है, धीरे धीरे हो रहा था सुबह में भी, लेकिन अब ठीक है।
0: नहीं, यहाँ पे तो रात ही के बरसा है, सुबह में नहीं बारिश हुआ है। धान रोपनी हो गया अपना?
1: हाँ, अपना हो गया सब।
0: चलिए ठीक है। कुछ दिन गए थे गोपालगंज, मतलब 3-4 दिन हो गया है। गैस चलाने के लिए गए थे उधर। गाने कर रहे हैं,
1: बता दीजिए।
0: कमल सिंह का व्यवसाय सॉन्ग कोई भी बजा दीजिए, बढ़िया ये बजा दीजिए, हो ही ना प्यार दोबारा।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: सबसे पहले आपको सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, सोनू सर को, अक्षर सर को, डायरेक्टर सर को, और जितना रेडियो सुन रहे सब लोग का, और मेरी बहन है करिश्मा, उसको भी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते
0: होगा।
1: हाँ, रेडियो 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: जोलो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री

साधनाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: वन बिहारी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: राधा, ओ राधा।
1: क्या है? मैं नहीं बोलती।
0: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
1: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: एस मुस्तफापुर वैशाली
1: 9162154619।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मुस्तफा पुर वैशाली
1: 9162154619।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।